मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 46 सेकेंड्स हुए हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

स्वच्छ आकाश में सूर्य की किरणें अपनी सुनहरी चमक बिखेरने को आतुर हैं। पंछियों का कलरव वातावरण में मधुर संगीत घोल रहा है। प्रातः की अद्भुत सौंदर्यमयी बेला का लाभ उठाइए और नई ऊर्जा के साथ कीजिए नए दिन का स्वागत। श्रोताओं, हम भी आ चुके हैं स्टूडियो लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमारे श्रोता जो अपनी दिनचर्या में लग चुके हैं और रेडियो सेट को ऑन भी कर चुके हैं, उन्हें इंतजार होगा देश दुनिया में हो रही गतिविधियों को जानने का। तो देर कैसी, चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, प्रातः के 6 बजने ही वाले हैं। सुनते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन सकते हैं 747 किलो हर्ट्स के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम में वक्त है कृषि चर्चा कार्यक्रम का। आज की कृषि चर्चा में हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी किसान भाइयों को जानकारी देंगे ढैंचा की उन्नत खेती के बारे में।
1: शुभ प्रभात। जैसे जैसे हमारी खेती आधुनिक हो रही है, वैसे वैसे कुछ नई समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। मसलन फसल उत्पादन में धान गेहूं आधारित फसल चक्र बहुतायत से लोग अपनाते हैं और अपनाते रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इसमें जितनी बड़ी मात्रा में शुरू हो गया है अब पहले की अपेक्षा, उसका मूल कारण यह है कि पहले जो सूक्ष्म पोषक तत्व या जीवांश हमारी मिट्टी में हुआ करते थे, वह धीरे धीरे इन रसायनों के प्रयोग के कारण खत्म होते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यकता वही पुरानी बनती है कि खाद की आपूर्ति के लिए हमें गोबर की खाद या फिर हरी खाद का प्रयोग करने की स्थिति उत्पन्न करनी होगी। ढैंचा हरी खाद के रूप में बहुत पहले से उगाया जा रहा है और आज और ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। कारण यह है कि जो भी रसायन हम प्रयोग कर रहे हैं उनके कुप्रभाव को समाप्त करने, फसल को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से ही नहीं बल्कि आगे आने वाली फसल के लिए भूमि की दशा को सुधार करने में यह बहुत बड़ा सहयोग देता है। इसलिए ढैंचा की हरी खाद जरूर आप अपनाएं। प्रति हेक्टेयर 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन यह उपलब्ध करा देता है। ढैंचे के हरे पौधे में लगभग आप मान के चलिए कि 0.5% से लेकर 0.8% तक नाइट्रोजन, 0.8% फास्फोरस और 0.6% के आसपास पोटाश पाया जाता है। भूमि की भौतिक रासायनिक जैविक स्थिति में तो सुधार होता ही होता है। ढैंचा में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने से सोडियम लवण हटाकर भूमि की क्षारीयता कम करती है, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाएगी और भूमि संरक्षण में इससे सहायता मिलेगी। भूमि ओम भूमि की तैयारी करनी होगी इसके उत्पादन के लिए, कोई खास बात नहीं होती है, लेकिन एक सामान्य तरीका यही है कि ढैंचा की खेती विविध जलवायु दशाओं में लगभग सभी भूमियों में चिकनी बालू रेतीली कम या अधिक पीएच वाली भूमि में आसानी से की जा सकती है। लेकिन बढ़वार की दृष्टि से बलुई दोमट से दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। क्षारीयता के प्रति प्रतिरोधी होने के कारण इसे 9.5 से 10 pH पर भी उगाया जा सकता है। बुआई से पूर्व भूमि को पलेवा कर लेना बेहतर माना गया है। बुआई का जो समय है इसका धान की रोपाई से 45 दिन का, तो जब भी आप लक्ष्य बनाए हैं धान की अपनी रोपाई का, उससे 45 दिन पहले इसकी बुआई करें, यानी ढांचा बोएं खेत में। बीज की मात्रा 40 किलोग्राम लीजिएगा, अगर ऊसर भूमि है तो उसमें 60 किलोग्राम। बीज शोधन भी कर लेंगे तो अच्छी स्थिति होगी। बीज को रात भर पानी में भिगोना भी एक बेहतर स्थिति पैदा करता है। बीज छिटक कर सुबह या फिर शाम को बोएं, जब भी एक सामान्य सी स्थिति बने। हाँ, पौधों की बढ़वार के लिए उपयुक्त नमी आवश्यक है, इसलिए वर्षा शुरू होने के पूर्व 1 या 2 सिंचाई की आवश्यकता अमूमन पड़ ही जाती है। सामान्यतः अच्छी भूमियों में उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु बहुत कमजोर भूमि में बुआई के 15 से 20 दिन बाद प्रति हेक्टेयर 20 से 30 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करने से अच्छी खासी वृद्धि हो जाती है और यही वृद्धि हमें हरी खाद प्राप्त करने में सहयोग करती है। फसल को मिट्टी में पलटना भी आवश्यक होता है। जब फसल 45 से 50 दिन की हो जाती है अमूमन, तब पलटने वाले हल से इसे पलट दिया जाता है। यदि धान की रोपाई करना हो तो इसके 3 से 4 दिन पूर्व पाटा लगाकर फसल को गिराएं और मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके भूमि में 15 सेंटीमीटर गहराई में दबा दें, 15 सेंटीमीटर पानी भर दें। यदि धान की फसल न भी लेना हो तो भी हरी खाद बनाने के लिए ढैंचा की बुआई करके उसे जमीन में संरक्षित कर सकते हैं। धान के खेत में ढैंचा की हरी खाद प्रयोग करने पर प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत हो जाएगी। अब आप इस स्थिति में समझ सकते हैं कि कितनी यूरिया की बचत आप कर पाएंगे। इसलिए हम पुनः आपसे यही कहेंगे कि इसकी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए यह जरूरी है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने तथा भौतिक

0: रासायनिक एवं जैविक स्थिति में सुधार के लिए जब हरे तथा बिना सड़े पौधों के किसी भाग या संपूर्ण पौधे को खेत में पलटकर सड़ा दिया जाता है तो इसे हरी खाद देना ही कहते हैं। हरी खाद के लिए कई फसलों का तो प्रयोग करते ही आप ढैंचा के अतिरिक्त सनई का भी प्रयोग कर सकते हैं, यह भी बेहतर होती है। वैसे जो जायद में मूंग या उड़द बोई गई है उसको भी आप खेत में पलटकर हरी खाद बना सकते हैं।
1: ढैंचा की उन्नत खेती, इस विषय पर अभी किसान भाइयों को जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। विकास ऐसा हो जिसमें समाज के हर अंतिम व्यक्ति का उत्थान हो, वर्ग विहीन, जाति विहीन और शोषण मुक्त समाज की कल्पना, जिसने सभी को आगे बढ़ाने का समान अवसर मिलने का सपना देखा, विनोबा भावे जी। आइए सुनते हैं सुविचार। आज का शीर्षक है विनोबा भावे के विचार, वाचन स्वर सुषमा गुप्ता का है।
2: मजदूर ही दरअसल उसकी मुख्य संपत्ति है। मजदूर शरीर से काम करते हैं, किंतु शरीर के साथ साथ बुद्धि का भी उपयोग हो सकता है। इस प्रकार शरीर और बुद्धि दोनों मिलकर मजदूर बनता है। एक जमाना ऐसा आने वाला है जबकि हर एक व्यक्ति मजदूर बनेगा, यानी ऐसा माना जाएगा कि जो मजदूरी नहीं करता उसे खाने का हक नहीं है। जो बौद्धिक काम करते हैं वे भी मजदूर हैं, लेकिन आज बौद्धिक काम की कीमत और शारीरिक मजदूरी की कीमत में बहुत फर्क हो गया है। वो मिट जाना चाहिए और मिटेगा। भगवान ने हरेक को शरीर दिया है, भूख भी हरेक को लगती है। शारीरिक श्रम करने से भूख अच्छी लगती है और भूख मिटाने का उपाय शरीर श्रम से अन्न पैदा करना है। इसलिए हरेक को पैदावार में हिस्सा लेना चाहिए। फिर चूंकि भगवान ने हरेक को बुद्धि भी दी है, इसलिए बुद्धि के विकास का मौका भी सबको मिलना चाहिए। मैं ऐसा नहीं मानता कि देश के करोड़ों लोगों के पास बुद्धि नहीं है। बात यह है कि उनको बुद्धि के विकास का मौका ही नहीं मिलता है। हमारे यहाँ अनेक संत पुरुष और आध्यात्मिक कवि मजदूरों में से ही पैदा हुए हैं। कबीर एक मजदूर थे, रविदास और रामदेव भी मजदूर थे, लेकिन आज तो दुनिया दो भागों में बट गई है। कुछ लोग बुद्धि से काम करते हैं और बहुत तनख्वाह पाते हैं। हम जानते हैं कि एक चाकू जिसका हम बहुत उपयोग करते हैं घिसता है और जल्द टूट जाता है। दूसरा चाकू जिसका हम उपयोग नहीं करते उस पर जंग चढ़ जाती है और वह भी टूट जाता है। बुद्धिमान लोगों को बुद्धि का ज़्यादा काम पड़ता है, इसलिए उनकी बुद्धि घिसती जा रही है, और मजदूरों को बुद्धि का काम नहीं मिलता इसलिए उनकी बुद्धि क्षीण होती जा रही है। इसलिए दोनों वर्गों को दोनों तरह का काम मिलना चाहिए। मजदूर को यदि 6 घंटे शरीर का काम मिलता है तो 2 घंटे का दिमागी काम भी उसे मिलना चाहिए। इस तरह ही दोनों का विकास हो सकेगा। संग्रह की जरूरत न तो मजदूर को होनी चाहिए और न ही दूसरों को। समाज सबकी फिक्र करेगा। आज के लिए आज और कल के लिए कल, ऐसा हो सकता है? यह आदर्श है। वहां तक पहुंचने में समय जरूर लगेगा, लेकिन इसके बगैर मानव शांत नहीं रह सकेगा। मैं जानता हूं कि आप लोगों में जो काम हो रहा है वह प्रेम की दृष्टि रखकर ही हो रहा है। इसी में सबका लाभ है। मजदूरों को यह नहीं महसूस करना चाहिए कि वे लाचार हैं। आज देश में उत्पादन की बहुत आवश्यकता है। आपको इससे संतोष होना चाहिए कि उत्पादन का काम करके आप देश को टिका रहे हैं। आपको किसी से द्वेष करने की जरूरत नहीं है। प्रेम से आप सब कुछ पा सकते हैं। दूसरे लोगों को भी मजदूरी में लग जाना चाहिए। अगर वे ज्यादा मजदूरी नहीं कर सकते हैं तो 2 घंटे ही करें। इस तरह हर घर में कुछ न कुछ उत्पादन हो जाएगा और हमारा देश संपन्न और सुखी बनेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे विनोबा भावे के विचार, वाचन स्वर सुषमा गुप्ता का था।

माँ की जयकार हर युग में होती आई है। माँ का नाम लेकर आइए आराधना की शुरुआत करते हैं और जीवन को बनाते हैं धन्य।

गोविंद, जो प्रेम भी है और लीला भी, नीति भी और संगीत भी, जिनकी बांसुरी में छिपा है मन को शांत करने वाला अमृत। भगवान हमें सिखाते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, मुस्कुराना, सही निर्णय लेना और धर्म का साथ देना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आइए प्रभु के चरणों में स्वयं के हृदय को समर्पित करें।

आइए राम भजन के माध्यम से अपने हृदय के अंदर की अच्छाइयों को जगाएं और बुराई पर विजय का संकल्प लें। आइए राम नाम का स्मरण करें जो हर पीड़ा का समाधान है।

जिनके माथे पर मोर मुकुट और हाथ में बांसुरी सुशोभित है। प्रभु श्री कृष्ण जो भक्तों के सुख और दुख में सदा साथ खड़े रहते हैं। आइए प्रभु का गुणगान करें।

भगवान शिव जो शांत भी हैं और शक्ति भी, जिनके मस्तक पर चंद्रमा शीतलता का संदेश देता है और तीसरा नेत्र सत्य का प्रकाश, हर संकट में आश्रय वही है और हर समाधान का आरंभ भी।

मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आपने ट्यून इन किया है 747 किलो हर्ट्स पर और सुन रहे हैं वैशाली के साथ आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से ये कार्यक्रम। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। और अब आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 174 में वन में पर्ण कुटीर बनाने के लिए प्रभु श्री राम का वाल्मीकि ऋषि से स्थान बताने की विनती का प्रसंग।

वाल्मीकि आश्रम में पहुंच दंडवत प्रणाम कुशल क्षेम की औपचारिकताओं के पश्चात श्री राम ने ऋषिवर से कोई ऐसा स्थान बताने की विनती की जहां पत्तों घास आदि की कुटी बनाकर वो कुछ काल निवास कर सकें। ऋषि बोले, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं और जनक नंदिनी माया स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपका स्वरूप वाणी तथा बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद नेत नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। इस दृश्य जगत के आप दृष्टा हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके इंगित पर गतिशील होते हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं

जानते तो अन्य कोई कैसे जान सकता है? आपको वही जान सकता है जिसे आप जानने देते हैं, और जानते ही वो आपका स्वरूप बन जाता है। ऐसे आप भला मुझसे पूछ रहे हैं कि कहां रहें, किंतु मुझे आपसे यह पूछने में संकोच हो रहा है कि आप वो स्थान बता दें जहां आप नहीं हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे ए हरिहरन, आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आकाशवाणी लखनऊ से।

0: आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: समाचार इयम

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन रहे हैं 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी लखनऊ से। श्रोताओं, समय है स्वास्थ्य चर्चा सेगमेंट का। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में हमारी एक्सपर्ट नीना

0: पूर्ण जानकारी क्या है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम एक ऐसे फल की बात करेंगे जो भारत में भले ही परंपरागत रूप से बहुत पुराना ना हो, लेकिन इसकी ख्याति, इसके स्वास्थ्य लाभ और इसके बहुआयामी उपयोग इसे एक आधुनिक जीवन शैली का अहम हिस्सा बना चुके हैं। हम बात कर रहे हैं ऑलिव यानी जैतून की, जो एक छोटा सा फल है लेकिन अपने भीतर सेहत, सुंदरता और स्वाद के लिए बेशुमार गुण समेटे हुए है। ऑलिव का संबंध मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय देशों से रहा है। ग्रीस, इटली, स्पेन और तुर्की जैसे देशों में ये न सिर्फ भोजन का हिस्सा है बल्कि संस्कृति का प्रतीक भी है। सदियों से ऑलिव को लंबी उम्र, हृदय स्वास्थ्य और सौंदर्य का रहस्य माना गया है। आज विज्ञान भी ये मान चुका है कि जैतून और इससे निकला ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल वास्तव में स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। ऑलिव फल के रूप में भारत के बाजारों में अब पहले से कहीं ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो गया है। सलाद, पास्ता और विभिन्न व्यंजनों में इसे एक खास स्वाद के लिए जोड़ा जाता है, लेकिन अगर हम इसके भीतर झांके तो हमें सिर्फ स्वाद नहीं मिलेगा बल्कि एक शक्तिशाली पोषण का स्रोत भी मिलेगा। जैतून में मौजूद मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, खासकर ऑलिक एसिड, हमारे हृदय के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित रखते हैं और हृदय रोगों की संभावना को कम करते हैं। यही कारण है कि ऑलिव ऑयल को हार्ट फ्रेंडली ऑयल कहा जाता है। जैतून में एंटीऑक्सीडेंट्स की भरमार होती है, जैसे कि विटामिन ई, पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स, जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। ये तत्व न केवल शरीर की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं बल्कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा भी करते हैं। यही वजह है कि ऑलिव का सेवन करने वाले लोगों में झुर्रियां देर से आती हैं, त्वचा में चमक बनी रहती है और शरीर भीतर से तरोताजा महसूस करता है। श्रोताओं सुंदरता की बात करें तो जैतून का तेल त्वचा और बालों के लिए भी किसी चमत्कारी औषधि से कम नहीं है। पुराने समय से ही मिस्र की रानियों से लेकर यूनानी चिकित्सकों तक ने जैतून के तेल को सौंदर्य बढ़ाने के लिए अपनाया है। इसे त्वचा पर लगाने से नमी बनी रहती है, रूखापन दूर होता है और त्वचा कोमल बनती है। वहीं बालों में इसका प्रयोग करने से बाल मजबूत होते हैं, डैंड्रफ कम होता है और बालों को प्राकृतिक चमक मिलती है। अब अगर हम पाचन की बात करें तो जैतून का तेल लीवर की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है और आंतों को भी सक्रिय रखता है। हल्के गर्म ऑलिव ऑयल को सुबह खाली पेट लेने से पेट साफ रहता है और कब्ज जैसी समस्या में राहत मिलती है। साथ ही ये लीवर को डिटॉक्स करने का भी काम करता है, जिससे शरीर की सफाई भीतर से होती है और त्वचा पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव दिखता है। ऑलिव का एक और गुण है, ये वजन को नियंत्रित करने में सहायक है। ये बात शायद कुछ लोगों को हैरान करे, लेकिन हम अक्सर फैट से बचते हैं, लेकिन जैतून में जो वसा होती है वो अच्छी वसा होती है जो शरीर को ऊर्जा देती है लेकिन अनावश्यक चर्बी नहीं बढ़ाती। यदि संतुलित मात्रा में ऑलिव ऑयल का उपयोग किया जाए, जैसे कि सलाद में या फिर रोटी पर हल्का सा लगाकर, तो ये भूख को संतुलित रखता है और अनावश्यक खाना खाने की आदत को भी रोकता है। भारत में अब लोग धीरे धीरे ऑलिव और इसके तेल को अपनाने लगे हैं, खासकर शहरी जीवन शैली में जहाँ स्ट्रेस ज्यादा होता है, खान पान अनियमित होता है, वहाँ जैतून एक संतुलन लाने वाला तत्व बन सकता है। ये रक्तचाप को कम करने में सहायक है और दिमाग को भी सुकून देता है। रिसर्च बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से ऑलिव ऑयल का सेवन करते हैं उनमें अवसाद और चिंता के स्तर कम पाए जाते हैं। श्रोताओं जैतून का महत्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है, ये हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। ये हमें सिखाता है कि छोटी छोटी चीजों में बड़ी शक्ति छिपी होती है। जैतून का एक छोटा फल जब सलाद में जाता है या उसका तेल जब भोजन में उपयोग होता है तो वो न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि हमारी सेहत को भी समृद्ध करता है। और सबसे सुंदर बात ये है कि ये पूरी तरह प्राकृतिक है, किसी रासायनिक प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। आज जब हम तेज जीवन शैली, प्रोसेस्ड फूड और तनाव से भरी दिनचर्या से घिरे हुए हैं, तो ऐसे में जैतून हमारे लिए

0: ये एक सादा लेकिन शक्तिशाली समाधान बन सकता है। जैतून हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य का रास्ता महंगे सप्लीमेंट्स या दवाइयों से नहीं बल्कि प्राकृतिक और संतुलित जीवन से होकर जाता है। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: सदाबहार और स्वास्थ्य वर्धक जैतून, इस विषय पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज की स्वास्थ्य चर्चा में। जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से। और अब आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज रात 9:30 पर सुनिएगा नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण समय होगा रात 10:00। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सामयिक चर्चा में सुबह 9:15 पर सुनना ना भूलें। कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा से आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा की बातचीत। सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के तहत समाअत फरमाइएगा डॉक्टर दरख्शां ताजवर का मकाला, जिसका मौजू होगा गुलाम हिंदुस्तान में मरना भी गवारा ना होगा। इसके अलावा फ्लैगशिप प्रोग्राम में आप सुनेंगे अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम उस्ताद योजना के बारे में। कला में शायर में आज के शायर होंगे जलाल अहमद सामानी। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की होगी। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 7:31 पर। प्रस्तुति सुमोना एस पांडेय और नीना सोनकर की होगी। हिंदी कार्यक्रम में रात्रि 8:00 आप सुनेंगे डॉक्टर राम बहादुर मिश्र की वार्ता अवध के लोकगीत। दिन में 3:15 पर संस्कृत कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर सुषमा भारद्वाज की संस्कृत वार्ता संस्कृत साहित्य प्रकृति सौंदर्यम। फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का प्रसारण समय होगा दिन में 3:30। आज इस कार्यक्रम में विषय होगा यकृत संबंधी विभिन्न बीमारियां, कारण, लक्षण और बचाव के उपाय। विशेषज्ञ होंगे प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार, प्राध्यापक गैस्ट्रो सर्जरी विभाग SGPGI लखनऊ। संचालन सुभाष खन्ना का होगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का राग तोड़ी में ख्याल गायन। दोपहर 12:00 बाल मंच कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने सुनेंगे अभिलाष उमर से की गई बातचीत, जिसका विषय है दूर संचार जोड़े दिल से दिल के तार। बातचीत करेंगे दर्श दीक्षित नीतिज्ञ गुप्ता। इसके अलावा हेल्थ टिप्स में बच्चों को डॉक्टर निशांत वर्मा जानकारी देंगे हेल्दी हार्ट रहो स्वस्थ और स्मार्ट विषय पर। आज इतवार है में दिन में 1:15 पर सुनिएगा विशाल तिवारी की लिखी झलकी हाय रे गर्मी। प्रस्तुति सहयोग रवि तिवारी का और निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता होंगे अतिश कुमार श्रीवास्तव। दिन में 1:30 पर अक्षवट कार्यक्रम में सुनिएगा रविन्द्र चतुर्वेदी से की गई भेंट वार्ता वृद्धावस्था में वित्तीय प्रबंधन विषय पर। बातचीत करेंगी डॉक्टर अलका चौधरी। गर्मी में पशुओं की आहार व्यवस्था और प्रबंधन, इस विषय पर आप सुनेंगे डॉक्टर दिवाकर वर्मा से की गई भेंट वार्ता विज्ञान और किसान कार्यक्रम में। दिन में 2:30 पर भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 4:00 संकल्प कार्यक्रम में सुनना ना भूलें ब्रेल लिपि विषय पर ब्रजेश चौधरी से देवाशीष की बातचीत। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोक भाषा कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे देवकी नंदन यादव नंदन, समरजीत सिंह काग। संचालन राघवेंद्र नाथ त्रिपाठी का होगा। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर सफलता की कहानी क्रम के अंतर्गत हमारे किसान भाई सुनेंगे गन्ना उत्पादन विषय पर कुशल पाल तिवारी से की गई भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम जिन्हें आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ से। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम में अब वक्त है विविधा का। हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम विविधा में। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। सोचिए जब आखिरी बार आपने खुद से कहा था मुझसे नहीं होगा। परीक्षा से एक रात पहले

कोई सपना पूरा ना होने पर या जब जिंदगी ने एक ऐसा वार किया जिसकी उम्मीद भी ना थी। तो आज की विविधा में बात ऐसी पंक्ति की जिसने लाखों लोगों को टूटने से बचाया, हारने से रोका और फिर से उठना सिखाया, जीना सिखाया। बात नर हो न निराश करो मन की, जिसमें छुपा है पूरा जीवन दर्शन। ये पंक्ति नहीं, एक ललकार है, लोगों को जागरूक करने का नगाड़ा उस पूरी पीढ़ी के लिए जो निराशा के दलदल में धंसती जा रही हो। नर हो न निराश करो मन को, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध कविता की पंक्ति है। उन्होंने ऐसे दौर में लिखा जब देश गुलाम था, लोगों में निराशा थी, जब हर तरफ हताशा थी, टूटन थी। आज इतने दशकों बाद भी ये शब्द उतने ही ताजा हैं जैसे किसी ने अभी अभी लिखे हों। नर हो न निराश करो मन को, अगर तुम इंसान हो तो अपने मन को निराश ना होने दो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे पल में खुद को पाया है जब भीतर से कोई आवाज आई हो, छोड़ दो, बस हो गया, तुम्हारे बस का नहीं है, दुनिया तुम्हें रोक सकती है, लोग मजाक उड़ा सकते हैं, हालात कमजोर हो सकते हैं, मगर जीवन का सबसे बड़ा युद्ध मैदान में नहीं, इंसान के मन के अंदर होता है। जब इंसान हार मानने लगता है, सारे रास्ते बंद दिखते हैं और अपने भी साथ छोड़ देते हैं, उस वक्त आशावादी मन कहता है, उठो, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, फिर से कोशिश करो, तुम में हिम्मत है, तुम लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, नर हो न निराश करो मन को। ना भूलें दोस्तों, हम सभी इंसान हैं और इंसान होने का मतलब है विचार करने की शक्ति और जूझते रहने का जज्बा, कुछ ऐसा काम करना जो समाज के काम आए, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए, जिससे लोग हमें याद करें। उठो और अपना रास्ता खुद बनाओ, मन को निराश मत करो। यदि मन टूट गया तो समझो हम टूट गए हैं, यानी कि इंसान टूट गया है। WHO की एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया में अनगिनत लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। भारत में हर 5 में से एक युवा मानसिक तनाव का शिकार है और इसकी सबसे बड़ी वजह जानते हैं, निराशा। निराशा का एक और नाम है आराम का बहाना। असल में हम निराश नहीं होते, हम डरते हैं असफलता से, लोगों की बातों से। लेकिन नर वो है जो डर को अपने से दूर करते हुए चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। एक बात मन में बिठा लें कि निराशा एक भावना है और भावनाएं बदलती हैं, लेकिन संकल्प वो नहीं बदलता। और अगर आपने ठान लिया कि ये कार्य हमें करना है, तो मानिए दोस्तों, ब्रह्मांड की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। थॉमस एडिसन याद हैं आपको? बल्ब बनाने से पहले उन्होंने लगभग 10,000 बार प्रयोग किए और असफल हुए। लोगों ने पूछा भी, आप बार बार असफल हुए लेकिन निराश नहीं हुए? एडिसन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हारा नहीं, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक मछुआरे के घर में जन्मे, अखबार बेचकर पढ़ाई की, पायलट बनना चाहते थे, रिजेक्ट हो गए, मगर दोस्तों निराश नहीं हुए, उन्होंने खूब मेहनत की और बने देश के राष्ट्रपति। मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि हमारा मस्तिष्क निगेटिविटी बेस से भरा है, यानी बुरी चीजें हम 5 गुना ज्यादा याद रखते हैं। एक तारीफ मिली भूल गए, एक बार डांट पड़ी सालों याद रहती हैं। तो निराशा स्वाभाविक है लेकिन स्थायी नहीं। सारी लड़ाई ना मन की है, शरीर थकता है ठीक है, पर मन को मत थकाओ। ये तो मानी हुई बात है दोस्तों कि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं। अगर मन में बीज डाल दिया कि मैं कर सकता हूँ, तो वो पेड़ बनकर जरूर बड़ा होगा, और अगर बीज डाल दिया मुझसे नहीं होगा, तो वो जमीन हमेशा बंजर रहेगी।

चुनाव आपका है। ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, हाथ दिए हैं, आंखें दी हैं, सांसें दी हैं, कमी है तो बस इरादे की। कोई चीज असंभव नहीं। हर इंसान संपन्न हो सकता है ज्ञान से, कर्म से। एक कदम उठाइए तो। और दोस्तों, जीवन है तो बाधाएं आएंगी, असफलताएं भी मिलेंगी। ऐसे पल आएंगे जब लगेगा अंधेरा बहुत घना है, लेकिन याद रखिए, सूरज हर रोज डूबता है, इसलिए कि अगले दिन और शानदार तरीके से उगे। आप और हम भी वैसे ही हैं। जब रिजल्ट खराब आए, जब सभी साथ छोड़ जाएं, जब मेहनत रंग ना लाए, जब सारे रास्ते बंद दिखे ना, तब आईने में देखिएगा और जोर से कहिए, नर हो ना निराश करो मन को। तो इस संकल्प के साथ आज अपने दिन की शुरुआत कीजिए कि कुछ भी हो जाए, हम निराश नहीं होंगे, बस अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे।

0: आज की विविधा में बस इतना ही। मिलेंगे इसके अगले अंक में अन्य विषय के साथ। कीजिए स्वीकार हमारा नमस्कार। ये आकाशवाणी लखनऊ है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। चंदपलों में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार।
2: गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
3: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
2: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
3: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
2: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
3: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
2: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
5: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है सरकार। डिजिटल जनगणना के पहले चरण में मुख्यमंत्री ने भी पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। सभी नागरिकों से जनगणना

0: सहभागिता दर्ज कराने का किया आह्वान। CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन किया अनिवार्य। 3 में से 2 भाषाएं भारतीय मूल की होंगी। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते दस्तक देगा मानसून। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बगल में 60 एकड़ भूमि पर नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है।
1: हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और हर जिले में एक स्टेडियम बने, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। 18 कमिश्नरी हैं, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बने, प्रदेश में अपना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। वाराणसी में BCCI की मदद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खेलकूद गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश में नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी है।
1: प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, सांसद खेल कूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी। देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी।
0: श्री योगी ने कहा कि ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप तथा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए CSR फंड से 100 करोड़ रुपए देने के लिए पेट्रोलियम मंत्री, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रति आभार व्यक्त किया। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सुशासन, निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाना जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था में आए सुधार ने आम नागरिकों से लेकर उद्योग जगत तक नया विश्वास पैदा किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस स्टेडियम से प्रशिक्षण लेकर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। शिलान्यास समारोह में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गोरखपुर में 46 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000 होगी। प्रदेश में जारी डिजिटल जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल गोरखपुर में स्वगणना का डिजिटल प्रपत्र भरा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में सहभागिता दर्ज कराने की अपील करते हुए कहा है कि ये देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है। इसका मुख्य उद्देश्य सटीक आंकड़े जुटाकर देश के विकास और कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना है। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर आज प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ के लोकभवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है।

0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित तथा आंतरिक होगा। सपा नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां को एक विवादित बयान के मामले में कल रामपुर की MP MLA कोर्ट ने 2 वर्ष की कैद और ₹20,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में एक सभा के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय की प्रथम नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कल अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों और गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी।
1: बहुत पुराना कॉलेज है आज़ादी के बाद का पहला, और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। इसमें रिसर्च वगैरह भी अब शुरू हो जाएगी या हो रही होगी, लेकिन अब क्या है कि रिसर्च बहुत पुरजोर तरीके से की जाएगी सबके साथ। तो फिर हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो, और इस पर मेरा प्रयास रहेगा।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल मिर्जापुर में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से तैयार किए गए विंध्य प्रसादम गिफ्ट बॉक्स का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि ये पहल वोकल फॉर लोकल और महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है। विंध्याचल में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए विंध्य प्रसादम में चुनरी से लेकर पूजा की सामग्री और प्रसाद उपलब्ध है। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कल वाराणसी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को बारिश से पहले नालों की सफाई, शहर की स्वच्छता और बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा भी मौजूद रहे। चित्रकूट नगर पालिका क्षेत्र में 90 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। कल नगर पालिका परिषद की बैठक के बाद अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि नगर में बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के साथ ही इसे सुंदर बनाया जा रहा है।
2: उत्तर प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर चित्रकूट के विकास के लिए चित्रकूट नगर में 90 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण और नगर के सुंदरीकरण, नगर के चमुखी विकास के लिए इस 26 और 27 इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।
0: मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में 1 माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गोवर्धन और वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। सिंचाई और जल संसाधन विभाग की ओर से प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए ये कक्ष 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है सरकार। डिजिटल जनगणना के पहले चरण में मुख्यमंत्री ने भी पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। सभी नागरिकों से जनगणना में सहभागिता दर्ज कराने का किया आह्वान। CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन किया अनिवार्य। 3 में से 2 भाषाएं भारतीय मूल की होंगी। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते दस्तक देगा मानसून। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून इन किया है 747 किलो हर्ट्स और सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का राग तोड़ी में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का ख्याल गायन राग थोड़ी में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ आकाशवाणी लखनऊ से, जिसे संपन्न करने का वक्त हो चला है। तो दीजिए अनुमति वैशाली को कार्यक्रम से। नमस्कार श्रोताओं, बने रहिए 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र के साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में।

रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को

0: निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में

0: कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोकसत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मानसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today.

0: इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म रॉब जिटन के दरमियान हेग में वसीतर मुज़ाकरात के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने अपने बाहमी ताल्लुकात को एक कलीदी शराकतदारी की सतह पर ले जाने से इत्तेफाक किया है। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, दिफा, टेक्नोलॉजी, पानी के बंदोबस्त, साफ तवानाई, हिफ्ज़ान-ए-सेहत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन का जायजा लिया।
1: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
0: तरजीही शोबों में वसी इश्तराक के लिए कई समझौतों पर भी दस्तखत किए गए। बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी तक ले जाने का ऐलान करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि पिछली एक दहाई में भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान ताल्लुकात में खातिरख्वाह पेशरफ्त हुई है और उन्होंने नीदरलैंड को भारत का एक कलीदी यूरोपीय शराकतदार करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात, मुश्तरका जमहूरी अकदार, मजबूत माशी तआवुन और अवाम से अवाम के दरमियान गहरे रिश्तों पर मबनी है।
1: हम नीदरलैंड को भारत के सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर में से मानते हैं। नीदरलैंड भारत के टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक है। हमारे हिस्टोरिकल, कल्चर और पीपल टू पीपल टाइज भी बहुत गहरे हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मार्केट इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ये हमारी साझी सोच का हिस्सा है। हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए।
0: नीदरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म रॉब जिटन ने भारत के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात की अहमियत पर भी जोर दिया और माशी और कलीदी शोबों में मजबूत तआवुन की हिमायत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी स्वीडन के दो रोज़ा दौरे पर आज गोटेनबर्ग पहुंचेंगे। ये दौरा भारत और स्वीडन के दरमियान वसत पा रहे इश्तराक के लिए एक तारीखी संगे मील साबित होगा। जनाब मोदी बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेने की खातिर स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत करेंगे और बाहमी बातचीत को तिजारत को बढ़ाने के साथ साथ मस्नूई जहानत, AI, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, दिफा, खला, आबो हवा से मुतालिक कार्रवाई और अवाम के दरमियान रिश्तों और कार्रवाई माहौल दोस्त बदलाव की जानिब मुंतकली को बढ़ाने के लिए तआवुन के नए मौके तलाश किए जाएंगे। दोनों मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म सनद के लिए यूरोपियन गोलमेज कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे, जो यूरोपियन कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डर लायन के साथ एक सरकर्दा पैन यूरोपियन सरबराहों का फोरम है। ये बातचीत वज़ीर-ए-आज़म के वसी यूरोपी दौरे के तीसरे मरहले का एक हिस्सा है और जनवरी 2026 में हुए भारत यूरोपियन आज़ाद तिजारती मुआहदे FTA के बाद से खित्ते का ये पहला दौरा है। ये दौरा बाहमी ताल्लुकात का जायजा लेने की गरज से तैयार किया गया है और इसका मकसद तेजी से बढ़ती हुई तब्दीलियों और पेचीदा जोग्राफियाई चैलेंजों के दौर में तआवुन का पता लगाना है। ये दौरा इक्तिसादी सरगर्मियों में तेजी के रुझान के बाद हो रहा है, जहां दो तरफा तिजारत साल 2025 में रिकॉर्ड 7.75 अमरीकी डॉलर हो गई और साल 2000 से 2025 के दरमियान भारत में स्वीडन के रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हजम 2.825 अरब डॉलर्स रहा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: स्वीडन, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा इख्तराई मईशतों में से एक है, भारत के डिजिटल पूल के साथ कुदरती हम आहंगी तलाश कर रहा है। फिलहाल 280 से ज़्यादा स्वीडिश कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, जबकि 75 भारतीय फर्म स्वीडन में कायम हो चुकी हैं। इस दौरे की एक ख़ास बात वज़ीर-ए-आज़म की यूरोपीय कमीशन की सदर के साथ यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस बराए सनद से मुश्तरक तौर पर खिताब है। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन सनती इंजमाम की तरफ बढ़ते हुए एक मरकजी सतून में तब्दील हुआ है। इन ताल्लुकात की जड़ें 2009 के दिफाई ताउन के माहदे और 2019 के जनरल सिक्योरिटी माहदे में पेवस्त हैं। मसनूई जहानत, AI और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में ताउन इस शराकतदारी की बुनियाद फराहम करता है। इसके अलावा दोनों ममालिक

0: कोलकाता की सियालदा अदालत में एक केस दायर किया था जिसमें उन्होंने टीएमसी के साबिक एमएलए निर्मल घोष, संजीव मुखोपाध्याय और घोला पुलिस स्टेशन के उस वक्त के इंचार्ज की गिरफ्तारी की अपील की थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 के निफाज के जरिए भारत के चीफ जस्टिस को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 33 से 37 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कानून और इंसाफ की वजारत की तरफ से शाया करदा एक गेजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक इस ऑर्डिनेंस में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक एक्ट 1956 में तरमीम की गई है। एक मुल्क एक चुनाव बिल से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी ने कल सियासी पार्टियों, कानूनी बिरादरी और सिविल सोसाइटी के साथ बेंगलुरु में वसी तर तबादले ख्याल किया। बाद में अखबार नवीसों को जानकारी देते हुए कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने बताया कि मुख्तलिफ रियासतों के अपने दौरे के दौरान मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की तरफ से एतराजात और सिफारिशात जमा की जा रही हैं। बैडमिंटन में बैंकॉक में जारी थाईलैंड ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में आज सत्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रॉली कॉर्नेंडो और डेनियल मार्टिन से जोड़ी से होगा। इससे पहले कल सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी मलेशिया के गो ज़ीफी और नूर इजुद्दीन को हराकर फाइनल में पहुंची है। टेनिस में आलमी नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर इटालियन ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में रोम के कैंपो सेंट्रल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। आज फाइनल में सिनर का मुकाबला कैस्पर रूट से होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबार ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे की खबर को सफ़े अव्वल की शहसुर्खी बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म कल एम्स्टर्डम पहुंचे जहां भारतीय बिरादरी ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मशरिक़ वस्ती में जंग और बढ़ती आलमी गैर यकीनी कई दहाइयों की तरक्की को उलट सकती है और बड़ी आबादी को दोबारा गुरबत में ढकेल सकती है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने तमिलनाडु में वज़रा में कलमदानों की तकसीम से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर जगह दी है। अखबार के मुताबिक वज़ीर आला जोसेफ विजय ने दाखला और आम इंतजामिया जैसे अहम महकमे अपने पास रखे हैं। रोजनामा प्रताप ने दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता के उस बयान को अपनी शहसुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बेटियों की तालीम सिर्फ ख़ानदान ही नहीं बल्कि समाज और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद होती है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के उनके हम मनसब रॉब जेटन के दरमियान बातचीत के बाद दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदल दिया है। वज़ीर आज़म मोदी स्वीडन के अपने दो रोज़ा दौरे पर आज गोटेनबर्ग पहुंचेंगे। इस दौरान वज़ीर आज़म स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत करेंगे। महकमा आसार कदीमा ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं को भोजशाला मंदिर में बिला रुकावट दाखिले की इजाज़त दे दी है। हुकूमत ने चांदी की दरामद में कटौती करते हुए इसे पाबंदी वाली अशिया के जुमरे में डाल दिया है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में हवाई जहाजों के ईंधन पर वैल्यू एडिड टैक्स में कटौती करते हुए इसे 25% से घटाकर 7% कर दिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, समय है सुबह के 8:45 का और ये समय होता है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत का। तो अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों को तो हमें ईमेल लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। आज इस कार्यक्रम में मैं वैशाली आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज जो सबसे पहले हमें मेल भेजने वाले श्रोता हैं, इन्होंने मेल भेजा है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी मनीष, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य

इन्होंने हमें मेल भेजा है और ये अगला मेल जो है भेजने वाले श्रोता है दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र, नोखेलाल, और इन्होंने लिखा है सप्रेम नमस्कार, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। अगला है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन, फातिमा खातून और सुरीत रमेश साहू जी ने मेल भेजा है और लिखा है आदाब। डुमराव बिहार से मेल भेजा है डब्लू सोनम, दानिश और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने। एक मेल है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद और परमानंद जी का, और सारिमपुर बक्सर से मेल है राज एस डी और आसमा खातून का। आप सभी ने अपने फरमाइश का गीत हमें लिख भेजा है और सुनना चाहते हैं अपने पसंदीदा गीत को। नमस्कार लिखा है हमारे श्रोता जो हैं बडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस जी, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। तो आप सभी सुनना चाहते हैं चित्तचोर फिल्म का गीत जिसे गाया है यसुदास और साथियों ने।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत में। नमस्कार, हमारे श्रोता ने लिख भेजा है और इन्होंने संदेश लिखा है, किसी का बुरा सोचे बिना उसका भला करो, क्योंकि किसी ने कहा है, जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू अक्सर रह जाती है। बहुत ही अच्छा सा संदेश है आपका। और आप हैं चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा और इनके परिवार के सदस्य बंधु, और इन्होंने अपनी फरमाइश का गीत सुनना चाहा है। ज़रूर हम सुनवाएंगे आपको आपका पसंदीदा गीत। और अब जो मेल है इसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं, इन्होंने हमें मेल भेजा है बाज़ार रोड मुंगीसापुर से, मोहम्मद जाकिर, कमरुन निशा, शबिस्ता, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी ने। और इन्होंने लिखा है, इन्हें कार्यक्रम बेहद पसंद आते हैं आकाशवाणी लखनऊ के, और ये कार्यक्रम में अपने पसंदीदा गीत को भी सुनना चाहते हैं। और ये है बालकृष्ण, प्रवीण, मुनीश, राहुल जी, इन्होंने पंजाब से हमें मेल लिख भेजा है और अपने गीत की फरमाइश की है। ज़िलाधार धर्मपुरी से मूसा जी, ईशा जी और जाकिर खत्री ने मेल भेजा है। और ये मेल है बापू कॉलोनी खंडवा मध्य प्रदेश से, शालिया डाबर, हलीमा, जिक्रा, आयशा और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। और आप सभी ने फरमाइश की है किशोर कुमार की आवाज़ में जहरीला इंसान फिल्म का प्यारा सा गीत सुनने की।

0: लगेगी ना।
1: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
1: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से मेल भेजा है हमारे श्रोता महाराज कीर्तनपुरी, लक्ष्मी देवी जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। और इन्होंने लिखा है नमस्कार, अपनी फरमाइश का गीत सुनना चाहते हैं। और अब जो मेल है इसे भेजने वाले श्रोता हैं नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, मुसरत जहां, तलहत, फरहत, रिफत, नुजहत, शाजिया, नाज, नाजिया और इनके घर परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं। और अब जो हैं ये मेल भेजा है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद और सानवी देशमुख ने। और इन्होंने नमस्कार के साथ ही अपने फरमाइश का गीत भी हमें लिख भेजा है। और ये हैं हमारे श्रोता जिन्होंने लिखा है इन्हें आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम बेहद पसंद आते हैं और ये रोज़ नियम से कार्यक्रमों को सुनते भी हैं। और इन्होंने अपनी फरमाइश का गीत लिखा है। ये श्रोता हैं हमारे ग्राम व पोस्ट ललहुआ ज़िला खीरी से विजयपाल जी, शुभम यादव, शिखा, ऋचा गुड़िया और राजेश सुरभि, विजय पांडे और बबलू यादव, इन्होंने मेल भेजा है। और एक मेल और है, ये हैं बीड शहर महाराष्ट्र से संगीता, साक्षी, नंदकिशोर, अंजलि, बाला साहेब करवा। और हमारे एक श्रोता और हैं जिन्होंने हमें मेल लिख भेजा है, ये हैं दतरेंगी भाटापारा से सोनम, फातिमा और सरफुद्दीन और डब्लू वली। आप सभी सुनना चाहते हैं वारंट फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

नमस्कार, इन्होंने हमारे श्रोता हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से वलीउल्लाह डब्लू, रेशमा बेबी अंसारी, आपने मेल भेजा है और अपनी फरमाइश भी हमें लिख भेजी है, तो ज़रूर सुनवाएंगे आपका पसंदीदा गीत। और ये हैं सहारनपुर दाऊद सराय से मुदस्सिर मुजक्किर ज़रीफ शन्नो साबरी और अनवर साबरी जी, इन्होंने मेल भेजा है और अपनी फरमाइश हमें लिख भेजी है। एक मेल है ये भेजने वाले हमारे श्रोता हैं गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, और इन्होंने अपनी फरमाइश का गीत हमें लिख भेजा है। और ये हैं, लिखते हैं राम राम जी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया और निमित ने हमें मेल भेजा है। और हमारे एक श्रोता और हैं, इन्होंने हमें मेल भेजा है, ये प्रमोद कुमार दूदी और राजकुमार दूदी, हिसार फ्रांसी गांव से इन्होंने मेल भेजा है। आप सभी सुनना चाहते हैं चलते चलते फिल्म का गीत, जिसे गाया है बप्पी लहरी और सुलक्षणा पंडित ने।

आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से वैशाली के साथ। जिला खंडवा मध्य प्रदेश से हमें मेल भेजा है दिव्यांश, सूरज, गोलू, कुसुमबाई, बिंदु, भावना, वंदना, राधेश्याम और दुर्गेश जी ने, और इन्होंने नमस्कार लिखा है। आपको भी प्यार भरा नमस्कार। और एक मेल है, इसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू और इनके बहुत सारे मित्र बंधु सभी ने मेल भेजा है। एक मेल है, इसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण, मनी राम, विजेंद्र, नरसिंह राजपूत, सोहन सिंह, शिव नारायण और किन्ना बाबू, आप सभी ने धन्यवाद लिखा है और लिखा है हमारा गीत ज़रूर शामिल करें। तो कोशिश पूरी हमारी रहती है श्रोताओं। और ये हैं फुलई नगर बीड महाराष्ट्र से मेल भेजने वाले हमारे श्रोता हैं दिव्यानी, स्वस्तिक और शशांक, तन्नु, तान्या, इन सब ने हमें मेल लिख भेजा है। और एक और हमारे श्रोता हैं, इन्होंने भी आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं, आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में लहू के दो रंग फिल्म का गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही वक्त हो चला है कि हम आपसे इजाजत लें। तो आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम से दीजिए हमें अनुमति। आपको प्यार भरा नमस्कार। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं 747 किलो हर्ट्स पर। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी लखनऊ है, आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे,
2: कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
3: विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही है, इनमें कृषि की खास भूमिका है। ऐसे में देश का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी कृषि क्षेत्र में योगदान देकर देश में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। प्रदेश गेहूं, दूध, गन्ना, आलू, आम, अमरूद, मटर, मशरूम, तरबूज और शहद के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। औद्यानिकी के क्षेत्र में भी देश के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान है। प्रदेश की इस उपलब्धि ने युवा पीढ़ी को भी बागवानी को करियर के रूप में चुनने के लिए प्रेरित किया है। आज काफी संख्या ऐसे युवाओं की है जो उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद स्टार्टअप के तौर पर कृषि क्षेत्र में भविष्य तलाश रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले लोगों की मदद के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और कैसे वो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा। मनीष जी, सरकार कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है?
4: पहले ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं। जो आपने प्रश्न उठाया बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न है। पूरे देश में न सिर्फ कृषि में बल्कि बहुत सारे क्षेत्रों में जो विज्ञान के क्षेत्र हैं, जैसे कि मेडिकल रिसर्च जिसमें ICMR, इंडस्ट्रियल रिसर्च है जिसमें CSIR, और जो कृषि का शोध है जिसमें कि

0: ICAR जैसे संस्थान रोज नवाचार कर रहे हैं और नई नई तकनीक का विकास कर रहे हैं। इन तकनीकियों के माध्यम से स्टार्टअप का बहुत सारा सृजन हो रहा है। अब भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप का देश है
1: जी
0: और लगभग समय 5,000 स्टार्टअप एग्री स्टार्टअप काम कर रहे हैं, बहुत बड़े, जैसे कि देहात है, निंजा कार्ट है, ऐसे तमाम स्टार्टअप आज इस देश में विकसित हैं। और ये तब संभव है जबकि कृषि तकनीकी नवाचार के माध्यम से विकसित हो गई हैं और इनके माध्यम से लोगों तक पहुंचने का, डिजिटाइजेशन का, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, AI लेड प्रिसीजन फार्मिंग का एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध हो गया है।
1: जी मनीष जी, एक खास रुझान जो देखने को मिल रहा है कि जो आजकल के युवा हैं वो पढ़ाई करके हायर स्टडीज करने के बाद भी जॉब करने के बजाय कृषि की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो कोई युवा अगर स्टार्टअप के तौर पर कृषि को अपनाना चाहता है तो वो कहाँ से शुरुआत कर सकता है?
0: कृषि आज भी इस देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और जो स्टार्टअप की संभावनाएं हैं जो वो सबसे बड़ी कृषि में है। तो मुझे लगता है कि कोई भी युवा जो निकलते हैं पढ़ करके, उनको कृषि एक बहुत ही आकर्षक माध्यम दिखाई पड़ता है। और इसमें संभावनाएं इसलिए बहुत हैं क्योंकि बाकी सारे जो व्यवसाय हैं उनका एक डिक्लाइनिंग पॉइंट होता है, कृषि का कभी नहीं हो सकता है क्योंकि हमेशा हमको खाद्यान्न की, हमेशा में उद्यान फसलों की, हमें सब्जियों की हमको हमेशा जरूरत पड़ने वाली। तो इस नाते से कोई भी अगर युवा एक कृषि व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो पूरे देश में एक बहुत ही परंपरागत ढांचा है इन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए।
1: जी
0: इनको बोलते हैं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, जो पूरे देश में खाली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 50 के करीब पूरे देश में है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT में बहुत सारे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM में बहुत सारे हैं। ऐसे देश में बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं जो आपको तकनीक के माध्यम से, आपको फंडिंग के जरिए, आपको तकनीकी कौशल के माध्यम से ये आपको प्रोत्साहित करते हैं और आप एक स्टार्टअप अपना शुरू कर सकते हैं। तो कोई भी युवा किसी भी जगह, जहां भी रहता हो पूरे देश में, वो अपने पास का जो एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है उसको संपर्क कर सकता है, उसके माध्यम से एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है।
1: जी खास तौर से अगर फसलों की बात करें कि एक रूटीन जो हमारी जो पारंपरिक फसलें हैं उनके अलावा भी बहुत तरह की फसलें इंट्रोड्यूस हुई हैं जो आमदनी को बढ़ाती हैं, तो आप एज एन एक्सपर्ट क्या सलाह देते हैं कि ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनसे आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है और उनकी ज्यादा डिमांड है मार्केट में?
0: मुझे लगता है कि सारी फसलें आपकी अच्छी होती हैं, उसमें कोई फसलों में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्या है, डिमांड और सप्लाई का जो गैप होता है उसका अध्ययन करना जरूरी है। किसी भी जगह में आप ऑफ सीजन वेजिटेबल्स को अगर आप उत्पादन करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ होता है। कहीं भी, बहुत बड़ा देश है तो उसकी जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं अलग अलग होती हैं, तो एक जवाब तो उसके लिए मुफीद नहीं हो सकता, लेकिन आप बहुत सारी ऐसी फसलों को नेट हाउस कंडीशन में उगा सकते हैं जबकि वो सामान्य दशाओं में उगाई नहीं जा सकती, तो उनमें आपको बहुत लाभ होता है। बहुत सारे किसान खीरे की खेती करते हैं एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, टमाटर की खेती करते हैं, अन्य सब्जियों की खेती करते हैं जिनको उनको अतिशय लाभ होता है। तो ऐसी फसलों के चुनाव के लिए क्या करना होगा कि आपको वहाँ के जो किसानों का, जो भी वहाँ पर एक इंक्यूबेशन सेंटर होगा, चाहे वो ICAR का हो या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हो, उनसे संपर्क करना पड़ेगा और उनसे एक पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी कि इस समय में, इस वातावरण में मैं कौन सी ऐसी खेती कर सकता हूँ कि मुझे अधिक अधिक लाभ हो। तो इसके लिए जो है एक, मतलब एक सामान्य उत्तर नहीं हो सकता कि पूरे देश में कौन सी फसल फायदेमंद होगी, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रों पे निर्भर करेगी।
1: मनीष जी, आपका खास जुड़ाव आम के रिसर्च से है, आपका इंस्टीट्यूट में आम को लेकर काफी काम होता है और यूपी में खासकर मलिहाबाद का दशहरी आम या प्रदेश के अन्य हिस्सों में जो आम की फसल है वो एक्सपोर्ट भी होती है और बहुत फेमस भी है, तो अगर इससे जुड़ना चाहते हैं युवा तो वो कैसे शुरुआत करें?
0: जो मलिहाबाद का दशहरी आम है ये विश्व का बहुत प्रख्यात आम है और इसको एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन 125, GI 125, यानी कि इस तरह का आम मलिहाबाद के किसान या आसपास के किसान ही उगा सकते हैं और कोई नहीं उगा सकता। और इसकी मार्केटिंग और इसकी ब्रांडिंग और इसका प्रमोशन और इसका एक्सपोर्ट पे तमाम सारी CISS लखनऊ ने पहल की है। ये आम पिछले वर्ष यहाँ से समुद्र के माध्यम से सिंगापुर तक भेजा गया जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ, और इस फसल को इससे पहले भी हम लोगों ने अमेरिका में भेजा था एयर के रूट से और वहां भी लोकप्रिय हुआ। तो इसकी अपार संभावनाएं हैं, युवाओं को चाहिए कि इस बहुत ही खूबसूरत फसल के साथ जुड़े और इसको बहुत बढ़ावा दें क्योंकि इस पूरे

0: में बहुत लोकप्रियता है।
1: जी मनीष जी, जो आम एक्सपोर्ट होते हैं एक बड़ा हिस्सा उसका है जो मलियाबाद से जाता है, और जैसा कि आपने बताया कि जगह जगह पर निर्यात किया जा रहा है और काफी दूर तक इसने अपनी पहुंच बना ली है, तो इसमें बीते कुछ सालों में आप कितना सुधार लगता है कि आया होगा?
0: उत्तर प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, यहाँ पर कोई भी समुद्र की सीमा नहीं लगती। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आप आम को अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ आपके पास एक वायु का माध्यम रह जाता है, और एयर का जो माध्यम होता है वो बड़ा महंगा होता है, करीब 450 रुपए किलो होता है उसका खर्चा आता है।
1: जी
0: अगर आप समुद्र से ले आते हैं तो वो बेहद सस्ता हो जाता है, यानी कि आपका 50, 60, 100 रुपए की। तो ये माध्यम सबसे बढ़िया माध्यम है अगर समुद्र से ले जाए। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि आप ले जाओगे वायु मार्ग से तो आपका 4 दिन में आम पहुंच जाएगा, 2 दिन में आम पहुंच जाएगा, लेकिन आप अभी समुद्र के मार्ग से ले जाते हैं तो वो लगता है 30 दिन 35 दिन। अगर आप दुबई पहुंचाना है तो कम लगता है, लेकिन अगर आप सिंगापुर ले जाओगे तो आपको लगभग 22 दिन 25 दिन लग जाता है, आपको आप रशिया ले जाओगे तो लग जाता है 30 से 32 दिन। तो ये समुद्र का मार्ग से ले जाने के लिए सबसे पहले क्या है कि आम की शेल्फ लाइफ बढ़ानी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो केंद्रीय उपज बागवानी संस्थान है उसने एक तकनीक विकसित की जिसको सी रूट प्रोटोकॉल कहते हैं, कि यानी समुद्र से ले जाएं तो उसका पूरा प्रोटोकॉल विकसित किया कि इस तरह से आम को आप तोड़ें, इस तरह से आम को उगाएं, इस तरह से आम को पैक हाउस में लाएं, ऐसे पैक करें, और इस तरह से अगर आम धीरे धीरे समुद्र में जाता है तो 30 दिन 35 दिन आराम से आम रहता है। तो ये बहुत बड़ी संभावना जो है पिछले कुछ सालों में खुली है, जिसकी वजह से बहुत सारे निर्यातक अभी सामने आ रहे हैं, पूरे पूरे देश से आ रहे हैं सामने, और वो हमारी तकनीक का, हमारे प्रोटोकॉल का उपयोग करके विभिन्न देशों में आम को भेजा। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस तकनीक के द्वारा हमारा आम जो है पूरे विश्व में जा।
1: जी एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि युवाओं को क्या संदेश देंगे आप, जो मन बना रहे हैं कृषि के तरफ आने के लिए और वो चाहते हैं कि कृषि के माध्यम से वो आगे बढ़ें और अपनी आय को बढ़ाएं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे?
0: अब मैं तो ये कहता हूँ कि युवाओं के लिए कृषि एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। पूरे दुनिया में सारे व्यवसाय में उतार चढ़ाव आ सकता है, कृषि में नहीं आ सकता, क्योंकि कृषि आपकी से उपजे हुए जो उत्पाद होते हैं आपकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, आपको रोज खाना चाहिए होता है, आपको रोज फल चाहिए होते हैं, आपको रोज सब्जियां चाहिए होती हैं, और इसमें अगर आप युवा आगे आते हैं तो उनके पास बेहद बड़े अवसर हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें वो खासतौर पर प्रोसेसिंग में आते हैं, जहां पर कि फलों को या अनाज को या सब्जियों को प्रोसेस करके और एक प्रोडक्ट फॉर्म में लाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा मार्केट इस देश में अभी है और जो कि बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। तो उसमें अपार संभावनाएं हैं किसी भी स्टार्टअप के लिए। मैं सारे युवाओं का आह्वान करता हूं कि इस क्षेत्र में आएं और देखें कि एक तरह से आपका विकास हो।
1: जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू।
2: सामयिक चर्चा में आज आपने सुना कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा से खास बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
3: सामयिक चर्चा आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान।

0: अभी आप संवेद स्वर में देश गान सुन रहे थे। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र 747 किलो हर्ट्स पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है उर्दू कार्यक्रम, पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
1: उर्दू प्रोग्राम के सामईन की खिदमत में शफकत अली खान का सलाम कबूल हो। सामईन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की शख्सियत में जमा कमालात थे। वह बैक वक्त अजीम सियासतदान, मुदब्बिर, फलसफी, शायर और बुलंद पाया सहाफ़ी थे। ये हकीकत है कि उन जैसी शख्सियतें दुनिया में कभी कदार पैदा होती हैं। हिंदुस्तान से मोहब्बत उन्हें वर्से में मिली थी। उनकी वालदा मोहतरमा बी अम्मा अपने ज़माने की मशहूर और मोहतरम और हर दिल अजीज शख्सियत थी। खिलाफत तहरीक के दौरान कौमी बेदारी की अलामत बन चुकी थी। बी अम्मा के फर्जंद मौलाना मोहम्मद अली जौहर हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में एक अहम सियासी रहनुमा और सरफरोश मुजाहिद की हैसियत से हमेशा याद की जाएंगे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर व बुलंद पाया बुलवतन और गयूर हिंदुस्तानी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के सामने मुतालबा रखा था वह गुलाम हिंदुस्तान में वापस नहीं जाना चाहेंगे। तो आई सामाइन डॉक्टर दरख्शां ताजवर से उनका मकाला सुनते हैं। मौजू है गुलाम हिंदुस्तान में मरना भी गवारा ना होगा।
2: सुरूर जहानाबादी का एक शेर है, सुरूर जिसमें न हुब्बे वतन का हो एहसास, वो दिल हो चूर के बेहतर है इससे पारे संग। हुब्बुल वतनी एक ऐसा जज्बा है जो हर जी नफस में मौजूद होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हुब्बुल वतनी के बुलंद बांग दावे तो नहीं करते लेकिन ये जज्बा उनकी रूह तक में सरायत कर लेता है। ऐसा ही एक बंदा है मोमिन जिसने अपनी हुब्बुल वतनी के जज्बे को अपने कौल व अमल से साबित किया है, उसका नाम था मौलाना मोहम्मद अली जौहर। अगर हम मौलाना मोहम्मद अली जौहर की जिंदगी का जायजा लें तो हमें इनके अकीदे का अक्स उनकी जिंदगी के हर दौर में दिखाई

अभी आपने नीरजा प्रकाश के स्वर में झूमर सुना। श्रोताओं, इसी के साथ लोक गीत का कार्यक्रम लोक रंग अब संपन्न होता है। नीरजा प्रकाश के गाए अवधि लोक गीतों का आप आनंद ले सकते हैं लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार 12:00 से। समय हुआ है सुबह के 10:00 का और ये समय होता है आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम का। आप सभी श्रोताओं को वैशाली का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज जो पत्र हमें सबसे पहले भेजा है, ये श्रोता हैं हमारे और इन्होंने फरमाइश की है अक्रम अंजाना के स्वर में छप रहिया सुनने की। ये पत्र है दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी का। आपकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं छप रहिया, स्वर अक्रम अंजाना का।

मीनू खरे और रश्मि श्रीवास्तव के स्वर में आइए सुनते हैं देवी गीत। सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने।

मीनू खरे और रश्मि श्रीवास्तव के स्वर में अभी आपने देवी गीत सुना। इसी के साथ आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। 10:20 से आप पुनः सुन सकेंगे आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं 747 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 10:10 होने वाले हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यूटेन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन के स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। अमेरिका और नाइजीरिया की सेना इस्लामिक स्टेट वरिष्ठ कमांडर अबू बिलाल अल मिनुकी को मार गिराया। बुल्गारिया ने ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट 2026 में सबसे अधिक वोट प्राप्त करके जीत हासिल की। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। और टेनिस में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर इटली ओपन के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यूटेन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यूटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री

0: ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: भारत और स्वीडन के बीच एक सदी से अधिक पुराना व्यापारिक और आपसी संबंध का समृद्ध इतिहास है, जो पारस्परिक सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है। दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों की पहचान कई ऐतिहासिक उपलब्धियों से होती है, जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की 1926 में स्वीडन यात्रा की शताब्दी। आज ये संबंध अपनी सांस्कृतिक नींव से आगे बढ़कर एक मजबूत औद्योगिक और आर्थिक साझेदारी में तब्दील हो रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने इस बात पर बल दिया कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और नाइजीरिया की सेनाओं ने इस्लामिक स्टेट के वरिष्ठ कमांडर अबू बिलाल अल मिनुकी को मार गिराया है। शुक्रवार रात को नाइजीरिया के लेक चाड बेसिन में सेना द्वारा एक संयुक्त सैन्य अभियान चलाया गया, जिसमें इस्लामिक स्टेट के वरिष्ठ कमांडर अबू बिलाल अल मिनुकी और अन्य आईएसआईएस के आतंकियों को मार गिराया गया। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबी ने इनके मारे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने संयुक्त सैन्य अभियान की सराहना करते हुए इसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में प्रभावी सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा कि नाइजीरिया में शीर्ष आईएसआईएस आतंकियों का खात्मा देश में ईसाइयों की सुरक्षा में सहायक होगा। बुल्गारिया ने ऑस्ट्रिया के वियना स्थित वियना स्टथडिल में आयोजित यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट 2026 प्रतियोगिता जीत ली है। एक रिपोर्ट।
5: प्रतियोगिता में DARA के गीत बंग रंगा को सबसे अधिक वोट मिले। बुल्गारिया की 4 वर्ष में ये पहली जीत है। बुल्गारिया ने कुल 516 अंक के साथ प्रतियोगिता जीती है। यूरोविजन की परंपरा का पालन करते हुए पहले निर्णायक मंडल ने अंक दिए, उसके बाद जनता के टेली वोट के परिणाम घोषित किए गए। वहीं निर्णायक मंडल ने गीत बंग रंगा को 204 अंक दिए और टेली वोट के माध्यम से उसे 312 वोट मिले। लगभग 10 वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है जब निर्णायक मंडल और जनता ने एक ही विजेता को चुना है। इससे पहले ये प्रतियोगिता 2017 में कीव में हुई थी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इसराइल और लेबनान के बीच वाशिंगटन में अमेरिका की मध्यस्थता से हुए 45 दिन के युद्ध विराम के विस्तार

0: की घोषणा का स्वागत किया है। श्री गुतरश ने संबंधित देश से शत्रुता समाप्त करने, हमले रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अपने दायित्वों का समुचित पालन करने का आग्रह किया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार पल।
1: बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे।
0: आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों की रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। अमेरिका और नाइजीरिया की सेनाओं ने इस्लामिक स्टेट के वरिष्ठ कमांडर अबू बिलाल अल मिनुकी को मार गिराया। बुल्गारिया ने वियना में आयोजित यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट 2026 जीता। 10 वर्षों में ऑस्ट्रिया ने सबसे अधिक वोट हासिल किए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। और टेनिस में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने इटली ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम में। आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं संजोली पांडे के स्वर में खेमटा। इसे सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह, पन्नीलाल, आशीष कुमार, हितेश, राजेश, अमर, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती भारती, खनक, शगुन, शारांश, अयांश, अदिति, शिवांश और प्रथव सिंह ने।

और अब आइए सुनते हैं दिग्विजयनाथ सिंह के स्वर में पूर्वी। इसे सुनना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, हरदेव, मीका, बलबिंदर, जयतेग और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने।

आप सुन रहे हैं आपके पसंद के लोकगीत कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। अब जो पत्र भेजा है विमल पंत रिंगनी छत्तीसगढ़ से भेजा है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने, और इन्होंने फरमाइश की है संजू मिश्रा के स्वर में गंगा गीत सुनने की।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अंजू भारती के स्वर में कहरा। आपकी पसंद के लोकगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से। विवेकानंद व्यास के स्वर में भोजपुरिया विदेशिया सुनने के लिए हमें पत्र भेजा है देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री ने।

आइए सुनते हैं वंदना मिश्रा के स्वर में मेला गीत। इसे सुनने के लिए पत्र लिख भेजा है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, रेयांश और ज्योति ठाकुर ने। और छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से पत्र भेजा है द्वारिका प्रसाद, किशोर कुमार, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार ने।

किरण गौतम के स्वर में आइए सुनते हैं चकिया। इसे सुनने के लिए पत्र भेजा है ग्राम वीरपुर पोस्ट कथरा बाजार जनपद श्रावस्ती से प्रभुदयाल पाठक, रघुवर दयाल, भोलानाथ, अनुपम, आशुतोष, शुभम और प्रभाकर पाठक ने।

और अब हम आपको सुनवा रहे हैं पूजा तोमर का गाया ये नकटा, जिसे सुनना चाहते हैं आप सब। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ प्रदेश से रामचंद्र माखीजा, शंकरलाल माखीजा, ज्योति माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, सोना श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और पूरा माखीजा परिवार। तो लीजिए सुनिए ये नकटा।

0: अभी आपने सुना पूजा तोमर की आवाज़ में ये नगटा। इसके साथ ही आज का आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को डॉक्टर विकास चंद्र शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम हम आरंभ करें उससे पहले आपको बता दें अपना फ़ोन नंबर जिस पर आप कॉल करेंगे और सुनेंगे अपने मनपसंद गीत और हमसे करेंगे बातें। तो हमारा फ़ोन नंबर है 2238825। फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुने 2238825 और STD कोड लखनऊ का जो कि आप जानते हैं लेकिन फिर भी हम आपको बता दें 05220522। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन कॉलर हमसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी कौन बोल रहा है?
1: हम मिंटू तिवारी ग्राम बाखरना तहसील खागा जिला फतेहपुर से बोल रहे हैं सर। गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग तिवारी जी, क्या हालचाल हैं?
1: बढ़िया है सर। आज पहली बार 2026 मेरी इसमें पहली बार कुछ तुम कहो कुछ हम कहे में पहली बार मेरा कॉल लगा है।
0: भाई आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका आज फोन लग गया। क्या करते हैं तिवारी जी?
1: बस यही खेती किसानी का काम करते हैं। खेती किसानी का काम मतलब सब कंप्लीट हो गया। अब धान आन की मतलब बोई आ रही इधर
0: जी।
1: अब उसी तैयारी में धान की रुपाई वाला काम होने वाला है
0: जी।
1: तैयारी में लगे हैं सर।
0: मौसम कैसा है इस समय?
1: मौसम तो इधर बहुत गर्म हो रहा है सर। गर्मी बहुत पड़ रही है
0: इस समय। लगता है कि इस समय पूरे भारत वर्ष में धीरे धीरे गर्मी, उत्तर भारत खास करके गर्मी की चपेट में आ रहा है लग रहा है। तो
1: जी।
0: क्या कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: आज हमको गाना सुना दीजिए जमाना दीवाना का। जमाने को अब तक नहीं है पता, किसी को हम डेडिकेट करना चाहते तो नाम ले लें।
0: हाँ हाँ जरूर बोलिए।
1: पहले तो प्रभाकर तिवारी जी हो गए मेरे, रसूलपुर गुलराह से हो गए, राजेंद्र प्रसाद कुंडलापर से हो गए, जितेंद्रपाल जी और मांगीलाल चंदेल जी और राहुल भाई रावत हो गए। आपको जितने कुछ तुम कहो कुछ हम कहे में जितने आर्जे उन सभी के लिए गाना चाहते हो, जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए गाना देते हैं।
0: चलिए आपकी बड़ी लंबी फहरिस्त थी लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। इसी तरह हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।

हेलो हेलो हेलो, देखें हमारे अगले श्रोता कौन हैं। जी बताएं कौन बोल रहा है। हेलो हेलो हेलो, लगता है हमारा फ़ोन संपर्क इनसे कट गया है किसी कारणवश। तो आइए जब तक हम अपने अगले कॉलर से बात करें तब तक सुनते हैं ये गीत।

0: कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विकास चंद्र शर्मा। फ़ोन नंबर हमारा आपने नोट कर लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता दूं कि हमारा फ़ोन नंबर है 2238825। तो चलिए देखते हैं अब कौन से कॉलर हमसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। हेलो,
1: जय माता दी।
0: जय माता दी, कौन बोल रहा है?
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और
0: जी,
1: मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का ना अंचनल बुगला से बात बोल रहा हूँ सर।
0: यानी कि पिंक सिटी से आप बोल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या हाल
1: सर,
0: चाल
1: मैं
0: है?
1: जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ।
0: जी जी जी, मैंने इसीलिए तो कहा कि आप पिंक सिटी मतलब गुलाबी शहर से बात कर रहे हैं। कुछ गुलाबी
1: हाँ जी सर,
0: आज आपसे कुछ गुलाबी बातें होंगी। जी बताएं, क्या हाल चाल है?
1: बस सर बढ़िया है, आप सुनाओ, बहुत दिनों के बाद आए आप।
0: ड्यूटीज जैसे लगती हैं वैसे हम लोग काम करते हैं। तो क्या करते हैं आप?
1: सर हम तो खेती बाड़ी करते हैं, इस टाइम खेत खाली है, तो बस अब अगले 1.5 महीने बाद में फसल उगाएंगे, बाजरे की फसल बोएंगे सर।
0: वाह क्या बात है, कितनी अच्छी फसल आप उगाते हैं और हम लोग को खिलाते हैं। और बाजरा तो बहुत ही अच्छा अन्न है ना,
1: जी जी
0: श्री अन्न में आता है बाजरा। चलिए खैर, आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: जी सर, मैं आज फिल्म का नाम है नायक और गाने के बोला चलो चलो मेरे मित्र, ये गाना
0: जी जी, तो गाना आपका
1: और कुछ
0: सुन,
1: दोस्तों को याद कर लूँ, आप इजाज़त दे दी तो।
0: हाँ हाँ जरूर, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारे श्रोता कभी कभी लगातार एक ही आदमी के नाम रिपीट करते हैं वो ठीक नहीं। एक ने डेडिकेट कर दिया अच्छा लगता है, सब लोग एक ही व्यक्ति को डेडिकेट करेंगे तो ठीक नहीं। बोले
1: जी सर, क्योंकि हम रेडियो के माध्यम से हम दोस्त ही बनी हुई है सर, तो दूसरे का नाम से वो भी खुश हो जाते हैं और हम भी खुश हो जाते।
0: नहीं आप खुश हो, आपकी खुशी में हमारी खुशी है, लेकिन समस्या इस बात की है कि सभी लोग अगर जो एक ही आदमी का नाम लेते रहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, बाकी लोगों को भी चांस चाहिए। बोलिए।
1: चलो सर, मैं सभी के लिए सुनाना था, तो जितने भी आकाशवाणी लाइव लखनऊ सुनने वाले भाई।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही हमें कॉल करते रहिए। लीजिए आपका गाना सुनते हैं हम सब लोग मिल करके। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार
0: नमस्कार, कौन बोल रहा है?
1: जी। मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अभिराज त्री बोल रहा हूँ। और सर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आकाशवाणी लखनऊ पे आज जो नंबर चल रहा है वो है 0522223885,
0: अरे
1: ये नंबर
0: वाह,
1: चल रहा है। तो
0: बहुत अच्छा जी।
1: जी। तो बाकी श्रोता का अगर वो 25 वाले पे ट्राई करें तो कृपया वो 45 वाले पे ट्राई कीजिए, तो आपका फ़ोन लग जाएगा।
0: अच्छा,
1: जी,
0: चलिए चलिए चलिए, ठीक है। तो कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: आज मुझे साथी मूवी से सुना दीजिए, कुमार सानू जी की आवाज़ में। जिंदगी की तलाश में मौत कितने पास आ गई, एक गीत मुझे सुना दीजिएगा। और जितने श्रोता सुन रहे हैं सबके लिए गीत दिल के संत रहेगा।
0: ओके ओके, ठीक है, चलिए हम आपको ये गीत सुनवाते हैं।
1: जी, धन्यवाद।

हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारा आज का फ़ोन नंबर है 2238-845। ध्यान दीजिएगा, हमारा फ़ोन नंबर है 2238-845 और स्टडी कोड नंबर तो आपको पता है 0522। जी हाँ, हमें कॉल कीजिए 2238-825-2238845 पर।

0: से जुड़ना चाहते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है?
1: जी, मेरा नाम बसंत कुमार है, ग्राम पोस्ट फतेहपुर, जिला सीतापुर से बोल रहे हैं। सर, आप कैसे हैं?
0: हाँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं बसंत जी?
1: जी, बहुत अच्छे हैं सर।
0: क्या करते हैं?
1: सर, हम अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और हमारा MA कंप्लीट है सर,
0: जी
1: और जो भी परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी करते हैं, पेपर देते रहते हैं सर।
0: अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा क्या शौक़ हैं आपके?
1: इसके अलावा सर, संगीत सुनते हैं, जैसे विविध भारती मुंबई और आकाशवाणी लखनऊ के प्रसारण सुनते रहते
0: कौन से
1: हैं।
0: कार्यक्रम पसंद आते हैं हमारे आपको?
1: आपके यहाँ से सर वो मजदूर मंडल हो गया, नई उड़ान हो गया इसका नाम, वो कार्यक्रम अच्छा लगता है।
0: जी,
1: खेती किसानी कार्यक्रम है, और मतलब सुबह से शाम तक जो भी है सुनते रहते हैं सर।
0: यानी कि आप हमारे आकाशवाणी के नियमित श्रोता हैं।
1: जी,
0: और हमारे क्या हमारे कार्यक्रम अच्छा लगता है?
1: आपके कार्यक्रमों में सर अच्छा ये लगता है क्योंकि यहाँ से अच्छी अच्छी जानकारी दी जाती है,
0: जी जी
1: और जो भी जानकारी दी जाती है सटीक जानकारी होती है।
0: जी जी जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं ये बताइए।
1: पायल फिल्म का गाना है, मेरे महबूब मेरी जाने जिगर।
0: चलिए, आपका गाना सुनते हैं और सभी श्रोताओं के साथ इस गीत का आनंद लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए आपका।

0: कार्यक्रम चल रहा है, तुम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और हमारा फ़ोन नंबर है 2238845। जी हाँ, आपने सही सुना, 2238845। हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपने पसंदीदा गीत सुनिए और हमसे बातें कीजिए। देखिए, अब सुनते हैं अगले कॉलर कौन है। हेलो।
1: हाँ सर, हाँ
0: कौन
1: जी।
0: कौन बोल रहा है?
1: मेरा नाम कुलदीप सिंह यादव है।
0: कहाँ से बोल रहे हैं
1: और
0: यादव जी?
1: मैं करौंदा देवाचाट रोड से,
0: जी
1: करौंदा गांव से बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, कैसा
1: आकाशवाणी को फोन लगा है मेरा।
0: जी जी जी जी आप ये
1: हाँ,
0: आप
1: तो
0: ये बताइए कि आप करते क्या हैं?
1: सर हमारे पास ऑनलाइन वाला वर्क है,
0: अच्छा, यानी कि आप जनसेवा
1: मतलब
0: केंद्र वगैरह चलाते हैं कुछ?
1: हाँ जनसेवा केंद्र वगैरह चलाते हैं, जो
0: कैसे?
1: लेटेस्ट में सेवाएं पब्लिक को है वो दी जाती हैं अपने यहाँ से।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ
0: इस समय मौसम कैसा है आपके यहाँ का?
1: सर, हमारे यहाँ तो मतलब कि वो है, टेम्परेचर बहुत है, मतलब कि घाम धूप ज्यादा ज्यादा निकली हुई है।
0: ओहो, यानी कि आज
1: और
0: मौसम में गर्मी
1: हाँ
0: ज़्यादा है।
1: बहुत उमस, हाँ गर्मी ज्यादा है सर,
0: चलिए
1: हवाएं नहीं
0: ठीक
1: चल
0: है,
1: रही हैं।
0: तो आज कौन सा गीत सुनवाएं हम आपको?
1: सर सुना दीजिए हिना पिक्चर का गाना,
0: जी, हिना पिक्चर का गीत, कौन सा गीत सुनेंगे हिना
1: हाँ
0: पिक्चर का?
1: खुश रंग हिना वाला सर
0: अरे वाह,
1: मुझे
0: बहुत
1: गाना
0: अच्छा
1: है।
0: गीत सुना है। चलिए चलिए, मैं
1: हाँ
0: आपको ये गीत सुनवाता हूँ, आप इसको सुनिए और
1: जी
0: आनंद
1: जी
0: लीजिए।

0: चलिए अब देखते हैं कौन हमसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। हेलो,
1: हेलो शुक्ला जी, राधे राधे।
0: राधे राधे, कौन बोल रहे हैं?
1: शुक्ला जी, मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ, छतरपुर जिले के मनकारी गांव से।
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, क्या हाल चाल है?
1: बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी।
0: क्या?
1: कलम शर्मा जी,
0: जी जी कोई बात नहीं, क्या करते हैं आप?
1: मैं व्यवसाय करता हूँ, दुकानदारी करता हूँ।
0: जी, तो कौन सा गीत आज आप सुनेंगे?
1: जी शर्मा जी, कुली फिल्म का नाम है कुली, और गीत की बोलेंगे, दोनों जवानी की मस्ती में चूर, तेरा कसूर न मेरा कसूर। और कुछ हमारे मित्र हैं, प्रेमलाल बाबा जी हैं, बेटा सिंह यादव जी हैं, जितेंद्र पाल जी हैं, मणिराम पाल जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, जीत और दिनकर सिंह जी हैं, और देवी शंकर शुक्ला जी हैं, विजय कुमार पांडे जी हैं, और राहुल कुमार जी हैं।
0: जी
1: सभी श्रोताओं को डेडिकेट रहेगा, सभी जो है पूनम जी है कानपुर से।
0: ठीक है, तो चल सुनते हैं आपका ये गीत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी हाँ, कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर विकास चंद्र शर्मा। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हमारा फ़ोन नंबर चेंज है, और इस बदले हुए फ़ोन नंबर का नंबर हम आपको बता चुके हैं, फिर भी एक बार बता दें, 2238845 यानी कि 2238845। आप इस फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके हमें अपनी पसंद का गीत सुनने का अनुरोध कर सकते हैं और हमसे बातें कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन श्रोता हमसे जुड़े हैं। हेलो,
1: नमस्ते सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहा है?
1: जिला और ग्राम पुराने चल्ला से गगनदीप कमल बोल रहे सर।
0: जी कमल साहब, आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। क्या हाल चाल है?
1: अच्छे हैं सर, आप कैसे हो?
0: मैं तो बहुत अच्छा हूँ इस समय। और आप ये बताइए, गर्मी कैसी पड़ रही है?
1: गर्मी खूब पड़ रही है सर।
0: खूब पड़ रही है।
1: आज तो हवा चल रही है सर।
0: अच्छा, आपकी तरफ हवा चल रही है और यहाँ पर हवा नहीं चल रही है अभी। खैर कोई बात नहीं, ये तो मौसम है कहीं।
1: बहुत बढ़िया कर रहे सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कमल जी करते क्या है?
1: खेती किसानी करते हैं।
0: अरे वाह, तो इस समय तो खेत में कुछ लगाया है आपने?
1: अभी नहीं, सब जून के बाद पड़ेगी।
0: अच्छा, यानी कि आप धान की खेती करेंगे तब?
1: हाँ।
0: चलिए अच्छी बात है। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: चलो सन्यासी मंदिर, सन्यासी फिल्म का।
0: बहुत अच्छा गाना चुना आपने, तो चलिए मिल करके सुनते हैं आपका गीत।
1: पापा सुनाना चाहते हैं रामशंकर कमल को।
0: जी सुनाइए।
1: कुशवा जी है उन लोग को।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम में इसी तरह फ़ोन करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, और लीजिए आपका पसंदीदा गीत आपके रेडियो पर पहुंच रहा है, सुनिए इसको और आनंद लीजिए। धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। नमस्कार।

कार्यक्रम चल रहा है, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और आप हमारा फ़ोन नंबर जो इस समय बदला हुआ है उसका नंबर है 2238485 2238845।

0: हम जाएं मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, धर्म छोड़कर ध्यान छोड़कर पाप नहीं अपना आएंगे।
1: अरे चल सन्यासी।
2: कार्यक्रम में अब देखते हैं कौन श्रोता हमसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। हेलो हेलो।
3: नमस्कार सर।
2: नमस्कार, कौन बोल रहा है?
3: नमस्कार सर।
2: नमस्कार, कौन बोल रहा है? हेलो
3: हेलो सर।
2: हाँ बताएं।
3: हाँ, अंजनी कुमार पलिया मसूदपुर बाराबंकी से।
2: जी स्वागत है अंजनी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं अंजनी जी?
3: सर खेती बाड़ी यही है अपनी
2: जी,
3: और इस वक्त मौसम तो
2: बहुत ही गर्म है,
3: हीट हो रहा है
2: जी,
3: तो इसलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जरूरत पड़ने पर ही लोग घर से बाहर निकलें और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें, जैसे छाछ है, दही है, इस तरह की, और बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत कम मात्रा में लें,
2: अवॉइड करें उसे। जी जी तो
3: और
2: जी
3: एक गाना हो सर
2: जी,
3: ये सलामत रहे दोस्ताना हमारा
2: जी जी।
3: हम अपने सभी दोस्त लोगों के नाम लेना चाहूंगा
2: जी, बोलिए।
3: हमारे कुरौली ग्राम कुरौली से पीयूष जी हैं
2: जी,
3: बलवंत जी हैं, आदर्श जी हैं, और हमारे जितने भी अर्जुन जी हैं, रामदुलारी पटेल जी हैं।

0: और हमारे राजन यादव जी हैं, रामेशन जी हैं, सभी लोगों के लिए ये गाना मैं
1: सुनवाना चाहते हैं। तो चलिए आपका गीत सुनते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का, ठीक है? इसी तरह हमें कॉल करते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें और हमारा फ़ोन नंबर है 2238845। चलिए देखते हैं अब कौन हमसे जुड़ रहा है। हेलो
1: जी सर, नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन बोल रहा है?
1: जी बिल्कुल सर, मैं ग्राम परसेठा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, यमुना बेल्ट के किनारे से आपका दोस्त मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ सर।
0: भाई वाह, मित्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। यमुना के तीर से आपने हमें फ़ोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करते हैं आप?
1: जी सर, वैसे तो फिलहाल खेती किसानी का काम है और जो भी है एक

0: दुकान खोलना चाह रहा हूँ, तो वही की तैयारी कर रहा हूँ, रेडी कर रहा हूँ, जो कमरा तैयार हो चुका है और बस 10-15 दिन के अंदर जो भी है किराने की दुकान खोलने वाला हूँ।
1: तो ये जो किराने की दुकान आप खोलने जा रहे हैं, इस बीच हमारे कार्यक्रमों को आप मिस तो नहीं करते हैं?
0: जी सर,
1: जो कार्यक्रम हमारे जा रहे हैं आपके पास तक, इनको आप सुनते हैं या नहीं सुनते हैं?
0: अरे बिल्कुल सर, जो भी है रेडियो एक ऐसा साधन है जो किधर भी रख दे अपना काम भी जारी रहता है, और सुनने के एक दिन मिस नहीं होता सर कि कार्यक्रम न सुना जाए।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात
0: है। कभी बाई चांस सर छूट भी जाता है
1: जी,
0: तो क्या है कि हमारे घर परिवार के जितने भी हैं, हमारे पिताजी भी हैं, माता जी हैं, भाई भी हैं, सभी लोग कार्यक्रम सुनते हैं आपका।
1: चलिए, कौन सा गीत सुनेंगे बताइए आप?
0: जी सर, फिल्म बनाने CID और गीत की बोल रहे हैं लेके पहला पहला प्यार।
1: जी जी,
0: और कुछ मेरे मित्र हैं जैसे कि हमारे फूलचंद मनकारी थे और माघीलाल चंदेल जी हो गए।
1: तो चलिए आपका गीत सुनते हैं।

0: चलिए अब देखते हैं कि कौन से कॉलर हमसे जुड़ने का प्रयास करते हैं, हम उनसे बात करते हैं और ये हमारे कार्यक्रम के सबसे खुशनसीब और अंतिम कॉलर हैं। हेलो, कौन बोल रहा है?
1: अमरनाथ यादव बोल रहा हूँ।
0: यादव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या हालचाल है?
1: बहुत अच्छा है सर, आपका कार्यक्रम सुनकर हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, पूरे पुलिस परिवार को।
0: अरे वाह, यानी कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं?
1: जी।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो यादव जी, आप हमारे एक कार्यक्रम होता है जवानों के लिए, उसको भी तो आप सुनते होंगे?
1: हाँ हाँ सुनते हैं सर।
0: अरे वाह,
1: भी सुनते हैं,
0: बहुत अच्छी बात है।
1: 1 बजे आता है सर कार्यक्रम आपका जो?
0: वो 1:50 पर आता है।
1: हाँ, 1:50।
0: 1:50 पर जवानों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं हम लोग। हाँ, तो ये बताइए क्या हालचाल चल रहे हैं, मौसम कैसा है आज?
1: बढ़िया है सर, थोड़ी सी गर्मी है।
0: जी, तो बाकी परिवार में सब कौन कौन लोग हैं?
1: परिवार में 2 बच्चे हैं, पत्नी जी हैं, माता पिता जी हैं, 2 भाई हैं।
0: भाई वाह, क्या बात है।
1: और बाकी अपना पुलिस परिवार है ही है।
0: तो एक बात ये बताइए कि आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: सर बहुत पुराना गाना है
0: जी,
1: चांदी जैसा रंग है तेरा,
0: सोने जैसे बाल, पंकज उदास जी की आवाज़ में।
1: जी।
0: तो चलिए फिर आपका ये गीत मिल करके सुनते हैं और आनंद लेते हैं। आपने कॉल किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बाकी सब गंगा।

0: जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल।
1: और इस गीत के साथ ही आज का कुछ तुम कहो कुछ हम कहें कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। अपने दोस्त डॉक्टर विकास चंद्र शर्मा को नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल मंच।

0: जैन दीदी, सभी को हमारा भी जैन।
1: आ जाइए अपने रेडियो सेट के और पास,
2: या बढ़ा लीजिए वॉल्यूम,
3: क्योंकि रेडियो तरंगों पर सवार होकर आपके पास आ चुके हैं मैं नितिन गुप्ता,
2: मैं दर्श दीक्षित
1: और मैं आपकी राजलक्ष्मी दीदी। स्वागत है आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम बाल मंच में।
3: दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ।
1: अच्छी बात है नितिज्ञ, सभी को हमेशा खुश रहना चाहिए। वैसे बताइए, किस बात की खुशी है आपको?
2: दीदी, हम लोगों की गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं, इसलिए।
1: मतलब अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, ना टीचर की डांट, ना मम्मी का पढ़ो पढ़ो, इससे छुट्टी मिल गई है ना?
3: जी दीदी, ना सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ना दिन भर पढ़ना पड़ेगा।
1: अच्छा, लेकिन दर्श और नितिज्ञ, जीवन में ये चीजें भी तो जरूरी है। अभी आपको और तो कोई काम करना है नहीं पढ़ाई के अलावा, तो फिर इससे भागना क्यों?
2: दीदी, भाग नहीं रहे हैं, बस कुछ दिन अपने मन की करने की खुशी है हमें।
3: बिल्कुल दर्श, रोज वही बोरिंग शेड्यूल, अब कुछ अलग करने को मिलेगा।
1: तो क्या अलग करने का सोचा है आप दोनों ने?
2: दीदी, मैं तो अपनी सिंगिंग को और परफेक्ट करने की कोशिश करूँगा।
3: मैंने तो शुरू भी कर दिया है, शाम को गुरुजी मुझे म्यूजिक सिखाने के लिए आते हैं।
1: अरे वाह, तो आप दोनों ही अच्छी अच्छी बंदिशें, राग और गीत तैयार करना, अगले किसी कार्यक्रम में सुनाइएगा।
2: जी बिल्कुल दीदी।
1: मगर बच्चों, गर्मियों में केवल हॉबीज ही ना पूरी करते रहना, पढ़ाई पर भी ध्यान देना।
3: वो तो देना ही पड़ेगा दीदी, पता है हम लोगों को हर सब्जेक्ट में ढेर सारा होमवर्क मिलता है, तो उसे तो करना ही पड़ेगा।
1: वही तो मैं भी कह रही हूँ, जहाँ आप 8 घंटे पढ़ रहे थे, अब 4 घंटे तो जरूर पढ़ना, होमवर्क डेट वाइज करना। हमने देखा है कुछ बच्चे 15 दिन का काम 3-4 दिन में खत्म कर लेते हैं, फिर किताब कॉपी उठाकर भी नहीं देखते, पूरा समय खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इससे उनका ही नुकसान होता है। बताओ क्या होता है?
2: दीदी, हमने क्या किया, क्या पढ़ा, सब भूल जाएंगे। हम आपकी बातें समझ गए हैं, हम लोग टाइम टेबल बनाकर पढ़ेंगे, जिससे सब कुछ आसानी से और अच्छे से हो जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा दर्श, कोई भी काम अगर योजना बनाकर किया जाए तो वो ठीक से हो ही जाता है।
3: मतलब हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, तब छुट्टियों को एंजॉय करना है, एंजॉय विद स्टडी।
2: यस, हर चीज का अपना

0: महत्व होता है, इसलिए सभी काम समय से और सही ढंग से होना चाहिए।
1: आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो, हमारी बात समझ में तो आई। ऐसे ही हर काम करते हुए आप मंजिल तक पहुंचो और फिर मुस्कुराते हुए खिलखिलाते फिरो।
2: कांचा गोली गिल्ली डंडा टापू और पकड़म पकड़ाई। कांचा गोली गिल्ली डंडा टापू और पकड़म पकड़ाई। बचपन के वो सारे खेल अभी से हमने छोड़े भाई।

0: भी पूछे हमारी भी विश,
1: कह दोगे उसको दिला दे वो देश।
2: टिश टिश टिश टिश।
0: अरे बुद्धू, ये देश नहीं वो देश।
1: अकड़ बकड़ बा मेरे को, सीना में पूरे सौ सौ सा निकला था, जो निकल के भाग।

0: क्या बात है दीदी, बहुत ही प्यारा गीत सुनवाया आपने।
1: हाँ, सुनकर मजा ही आ गया।
2: आप कुछ काम की बातें हो जाए।
0: क्या दीदी, हम काम ही की तो बातें कर रहे थे।
2: हाँ, कर तो रहे थे, लेकिन अब हम आप लोगों से पूछने जा रहे हैं एक प्रश्न, उसका जवाब देना है।
1: ओके दीदी, हम तैयार हैं।
2: तो बताइए, आज कौन सा दिन है?
0: इतना आसान प्रश्न, आज तो संडे है ना दीदी।
2: हाँ, संडे तो है, लेकिन आज हम एक विशेष दिवस मना रहे हैं, वो दिवस कौन सा है?
1: दिवस वो तो नहीं पता दीदी।
0: दीदी आप ही बता दीजिए।
2: आज हम मना रहे हैं विश्व दूर संचार और सूचना सामाजिक दिवस।
1: दीदी इसे क्यों मनाते हैं?
0: दीदी दूर संचार क्या होता है?
2: अरे अरे बस करो, इतने सारे सवाल, हमने तो केवल एक प्रश्न पूछा था। और आप लोग?
0: दीदी हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे हैं।
2: इसके लिए आप दोनों को अभिलाष उमर भैया से बात करनी पड़ेगी। भैया BSNL में SDE के पद पर काम कर रहे हैं, तो इन्हीं से पूछ लो। दूर संचार जोड़े दिल से दिल के तार।
0: बाल मंच कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकल।
3: धन्यवाद।

0: बेटा
1: अंकल, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि दूर संचार है क्या।
0: दूर संचार बेटा हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हम दो व्यक्ति जो एक दूसरे से परस्पर बहुत दूरी पे हैं, उनके बीच में हम एक कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। दूरसंचार में आपका टेलीग्राम भी आ जाता है, चिट्ठी तार भी आ जाती है, हम दो श्रोता अपने में एक दूसरे को कॉल करके बातें कर सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन भी कनेक्ट हो सकते हैं, ये सारा कुछ दूरसंचार में ही आता है।
2: दूरसंचार दिवस क्यों मनाया जाता है?
0: दूरसंचार दिवस हमें ये याद दिलाता है कि संचार तकनीक ने हमारे जीवन को कितना आसान बनाया है। फ़ोन, इंटरनेट, मोबाइल और वीडियो कॉल जैसी सुविधाओं ने लोगों को दुनिया के किसी भी कोने से जोड़ दिया है।
1: सर, पहले के समय में लोग एक दूसरे से कैसे संपर्क करते थे?
0: पहले के समय में लोग एक दूसरे को चिट्ठियों के द्वारा, तार के द्वारा या लैंडलाइन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते थे। संदेश पहुंचाने में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन आज मोबाइल और इंटरनेट की वजह से हम कुछ सेकंड में ही एक दूसरे से बातें कर सकते हैं।
2: आजकल बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई भी करते हैं, इसमें दूरसंचार का क्या भूमिका है?
0: इसमें बड़ी भूमिका है। इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की मदद से बच्चे घर बैठे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और नई चीजें सीख सकते हैं। यह शिक्षा को आसान और सुलभ बनाता है।
1: सर, 5G तकनीकी के बारे में बहुत सुनने को मिलता है, ये क्या है?
0: 5G मोबाइल नेटवर्क की नई तकनीकी है। इसमें इंटरनेट बहुत तेज चलता है और वीडियो बिना रुके चलते हैं और ऑनलाइन काम बहुत तेजी से होते हैं।
2: क्या दूरसंचार केवल शहरों तक सीमित है अंकल?
0: नहीं, सरकार का प्रयास है कि गांव-गांव तक मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट पहुंचे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।
1: बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: बच्चों को इंटरनेट का उपयोग समझदारी से करना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति से अपनी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए और पढ़ाई और अच्छे कार्यों के लिए तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए।
2: अगर हम आम आदमी की जिंदगी की बात करें तो दूर संचार ने क्या बदलाव लाए हैं?
0: आज गांव हो या शहर, मोबाइल और इंटरनेट ने लोगों को जोड़ दिया है। दूरसंचार ने समय और दूरी दोनों को कम किया है। ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल भुगतान, वीडियो कॉल, टेलीमेडिसिन और सरकारी योजनाओं की जानकारी हमें घर बैठे ही मिल रही है।
1: भविष्य में दूरसंचार क्षेत्र में और क्या बदलाव देखने को मिल सकता है?
0: आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, इंटरनेट ऑन थिंग, IoT और स्मार्ट सिटी जैसी तकनीक का विस्तार हो रहा है। घर, वाहन और मशीन इंटरनेट से जुड़ रही हैं और काम अधिक तेज और आसान हो रहे हैं।
2: आपदा या इमरजेंसी के समय दूर संचार कितना महत्वपूर्ण होता है?
0: आपदा के समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या किसी भी संकट के समय संचार सेवाएं राहत और बचाव के कार्यों में मदद करती हैं। लोगों को सही जानकारी पहुंचाना और प्रशासन को जोड़ना दूरसंचार का बड़ा योगदान है।
1: डिजिटल इंडिया अभियान में दूरसंचार की क्या भूमिका है?
0: डिजिटल इंडिया की रीढ़ ही दूरसंचार है। इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी के बिना डिजिटल सेवाएं संभव नहीं है। आज सरकारी योजनाएं, ऑनलाइन सेवाएं और डिजिटल भुगतान सब दूरसंचार नेटवर्क पर आधारित है।
2: डिजिटल दुनिया में साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं, लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: सबसे जरूरी है सतर्क रहना। किसी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, बैंक डिटेल या पासवर्ड साझा ना करें। फर्जी कॉल और लिंक से बचें। केवल विश्वसनीय ऐप और वेबसाइट का ही उपयोग करें।
2: आज सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बढ़ गया है, क्या यह दूरसंचार का ही विस्तार है?
0: बिल्कुल, सोशल मीडिया भी दूरसंचार तकनीक पर आधारित है। यह सूचना और संवाद का तेज माध्यम है, लेकिन इसका जिम्मेदारी से उपयोग करना बहुत जरूरी है।
1: क्या दूरसंचार पर्यावरण संरक्षण में भी मदद करता है?
0: जी हाँ, ऑनलाइन मीटिंग, डिजिटल दस्तावेज और ई सेवाओं से कागज और यात्रा की जरूरत कम हो गई है, जिससे पर्यावरण को लाभ मिलता है।
2: दूरसंचार क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को आप कैसे देखते हैं?
0: भारत आज दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क वाले देशों में शामिल है। कम लागत में बेहतर इंटरनेट उपलब्ध कराना हमारी बड़ी उपलब्धि है।
1: रेडियो और दूर संचार का रिश्ता कितना पुराना और खास है?
0: रेडियो संचार का सबसे भरोसेमंद माध्यम रहा है। आज भी जागरूकता, शिक्षा और मनोरंजन में इसकी अहम भूमिका है।
2: सर, क्या आप बच्चों के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं?
0: जरूर, तकनीक का सही उपयोग करें, नई चीजें सीखें और डिजिटल इंडिया के जिम्मेदार नागरिक बनें।
2: अभिलाष उमर अंकल से मिलकर और बातें कर बहुत अच्छा लगा।
1: हाँ नितिज्ञ, अंकल ने इतनी सारी नई नई बातें हमें बताई।
3: नई नई बातें बताना, नई नई जानकारियाँ देना, यही तो हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य

0: में एक कड़ी और जुड़ी है, तो आज इस कड़ी में सुनिए आकाशवाणी से बच्चों का कार्यक्रम। बच्चों, नॉलेज बैंक में आज हम बात करेंगे आपके अपने कार्यक्रम की, मतलब आकाशवाणी से बच्चों के लिए कार्यक्रम के प्रसारण की। तो इसकी शुरुआत 1930 के दशक के बीच, मतलब लगभग 1936-37 के आसपास हुई थी। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बच्चों के लिए स्पेशल कार्यक्रम चिल्ड्रन आवर का प्रसारण शुरू हुआ। इसमें कहानियां, नाटक और गीत शामिल होते थे। इसके बाद मुंबई, कलकत्ता केंद्रों से भी बच्चों के कार्यक्रम प्रसारित होना शुरू हुए। अब बात करते हैं आकाशवाणी लखनऊ से बच्चों के कार्यक्रम के प्रसारण की। तब इसका नाम बाल संघ था। जब हम छोटे थे तब इस कार्यक्रम को रज्जन लाल भैया और शकुंतला दीदी पेश करती थीं। भैया को करेले वाले भैया के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा आकाशवाणी लखनऊ से आओ बच्चों, बाल गोपाल, विद्यार्थियों के लिए जैसे कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते थे। बाल संघ का नाम बाद में बदलकर बाल जगत किया गया। आज ये कार्यक्रम बाल मंच के नाम से प्रसारित हो रहा है। इस कार्यक्रम में कहानी, कविताएं, नाटक, विभिन्न विषयों पर वार्ताएं, बच्चों से भेंट वार्ताएं, नन्हे साथियों की बातें आदि का प्रसारण होता है। समसामयिक विषयों पर बच्चे और दीदी बातचीत करते हैं। मनोरंजन के लिए बाल गीत भी सुनवाए जाते हैं। ये कार्यक्रम बच्चों को शिक्षा के अलावा मनोरंजन भी प्रदान करता है। वर्तमान में चौथे रविवार को छोड़कर इसका प्रसारण दोपहर 12 बजे किया जा रहा है। चौथे रविवार को ग्रामीण बच्चों के लिए अवधि भाषा में बाल गोपाल कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इन कार्यक्रमों में बच्चों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुके प्रतिभाशाली बच्चों की भेंट वार्ताएं भी इन कार्यक्रमों में प्रसारित की जाती हैं। तो सुनते रहिए आकाशवाणी और जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: क्या बात है दीदी, आज तो हमने अपने कार्यक्रम में अपने ही कार्यक्रम की बात की।
0: हाँ दर्श, जब बच्चों के कार्यक्रम की बात हो ही रही है तो श्रवण कुमार भैया की आकाशवाणी पर लिखी एक कविता है, अगर आप इसे गाकर बाल साथियों को सुना दो तो और भी मजा आ जाए। तो तैयार हो?
1: जी दीदी, बिल्कुल तैयार हैं।

0: वाह दर्श, आपने तो बहुत ही मधुरता के साथ इस कविता को गाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है हमारे बाल साथियों को भी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। दर्श और नीतिज्ञ, इतनी बातें तो हमने की, लेकिन एक बात अभी रह गई है।
1: कौन सी बात दीदी?
0: आज हम एक और दिवस भी मना रहे हैं, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। ये हाई ब्लड प्रेशर के विषय में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
1: जी दीदी, पता है मेरे एक दोस्त को भी हाइपरटेंशन हो गया था।
0: अरे मगर क्यों?
1: दीदी, उसे मोबाइल पर गेम खेलने की बहुत खराब आदत है, उसी से उसे बहुत टेंशन होने लगी।
0: हाँ, ये समस्या बच्चों में भी बढ़ रही है। इसी विषय पर कुछ टिप्स देने के लिए हमारे साथ हैं।
2: हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर निशांत हूँ। मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। यहाँ बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और बच्चों का इलाज भी करता हूँ। तो आज हम लोग आपसे बात कर रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी विषय के बारे में, वो है हाइपरटेंशन। तो आप सब ने सुना होगा कि बीपी की बीमारी, ये अभी तक कॉमन ये कंसेप्शन है कि ये बीमारी बड़ों को ही होती है, लेकिन अब आज के समय में देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी ज़्यादा बीपी होने की बीमारी हो जाती है। तो इसके बारे में हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर एक लंबे समय तक बढ़ा रहेगा तो हमारे अंगों पर बहुत खराब असर कर सकता है। तो इस विषय में अवेयरनेस फैलाने के लिए 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है, ताकि हम सब जागरूक हो सके और जान सके कि ब्लड प्रेशर की बीमारी एक गंभीर बीमारी है और न केवल बड़ों में बच्चों में भी हो सकती है। तो इस बीमारी से बचाव बहुत आसान है, इनफैक्ट छोटे बच्चों के लिए इससे बचना बहुत ही आसान है। वो कैसे बच सकते हैं? अगर अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले तो ये करना है कि आपके मम्मी पापा जो आपके लिए बोले उसको माने, क्योंकि माता पिता हमेशा बच्चों का अच्छा ध्यान रखना चाहते हैं। आपको जंक फूड से बचना है। बच्चों में ब्लड प्रेशर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है ओबेसिटी, मतलब मोटापा। अगर हम अपने बॉडी को हेल्दी रखेंगे, अगर अपना वजन ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। तो आपको जैसे आपके मम्मी पापा बोलते हैं, जैसे हम डॉक्टर्स बोलते हैं कि जंक फूड कम खाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, आपको स्पोर्ट्स में पार्ट लेना है, आपको स्कूल में गेम्स खेलने हैं, आपको टीवी और मोबाइल का यूज़ बहुत कम रखना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको हेल्प नहीं करेंगी। आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाएगी, आप जो खाएंगे वो डाइजेस्ट होगा और वो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ने देगा। तो आप डाइट अच्छी लें, फिजिकल एक्टिविटी अच्छा रखें और स्क्रीन टाइम अपना कम करें। अगर ये सब सिंपल स्टेप्स आप लोग फॉलो करेंगे तो आपका वेट भी सही रहेगा, आपकी फिजिकल अपीयरेंस भी सही रहेगी, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा। तो ये सिंपल सी एडवाइस आप बच्चों के लिए है। इसके अलावा मैं माता पिताओं से भी बात कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि आजकल चीज़ों की अवेलेबिलिटी इतनी आसान हो गई है, जंक फूड इतनी आसानी से हर जगह मिल जाता है कि ये बच्चों को वो देख के उनको हमेशा इच्छा होती है कि हम वो खाएं। जंक फूड भले ही टेस्ट में अच्छा हो बट वो बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है, वो एक बैलेंस डाइट नहीं है, उसमें फैट कहीं ज़्यादा मात्रा में है, सिंपल शुगर्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि ओबेसिटी करा सकते हैं। और अगर बच्चे ओबीस होंगे तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जो बीमारियाँ अमूमन 50-60 वर्ष की एज में देखने को मिलती हैं वो 15 साल की एज में भी देखने को मिल सकती हैं। तो आप अपने बच्चों को हेल्दी डाइट फॉलो करने के लिए सिखाएं। आप सब खुद जैसा करेंगे आपके बच्चे भी वैसा करेंगे, तो न केवल आपके बच्चे, आप भी एक हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल ना करने दें, क्योंकि अगर बच्चा एक बार मोबाइल का आदित बन जाता है तो वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, खेलेगा नहीं, तो और वो ओबेसिटी को बढ़ाएगी और फिर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसके अलावा

0: जब भी आप अपने बच्चे को चेकअप के लिए जाएं, कोशिश करें कि उसका साल में एक बार ब्लड प्रेशर नाप लिया जाए, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ भी जाता है तो उसके कोई सिम्टम्स यूजुअली नहीं आते हैं, तो वो एक साइलेंट किलर की तरह चलता रहता है। तो जब भी आप किसी भी वजह से हेल्थ चेकअप के लिए जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि साल में एक बार अपना एवं अपने बच्चों का ब्लड प्रेशर जरूर नपवाएं, और अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसके लिए जो उचित इलाज है, कोई लाइफस्टाइल में बदलाव है या दवा है, तो वो बेशक करें, जिससे कि आप और आपके बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। एक बार फिर मेरी ओर से आप सबको वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के विषय में अवेयरनेस फैलाने के लिए मैंने ये जो कार्यक्रम किया है, आप सब भी इस विषय में जानें और सबको बताएं, ताकि हम सब हाइपरटेंशन से बच सकें।
1: दर्श और नीतिज्ञ डॉक्टर भैया ने हमको बहुत अच्छे टिप्स दिए,
2: इसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अब बात सुन लेते हैं अपने श्रोता साथियों की।
3: उनकी बात हम कैसे सुन सकते हैं दीदी?
2: अरे नीतिज्ञ दीदी, उनके ईमेल्स पढ़ने की बात कह रही हैं। देखो ना, उनके हाथ में मोबाइल है जिसमें वो ईमेल्स पढ़ रही हैं।
1: वाह दर्श, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। देखो ये पहला ईमेल किसका है?
2: ये ईमेल है आकाश कुमार वर्मा का, दरियाबाद जिला बाराबंकी से हैं। इन्होंने लिखा है, ये जब 10 साल के थे तब से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। इससे इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले साथियों और नन्हे साथियों की बातें बहुत प्यारी लगती हैं।
1: इन्होंने ये भी लिखा है कि ये दृष्टि बाधित हैं, इसलिए रेडियो का इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आकाश जी ने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने की शुभकामनाएं भी दी। तो आप अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है और आपने इतने विस्तार से पत्र लिखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपने विचारों सुझावों से हमें अवगत कराते रहिएगा। नीतिक, आप किसका ईमेल लेकर तैयार हैं?
3: दीदी ये ईमेल है नमिता, रीना, सुषमा, संजू, महेश, राजन और रत्नेश ने मनकापुर गोंडा से भेजा है।
1: क्या लिखा है इन्होंने?
3: इन्होंने लिखा है कि इन्हें बाल मंच कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, इसमें बहुत ही रोचक ज्ञानवर्धक जानकारियाँ भी दी जाती है। ये सभी कार्यक्रम बहुत ध्यान से सुनते हैं और सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जो बताया जाता है वह बहुत ही लाभदायक होती हैं।
1: आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है, आपने पत्र लिखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्श और नीतिज्ञ नमिता जी ने महत्वपूर्ण दिवसों की बात की, तो आने वाले सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवसों की जानकारी देते चले।
2: जी दीदी बिल्कुल।
1: तो शुरुआत करते हैं कल से, मतलब 18 मई से। इस दिन हम मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, मतलब इंटरनेशनल म्यूजियम डे।
2: ये दिवस क्यों मनाया जाता है दीदी?
1: इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों को इतिहास, संस्कृति और अपनी विरासत के प्रति जागरूक किया जाए।
2: दीदी पिछले साल मैं इस दिन म्यूजियम गया था तो टिकट भी नहीं लगा था मेरा।
1: हाँ दर्श, इस दिन कई म्यूजियम्स में फ्री एंट्री होती है। हम लोगों को अपनी संस्कृति और विरासत को जानने समझने के लिए यहाँ जरूर जाना चाहिए। दर्श और नीतिज्ञ 19 मई को हम वर्ल्ड फेयर प्ले डे के रूप में मनाते हैं।
2: जी दीदी, इसको मनाने के पीछे यही उद्देश्य है कि खेलों में ईमानदारी, सम्मान, समानता और खेल भावना को बढ़ावा दिया जाए।
1: बिल्कुल, खेल में जीत या हार मायने नहीं रखती, खेल को खेल की भावना से खेलना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2024 में की गई थी। पहली बार इसे 19 मई 2025 को मनाया गया था।
3: दीदी अगली जानकारी कौन सी है?
1: नीति की अगली जानकारी हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाएगा।
2: मधुमक्खी दिवस, बाप रे, इनसे तो मुझे बहुत डर लगता है। एक बार मुझे इन्होंने काट लिया था, अरे तो 2 दिन तक बुखार आया था दीदी।
1: अरे रे रे, लेकिन दर्श मधुमक्खियाँ हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हैं। ये फूलों को खिलाने में, नए पौधे उगाने में सहायता करती हैं।
3: दीदी इनसे शहद भी तो मिलता है।
1: हाँ सही कहा नीतिज्ञ, मधुमक्खियों की ही तरह पर्यावरण में पाई जाने वाली तमाम वनस्पतियाँ, जीव जंतु भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। इनको बचाना, इन्हें सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है।
2: मतलब सभी इस बात के महत्व को समझें और इसके प्रति जागरूक रहें।
1: बिल्कुल दर्श, इसीलिए इस बार इस दिवस की थीम है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना, मतलब जैव विविधता संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर काम करना, जैव विविधता को नुकसान न पहुंचाना और उसके संरक्षण के लिए प्रयास करना, यही इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है।
3: क्या बात है दीदी, बहुत ही मजेदार जानकारियां दी आपने।
2: सच कहा नीतिज्ञ,

0: आज के कार्यक्रम में हमने बहुत सारे दिवसों के बारे में जाना, दूर संचार कैसे दिल से दिल के तार जोड़ता है ये भी पता चला।
1: बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम वाइंड अप कीजिए।
2: बिल्कुल, समय पर समय की बात होनी भी चाहिए। तो हमारे बाल साथियों को आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ईमेल कीजिएगा।
0: हमारा ईमेल एड्रेस है bmbg.airlko@gmail.com।
2: अब तो विदा लेने की बारी आ गई। अगले बाल मंच कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति
0: नितिन गुप्ता को,
1: दर्श दीक्षित को
2: और राजलक्ष्मी दीदी को।
3: जय हिंद।

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल मंच। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म दो रास्ते का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। और अब लीजिए सुनिए फिल्म आन मिलो सजना का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और स्वर लता मंगेशकर के।

रोटी, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब आप सुनेंगे, स्वर किशोर कुमार और लता मंगेशकर के, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

और अब लीजिए सुनिए फिल्म मेरा गांव मेरा देश का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

और अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर का गाया फिल्म हीर रांझा का ये गीत, जिसे लिखा है कैफी आज़मी ने, संगीत मदन मोहन का है।

और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम के अंत में किशोर कुमार का गाया फिल्म अनोखी अदा का ये गीत, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 1 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोप

0: यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म संघर्ष का ये गीत, शब्द रचना शकील बदायूं की और संगीत नौशाद का है। इसे सुनने का अनुरोध किया है आप सबने, हेड कांस्टेबल लक्ष्मण प्रसाद, हेड कांस्टेबल विनेश यादव, हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह, शिवम, देवांश, माही, ये सुनना चाहते हैं CISF दिल्ली से, राम प्रकाश गुप्ता टप्पा, राहुल, ललित, सोनू, आशा पुलिस लाइन बुलंदशहर से, पलिया मसूदपुर बाराबंकी से, अंजनी कुमार पुलिस लाइन बाराबंकी से, चंद्रमणि पांडे, वंदना पाल जहांगीराबाद से, अमरेश सिंह फतेहपुर बाराबंकी से, सुनील सिंह और धीरेंद्र सिंह। तो दीजिए सुनिए आपके अनुरोध पर फिल्म संघर्ष का ये गीत।

और इसी गीत के साथ आज का जवानों के लिए कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त डॉक्टर विकास चंद्र शर्मा को। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जवानों के लिए, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 2:15 होने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का

0: ने बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
2: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूँ, जहाँ लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
1: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
3: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत के स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे।

0: आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80 रुपए 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपए 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपए 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूर

0: समाचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए गर्मी में पशुओं की आहार व्यवस्था और प्रबंधन। इस विषय पर डॉक्टर दिवाकर वर्मा से भेंट वार्ता। आपसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों। खेती के साथ साथ जहाँ पशुपालन आप कर रहे हैं वहाँ गर्मी में पशुओं की आहार व्यवस्था क्या रखें और उनका प्रबंधन कैसे करें ताकि जो भी पशु हैं वो स्वस्थ रहें, उत्पादक बने रहें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र फर्स्ट सुल्तानपुर से वैज्ञानिक पशु विज्ञान डॉक्टर दिवाकर वर्मा साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि गर्मी का मौसम है, मौसम का उतार चढ़ाव भी है, ऐसे में पशुओं की आहार

0: था क्या हो?
1: सभी पशुपालक भाइयों बहनों, मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि पशुपालन में आहार व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसमें एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। मौसम में बदलाव हो रहा है और सबसे ज़्यादा पशुओं के लिए आहार व्यवस्था पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तापमान बढ़ता है तो
0: जी
1: उस समय जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु होते हैं उनका दूध उत्पादन बहुत तेज़ी से नीचे आता है। 10% से 30% तक दूध उत्पादन घट जाता है और उनमें बीमारियों के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर पशुओं में देखने को मिलता है, कई समस्याएं ऐसी आती हैं जिससे आपको हमारे पशुपालक भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। और एक चीज़ और ध्यान में देना है कि जब हम आहार व्यवस्था की बात करते हैं
0: जी
1: तो उसमें जो होता है, हमको अपने पशुओं में थोड़ा सा दाने में बदलाव करना होता है देने के समय पे।
0: जैसे
1: जैसे कि हम लोग जब शाम के समय में पशु को 6 बजे या उसके बाद में दाना दें और सुबह में 6 बजे तक आप उसको दाना दे दें, क्योंकि जब पशु दाना खाता है, दाना खाने के बाद में 4 घंटे के बाद में उसके अंदर जो होता है उपापचय हीट पैदा होता है। तो
0: जी
1: अगर हम शाम को 6 बजे देते हैं तो शाम रात में 10 बजे हीट पैदा होता है, उस समय वातावरण का तापमान कम होता है जिससे कि हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। और जब सुबह में देते हैं 6 बजे, तब भी 10 बजे तक हीट उतना ज़्यादा वातावरण का नहीं होता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है।
0: यानी दिन में दाना बिल्कुल न दें पशुओं
1: दिन
0: को।
1: में कोशिश करें केवल पशु को हरा चारा दे दें, दाना देने से बचें, क्योंकि उस समय उनके अंदर जो गर्मी पैदा होगी वो पशु को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी, उसके उत्पादन को प्रभावित करेगी।
0: डॉक्टर साहब, ये तो रही दाने की बात, हरा चारा और सूखे चारे का अनुपात क्या हो इस मौसम में?
1: इस समय गर्मी का मौसम है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पशु को आपको हरा चारा आप दें, क्योंकि उससे पशु के अंदर की जो पानी की पूर्ति है वो भी हो जाती है और उससे जो होता है विटामिन ए भी मिलता है जो कि पशु के दूध उत्पादन के लिए भी ज़रूरी होता है, गर्मी के तनाव को भी कम करता है। और सूखा चारा, खास करके भूसा, भूसा को जो होता है, जो हमारे किसान भाई होते हैं उनको बोला जाता है 6 से 7 किलो आप दें, लेकिन गर्मी के मौसम में उसको घटा करके 4 से 5 केजी कर देना चाहिए, क्योंकि भूसा जो होता है या सूखा चारा जितनी मात्रा में देंगे वो उसके जो हमारे पशु होते हैं उनके सबसे बड़ा भाग एक होता है रूमेन, वहाँ पे जा करके उपापचय हीट पैदा करता है,
0: जी
1: जिससे जो होता है उसके अंदर एसिडोसिस की कंडीशन आ जाती है और वही चल करके उनकी समस्या कर रही है। तो सूखा चारा घटा देना चाहिए, हरा चारा जो होता है पशु को आप बढ़ा के दें और खास करके दाना दें, क्योंकि पशु को हीट तभी हो रहा है जब पशु के जो होता है हम लोग ऊर्जा की कमी होती है, ऊर्जा की पूर्ति के लिए पशुओं को दाना जरूर से जरूर दिया करें।
0: डॉक्टर साहब, लेकिन कई बार हरा चारा अगर अधिक होता है तो पशुपालक भाई बहन केवल हरा चारा ही देते हैं, ये क्या उचित है?
1: नहीं डॉक्टर साहब, ये उचित नहीं है, क्योंकि हमारे जो भी पशुपालक भाई होते हैं, हरा चारा बोला जाता है कि आप 60% तक दो, लेकिन आपको 40% आपको दाने की तरफ भी जाना होगा, क्योंकि अगर आप दाना नहीं देंगे तो दूध उत्पादन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हरा चारा से आपको प्रोटीन, एनर्जी, फाइबर ये सब चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। जब हम दाना देते हैं, जैसे कि इस समय गर्मी का मौसम है, तो सबसे बढ़िया होता है कि दाने में जौ, क्योंकि वो ठंडा होता है, उससे जो होता है उसको ऊर्जा मिलती है और दूध उत्पादन बना रहता है। तो ऊर्जा के रूप में आप जौ दे सकते हैं और प्रोटीन के रूप में आपको जो होता है खली, जैसे सरसों की खली हुआ, कपास की खली हुआ, इसको दे सकते हैं और
0: या अलसी की खली?
1: अलसी की खली दे सकते हैं, और फाइबर जो कि उसके पेट में जा करके काफ़ी उसको जो होता है फाइबर देते हैं जिससे पाचन में आसानी होती है,
0: यानी
1: उसके
0: रेशा?
1: रेशा के रूप में उसमें हम लोग जो होता है चोकर दे रहे हैं। तो दाना देना पशुओं के जरूरी है, क्योंकि उसके बिना दूध उत्पादन नहीं अच्छा होगा, इसलिए 60% हरा चारा, 40% दाना जरूर से जरूर दें।
0: और सूखा चारा का अनुपात?
1: सूखे चारे को जो होता है हमको, जैसे कि आपके भूसा हुआ, उसको आप एक पशु को 7 से 8 किलो दिया करें,
0: मैक्सिमम।
1: मैक्सिमम दें।
0: डॉक्टर साहब, साफ पानी देना भी जरूरी है इस समय?
1: पानी का असर बहुत बड़ा रोल होता है, गर्मी का मौसम है, अगर हमको 3 चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। पहला होता है कि हमको आहार का प्रबंधन, उसके बाद दूसरा होता है आवास का प्रबंधन और पानी का, क्योंकि पानी अगर हम लोग जो होता है दिन में उसको 24 घंटे स्वच्छ, ताज़ा और ठंडा पानी पशुओं को देना चाहिए। और दूसरी बात होती है पशु को नहलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि जैसे उसका तापमान बढ़ता है तो पशुओं को जो होता है हीट की समस्या आती है,

0: इसीलिए उसको नहलाना भी जरूरी होता है। और एक दुधारी पशु को 1 लीटर दूध उत्पादन के लिए 3 से 5 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए गाय को 70 से 80 लीटर पानी की जरूरत प्रतिदिन है,
1: और
0: और
1: वो भी
0: भैंस
1: ताजा,
0: ताजा ताजा पानी,
1: और
0: और
1: भैंस
0: एक
1: को?
0: भैंस को 80 से 100 लीटर पानी की जरूरत होती है प्रतिदिन ताजा पानी। एक चीज इसमें ध्यान देते हैं हमारे किसान भाई, गर्मी के मौसम में पानी जरूर देते हैं लेकिन उसके साथ में चूना नहीं मिलाते हैं, तो कोशिश करें कि 10 लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम चूना जरूर मिला के दें। उससे पानी ठंडा भी बना रहेगा और उसके साथ में जितने कीटाणु नाशक होते हैं वो सब चीज़ें उसकी प्रॉपर्टी होती है, कीटाणु भी फ्री हो जाएगा और साथ में कैल्शियम मिलेगा, क्योंकि जब कैल्शियम हमारे पशु को नहीं मिलता है तो वहाँ चल करके दुग्ध ज्वर जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसीलिए चूने का पानी अपने पशु को दें और कोशिश करें 24 घंटे उसको पानी ताज़ा बदल करके ठंडा पानी पिलाएं।
1: डॉक्टर साहब, गर्मी के मौसम में क्या खनिज मिश्रण भी अलग से देना और नमक का प्रयोग फायदेमंद होगा?
0: जी डॉक्टर साहब, देखिए इस समय गर्मी के मौसम में हम जानते हैं कि पसीना होता है, पसीना होने के साथ में शरीर से पोटेशियम आयन निकल जाता है और जब वो पेशाब करता है तो वहाँ से सोडियम आयन निकलता है, तो इसीलिए जो खनिज मिश्रण का चयन करें उसमें सोडियम पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा हो, जिससे जो होता है उसके शरीर में उसकी पूर्ति कर सके। नमक का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि हमारा पशु जब हीट के तनाव में आता है तो उससे जो होता है लार गिरता है, लार गिरता है तो उसके जो होता है लार से बाइकार्बोनेट आयन निकल जाता है, जिससे पशु के शरीर में जो पीएच होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, इसी वजह से एसिडोसिस की समस्या देखने को
1: और
0: मिलती
1: कभी
0: है,
1: कभी अफरा भी?
0: अफरा भी यह हो जाता है। इसीलिए उस कंडीशन में नमक देना चाहिए, 30 ग्राम साधारण नमक दें और 40 ग्राम सेंधा नमक दें, क्योंकि सेंधा नमक पोटेशियम की पूर्ति करेगा, साधारण नमक सोडियम की पूर्ति
1: तो
0: करेगा।
1: क्या उसका ढोका रख दें
0: उसका
1: नाक के
0: अगर
1: पास?
0: उसका जो होता है ढोका रख देते हैं अगर सेंधा नमक का, तो उससे पशु चाटता रहता है तो उसकी जो होता है जरूरतें पूर्ति होती
1: और
0: रहती
1: पाचन
0: है,
1: भी अच्छा होगा?
0: उससे उसका पाचन भी अच्छा होता है और गर्मी के जो तनाव है वो भी कम होगा, उसको पोटेशियम भी मिलता रहेगा और सोडियम भी मिलता रहेगा। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि इसको विशेष तौर पर ध्यान दें।
1: डॉक्टर साहब, पशुशाला के प्रबंधन के बारे में?
0: जी डॉक्टर साहब, देखिए पशुशाला का प्रबंधन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम लोग आवास की बात करते हैं, जैसे जो भी लोग के पास आवास नहीं है, हमारे बहुत से पशुपालक भाई हैं जिसके पास आवास की व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम अपने पशुओं को छाया में रखें। अगर कोई नया आवास बनाने जा रहे हों तो इस बात का ध्यान रखें कि 10 से 12 फीट की हाइट से कम आवास ना हो, क्योंकि हम लोग 8 महीने गर्मी में रहते हैं, 4 महीने ही सर्दी
1: और
0: होती
1: वो
0: है,
1: भी हवादार हो?
0: हवादार हो और उसके अंदर जो होता पंखे कूलर आजकल जो होता फॉगर हो गए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है, अगर लो कास्ट में फॉगर लगवा देंगे तो जिससे दूध उत्पादन बना रहता है। और एक चीज ध्यान रखें, टीन या एस्बेस्टस का जो भी आपके चद्दर हो उस पे सफेद रंग का पेंट लगवा दें, जिससे वो उष्मा को बाहर कर देता है और वो गर्मी के नीचे आवास के अंदर तापमान को घटा देगा, तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दें।
1: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे गर्मी में पशुओं के आहार व्यवस्था और उनके प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र सुल्तानपुर आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 6264419035, 62-64-41-90-35, 62-64-41-90-35।
1: डॉक्टर दिवाकर वर्मा साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और गर्मी में पशुओं की आहार व्यवस्था क्या हो और उनका प्रबंधन कैसे हो इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। आपके बहुमूल्य सुझाव पर पशुपालक भाई बहन अवश्य ध्यान देंगे। डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गर्मी में पशुओं की आहार व्यवस्था और प्रबंधन, अभी आप इस विषय पर डॉक्टर दिवाकर वर्मा से भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट की डॉक्टर सुशील कुमार राय ने। इसके साथ ही आज का विज्ञान और किसान कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: ब्यूरो उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार रामकरण पुत्र राधेश्याम निवासी नियामतपुर थाना सिधौली जनपद सीतापुर से दिनांक 22 अप्रैल सन 2026 से कहीं लापता हैं। रामकरण की आयु 26 वर्ष कद 5 फुट 10 इंच गेहुआ रंग और हल्का लंबा चेहरा है। अर्जुन वर्मा पुत्र भगवान दास निवासी बालाजी नगर अजीजगंज थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर से दिनांक 18 अप्रैल सन 2026 से कहीं लापता हैं। अनुज वर्मा की आयु 24 वर्ष कद 172.7 सेंटीमीटर गेहुआ रंग और लंबा चेहरा है। सोनी पांडे पुत्री सोनू पांडे निवासी थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती से दिनांक 14 अप्रैल सन 2026 से कहीं लापता हैं। सोनी पांडे की आयु 18 वर्ष कद 5 फुट 3 इंच गोरा रंग और गोल चेहरा है। सपना पत्नी टिंकू निवासी हनुमानगढ़ी थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती से दिनांक 16 अप्रैल सन 2026 से कहीं लापता हैं। सपना की आयु 25 वर्ष कद 5 फुट 2 इंच गोरा रंग और गोल चेहरा है और इनकी बाईं आंख के पास ऑपरेशन का निशान है। जिस किसी भी व्यक्ति को इन खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कोई जानकारी हो या मिले तो कृपया इस पते पर सूचित करें। पता है प्रभारी विलुप्त व्यक्ति राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश महानगर लखनऊ। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए, रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 2:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक माधुरी। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे नीरजा प्रकाश के गाए कुछ अवधि लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं आपके गाए इस सोहर के साथ।

लोक माधुरी कार्यक्रम में आज कलाकार हैं नीरजा प्रकाश और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से अवधि लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए आपके ही स्वर में ये नकटा।

अभी आप नीरजा प्रकाश के गाए अवधि लोकगीत सुन रहे थे। इस नक्ता के साथ ही आज का लोकमाधुरी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

हम अपने सुनने वालों को एक बार पुनः याद दिला दें कि आज शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में आप सुनेंगे सफलता की कहानी गन्ना उत्पादन। वार्ताकार रहेंगे कुशल पाल तिवारी, आपसे भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। लोक भाषा कवि गोष्ठी का आनंद लीजिएगा। शाम 6:30 पर प्रतिभागी होंगे देवकी नंदन यादव नंदन, समरजीत सिंह काग और राघवेंद्र नाथ त्रिपाठी। कार्यक्रम का संचालन भी आप ही करेंगे। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए फिल्म गैम्बलर के इस गीत के साथ, जिसे लिखा है नीरज ने, संगीत एसडी बर्मन का है।

और अब लीजिए सुनिए फिल्म जानी दुश्मन का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। गीत के बोल वर्मा मलिक के और संगीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म सुहाना सफ़र का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के गए फिल्म सुहाना सफ़र के इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:15 हुए हैं। प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर सुषमा भारद्वाज से वार्ता। विषय है संस्कृत साहित्य प्रकृति सौंदर्यम।
1: तायाः विषयः अस्ति सौन्दर्यः। वस्तुतस्तु यत् सत्यं तच्छिवं, यच्छिवं तत्सुन्दरम्। अर्थात् सत्यमेव शिवं मङ्गलमयं, तथा च यच्छिवं तदेव सुन्दरम्। अस्माकं संस्कृतभाषायाम् एतत्त्रयस्य सङ्कलनं प्रायः सर्वत्र एव प्राप्यते। अस्माकं भारतीयसंस्कृतौ सौन्दर्यभावस्य सर्वत्र व्याप्तिः वर्तते। संस्कृते एव कथ्यते यत् वाक्यं रसात्मकं काव्यं, रसः एव सौन्दर्यम्। वैदिकसंस्कृतकाव्यात् आधुनिकसंस्कृतकाव्यपर्यन्तं सौन्दर्यस्य समुपस्थितिः प्रायः दृश्यते। संस्कृतं सौन्दर्यमयी भाषा। कानिचित् प्रसङ्गानि, उदाहरणानि वा अत्र प्रस्तोष्यन्ते। संसारे अस्मिन् सन्ति बहूनि वस्तूनि, यानि पुरुषाः समानं लभ्यन्ते, यथा धनं, वैभवं, कला, सौन्दर्यं, विद्या, चारित्र्यादिकं च। प्रकृतिश्चेद् अवलोक्यते, तर्हि सर्वत्र सततं परोपकारप्रक्रियेव संलक्ष्यते।

संस्कृत साहित्य प्रकृति सौंदर्यम। अभी आप डॉक्टर सुषमा भारद्वाज से ये वार्ता सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का संस्कृत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियमवेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। प्रस्तुत है रिकॉर्डेड फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।

0: अब सुनिए हमारा आज का ये कार्यक्रम। हेलो डॉक्टर।
1: दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। और दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि हम इस कार्यक्रम में आपके लिए किसी ऐसे विशेषज्ञ से मुलाकात करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो अपनी विधा में पारंगत होते हैं, अपनी विधा के विशेषज्ञ होते हैं और आपकी जो समस्याएं होती हैं, आपकी जो भ्रांतियां होती हैं वो उन्हें दूर करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा आज का विषय है वो है यकृत संबंधी विभिन्न बीमारियां, कारण, लक्षण और बचाव के उपाय। हम बहुत बार दोस्तों इन सबसे दो चार होते हैं कि लिवर में कोई दिक्कत हो गई, फैटी लिवर हो गया या और भी कई ऐसी जो बीमारियां हैं वे जो भयावह रूप में भी होती हैं, हम कई बार चर्चा में सुनते हैं या हमारे आस पड़ोस में, हमारे घरों में भी हम दो चार होते हैं। अब कारण क्या है, लक्षण क्या है और उपचार क्या है, हम बात कर ही रहे थे। अब इसके लिए हमने किसी विशेषज्ञ को आमंत्रित किया है और मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए उस विशेषज्ञ के बारे में आपको बताता हूँ। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार। आप PGI में गैस्ट्रो सर्जरी विभाग में पदस्थ हैं और विगत कई विगत कई दशक से इस विधा में कार्यरत हैं और लोगों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: नमस्कार
1: सर, हम बहुत बार इन शब्दों से दो चार होते हैं कि यकृत संबंधी या लिवर संबंधी दिक्कतें हुई हो गई हैं, प्रायः कौन कौन सी बीमारियां होती हैं?
2: जैसे कि यकृत आप कह रहे हैं तो मुख्यतः

0: लोग इसको लीवर
1: जी
0: कहते हैं हिंदी में, यकृत लोग जानते हैं
1: जी जी।
0: तो यकृत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन बॉडी का माना जाता है
1: जी।
0: अगर हम हार्ट को मान लें कि उसके बिना जीवन नहीं संभव है, या ब्रेन को मान लें, तो उसी तरह से यकृत के बॉडी में बहुत सारे कार्य होते हैं
1: जी,
0: जिनको 10 के ऊपर या 20 के ऊपर हम लोग कई बार मेडिकल उसमें पढ़ा करते थे, तो उससे भी ज्यादा कार्य यकृत के होते हैं। यह बात लोगों को शायद ना पता हो
1: जी जी जी।
0: और बॉडी का पूरा मैनेजमेंट, मैनेजर की तरह यकृत उसको कार्य करता रहता है लगातार। तो आप यकृत की परेशानियों को या डिसीज या बीमारियों के बारे में पूछ रहे हैं, तो यकृत में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो जैसे कि आजकल बहुत जो मोस्ट कॉमन और सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो है फैटी लीवर की, जिसमें कि यकृत में फैट इकट्ठा हो सकता है, जिससे बाद में पेशेंट को सिरोसिस या आगे चल करके और भी गंभीर परिणाम जैसे कि कैंसर, इवन हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा तक भी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। दूसरा अगर माने तो वायरल डिसीजेस भी, वायरल हिपेटाइटिस जिसको हम लोग कहें
1: जी।
0: तो इसमें कई प्रकार की वायरल हिपेटाइटिस होती हैं, जिसमें कि हिपेटाइटिस ए जो बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, मुख्यतः पानी से, खाने पानी से
1: जी।
0: और कई बार गंदगी से भी आप उसमें फैल जाती है, और अधिकतर केसेस में खुद से ठीक भी हो जाया करती है, लेकिन यही अगर एडल्ट में हो तो वो ज़्यादा गंभीर होती है। दूसरी तरह की बीमारी आजकल जिसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है बच्चों का, हिपेटाइटिस भी, जिसका आजकल बहुत अच्छा बचाव का तरीका है कि हिपेटाइटिस भी का बचाव वैक्सीनेशन से किया जा सकता है। एक तो ये हो गई
1: जी।
0: तीसरी जो हिपेटाइटिस सी होता है, जो मुख्यतः खाने पीने से या किसी और छूने से नहीं फैलता, लेकिन वो ब्लड के थ्रू फैलता है। तो किसी को मालूम पड़ा कि किसी इन्फेक्टेड पेशेंट का अगर ब्लड चढ़ गया है या इंजेक्शन लग गया है, तो उससे भी हेपेटाइटिस सी होने के बहुत चांसेस होते हैं। एक हेपेटाइटिस डी और ई ऑल्सो आर मोर कॉमन, लेस कॉमन, बट हम लोग अगर कहें तो हेपेटाइटिस ए बी ज़्यादा कॉमन है। हेपेटाइटिस बी का तो वैक्सीनेशन है, सी का भी आजकल एंटीवायरल ट्रीटमेंट आ गया है जो इजीली इंडिया में भी अवेलेबल है, तो ठीक हो जाती है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी जो समस्या बनी हुई है वो फैटी लीवर, जो कि एक कॉमन सुनने में आता है कि भाई लीवर में फैट इकट्ठा हो गया है
1: जी, जी,
0: लेकिन
1: जी।
0: उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही सीवियर हैं। एक तो ये हो गया। तीसरा मुख्यतः जो मैं देखा करता हूँ सर्जिकल डिपार्टमेंट में,
1: जी, जी,
0: जो आम तौर पे लोग बात नहीं करते हैं, वो है हाइड्रेटेड लीवर डिसीज। हाइड्रेटेड लीवर डिसीज क्या होता है कि एक पैरासाइट होता है
1: जी,
0: जिसका लार्वा जो लोग घर में डॉग या पपीज कुत्ते छोटे छोटे जो घर में पालते हैं, कई बार उनकी वजह से या भी हो सकता है, या मुख्यतः जो जिनकी कोई केयर नहीं करता है रोड पर रहने वाले कुत्ते या डॉग से भी वो फैल सकता है, कैटल से भी फैल सकता है। और इस तरह का जो लार्वा होता है वो ब्लड से होते हुए वो लीवर में जाता है, लीवर में एक सिस्ट बना लेता है। मुख्यतः पेशेंट्स को इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते
1: जी,
0: लेकिन बाद में जब ये सिस्ट बहुत ही बड़ा होने लगता है तो पेशेंट को भारीपन हो सकता है, मुख्यतः राइट साइड के लीवर में होता है, और उसको भारीपन हो सकता है, उसको अगर पित्त की नली में ये सिस्ट जाकर के फंस जाए तो पीलिया भी हो सकता है। कई बार लंग्स में भी, बहुत रेयर केसेस में देखा गया है कि लंग्स में जाता है और उल्टी के साथ खून और इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह के केसेस आते हैं जिनको हम लोग पहले दवा से ट्रीट करते हैं, लेकिन अंत में अधिकतर केसेस में सर्जरी करके उनको निकालना पड़ता है।
1: क्या कोई लक्षण भी प्रकट होते हैं जिनके आधार पर ये समझा जाए कि हाँ लिवर संबंधी दिक्कत कुछ हो रही है, प्राइमरी टेस्ट कुछ ऐसे?
0: लक्षण की अगर बात करें कि जैसे फैटी लीवर एक एक करके हम लोग लेते हैं
1: जी।
0: तो फैटी लीवर की अगर बात करें तो फैटी लीवर का सबसे बड़ा लक्षण है फैटी होना। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा ओवरवेट दिख रहा है, जो आइडियल वेट है, आइडियल वेट का सबसे आसान तरीका है आपका हाइट से 100 माइनस कर दीजिए
1: जी, जी,
0: मान लीजिए कि आपकी हाइट 172 सेंटीमीटर है, 100 माइनस कर तो आपका 72 72 होना चाहिए
1: जी, जी,
0: और
1: जी,
0: फीमेल के केसेस में 105 माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, इतना आपका आइडियल

0: वेट होना चाहिए, लेकिन अगर उससे ज्यादा अगर आपका वेट है तो फिर आप ओवरवेट हैं। बीएमआई की आजकल लोग बात करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, ये भी लोगों को आजकल जागरूक होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो फैटी होना एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। फिर उसमें आप कह रहे हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो सिम्टम्स जैसे हुआ कि राइट साइड में पेट के ऊपर हिस्से में जहाँ पर रिब केज होता है उसके जस्ट नीचे भारीपन होना, कई बार दर्द होना, बैठने पे ज्यादा हो जाना, लेटने पे थोड़ा कम हो जाना,
1: जी, जी, जी, जी।
0: इस तरह का हो सकता है। हाथ में भी आपके साइनोसिस, कुछ नीलापन या पीलापन, जब जॉन्डिस आपको बहुत सीवियर केसेस में डेवलप हो जाती है तो ये हो सकता है। नेक के पीछे वाले हिस्से में जहाँ पर ये रिंकल्स बन जाते हैं स्किन के, वहां पर कालापन होना, ब्लैकिश हो जाना उसी एरिया में, एक तो ये कारण। और अगर बहुत ही सीवियर केसेस हो जाए, जिसमें कि सीवियर स्टेजेस में क्या होता है कि लीवर एकदम सुखड़ने लगता है, जिसको हम लोग फाइब्रोसिस या सिरोसिस कहते हैं,
1: जी, जी, जी।
0: उसमें और भी सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि फेस का पफिनेस होना, आंखों को अगर देखें तो आंखों का जो व्हाइट वाला एरिया है, स्क्लेरा इसको हम लोग कहते हैं, उसको सन लाइट में देखना चाहिए। सन लाइट में देखें, अगर किसी संबंधी को या घर में किसी व्यक्ति को अगर येलो दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है, तो उसको जॉन्डिस होने का डर है। और बहुत सीवियर सिरोसिस में क्या हो सकता है कि गायनेकोमास्टिया हो सकता है, उसका जो ब्रेस्ट का साइज इवन मेल का भी कभी कभी बढ़ जाता है, पेट फूला हुआ दिखेगा क्योंकि पेट में पानी हो सकता है, साइटिस,
1: जी जी।
0: कई बार एम्ब्लाइकल हर्निया बन जाता है, जो तोंडी का पार्ट है वो बाहर निकला होगा क्योंकि अंदर पेट में पानी लगातार बन रहा है,
1: जी जी।
0: लेग्स में स्वेलिंग आ सकती है, तो ये और एक आपको बताएं, बहुत इसी तरह के केसेस में कई बार स्पाइडर लेग जैसी कुछ वेसल्स रेड आपको पेट में दिखाई देंगे, ये सब कॉमन फीचर्स उसके होते हैं।
1: मान लीजिए ये लक्षण हमें दिख रहे हैं, हम तत्काल क्या करें, क्या इसका बचाव का भी कोई ऐसा उपाय है कि जिससे कि हम प्राइमरी लेवल पर इसका प्रभाव थोड़ा कम कर पाएं और तुरंत चिकित्सक के पास पहुंचे, या पहले ही प्रभाव कम कर लें, जाना ही ना पड़े?
0: तो बेस्ट तरीका तो यही है कि आप दिनचर्या में बदलाव लाए, हेल्दी लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, तो एक हेल्दी लाइफ बहुत जरूरी। हेल्दी लाइफ का मतलब है बैलेंस माइंडफुल ईटिंग, कि भाई खाना उतना नहीं खाना है कि जब तक पेट ना भर जाए और तृप्ति ना हो जाए जब तक आप खाते रहे, कुछ जगह खाली रखिए और पूरा भरपेट ना खाइए उसको, मतलब थोड़ा सा आप खाली रखें,
1: जी जी जी।
0: समय निर्धारित करें कि कब खाना है, सुबह खाना है, शाम को खाना है,
1: जी जी,
0: और जब
1: जी
0: खाने का वक्त हो उसी समय खाना खाएं, बीच में और कुछ मत खाइए। मालूम पड़ा कि कहा कि नहीं खाना, सुबह भाई खाते हैं, शाम को दो रोटियां खाते हैं, लेकिन बीच में
1: स्नैक्स ढेर सारा,
0: स्नैक्स चल रहा है, समोसे चल रहे हैं,
1: जी जी जी।
0: तो ये सब नहीं होना चाहिए, और समय हो गया, दूसरा जब खाना खा लिया तुरंत नहीं लेटना चाहिए, लीवर को भी थोड़ा सा वक्त आप दें कि वो आपके खाने को अच्छे से पचा सके और उसको यूटिलाइज कर सके बॉडी के लिए आपके, ये सब चीजें।
2: तो श्रोताओं, लीवर संबंधी ढेर सारी ऐसी बातें चलती रहेंगी और डॉक्टर साहब ढेर सारी हमें बात बता ही रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि हम इस कार्यक्रम में आपको प्यारे प्यारे गीत भी सुनवाते हैं, तो आइए हम और आप मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक।

0: दोस्तों एक बार पुनः कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है और जो आज का विषय है कि लीवर संबंधी विभिन्न व्याधियां और उससे बचाओ। डॉक्टर साहब ढेर सारी ऐसी बातें हमें बता रहे हैं, आपके कई संदेश हमारे पास हैं भी, हम उनके जवाब डॉक्टर साहब से लेंगे। मैं डॉक्टर साहब को कुछ ऐसे संदेश पढ़कर सुनाऊंगा भी। हमारे कई श्रोता हमें फोन भी कर रहे हैं। जी अपना सवाल पूछिए।
1: डॉक्टर साहब मेरा नाम आलोक है, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हेपेटाइटिस छुआछूत से भी हो सकती है क्या?
2: जैसे हेपेटाइटिस बी का कहें तो वो इस तरह का हो सकता है, आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए जो जिसको हम लोग यूनिवर्सल प्रिकॉशन कहते हैं। यूनिवर्सल प्रिकॉशन ये है कि अगर आपको पता चल गया है तो अगर आप पेशेंट का कोई बॉडी का कोई प्रोडक्ट यूरिन फीकल मैटर या लार वगैरह आपके हाथ में लग जाती है तो आप उसको साबुन से छुएं, ग्लव अवेलेबल हो हॉस्पिटल लेवल पे तो ग्लव का यूज करें, तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन लें। कोई वैसे छुआछूत की बीमारी तो नहीं है लेकिन हो सकता है कि आपको हो जाए तो आप पूरी मतलब सावधानी बरतें उसमें। लेकिन हेपेटाइटिस सी इस तरह से नहीं होता, हेपेटाइटिस सी मुख्यतः आपको बताया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंजेक्शन इन सब चीज़ों से हो सकता है, हेपेटाइटिस बी में ही। लेकिन आजकल हेपेटाइटिस का बेस्ट तरीका है कि उसको आप एक इंजेक्शन लगा लें 016। तो पहला एक इंजेक्शन लगता है, फिर आपको एक महीने पे लगता है, फिर 6 महीने पे लगता है, फिर बूस्टर लगते हैं 5 साल पे। एक लगा लिया तो कई बार बूस्टर की भी कम जरूरत पड़ती है बॉडी में अगर इम्यूनिटी आपकी रहे तो।
0: जी जी, फैटी लीवर के बारे में प्रायः हम सभी सुनते हैं और अधिकतर में देखा जाता है कि टेस्ट कराइए अगर आप ओवरवेट हैं तो फैटी लीवर आता है। स्टेजेस हो सकते हैं कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, प्रायः लोग इसको अवॉइड कर जाते हैं। क्या स्थिति हो सकती है अगर हम बार बार इसे अवॉइड कर रहे हैं?
2: ये क्या है कि साधारणतया ये आम बीमारी नहीं है। आम का मतलब है कि मतलब आम तो है, अधिकतर लोगों में पाई जा रही, लेकिन इससे डरने की जरूरत है।
0: जी जी,
2: और इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर शुरुआत में हम लोग कहते हैं कि फैट क्या होता है कि

0: जो लीवर है पूरे बॉडी के फैट को कंट्रोल, एक्सेसिव जो फैट होता है अपने पास रख लेता है, फिर ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसका ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, यानी कि उसका फैटी लीवर होने का चांस हो रहा है, तो लीवर उसको कम मैनेज कर पा रहा है अपने स्तर पर। तो इस तरह का हो जाता है, तो जो लीवर इस तरह का कार्य है लीवर का।
1: सर एक और हमारे साथ कॉलर लाइन पर हैं, जी अपना सवाल पूछिए।
2: डॉक्टर साहब, कई बार लोग कहते हैं कि अगर खाने पीने पे ध्यान न रखा जाए तो फैटी लीवर की बीमारी हो सकती है, क्या ये बात सही है? खान पान का भी फैटी लीवर से कोई संबंध है?
0: आप पूछ रहे हैं कि खाने पीने का, बिल्कुल है। जैसे कि बहुत ही डीप फ्राइड चीजें, आप समोसा और ये कचौरी, ये सब बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं जो पैक्ड आते हैं, कोल्ड ड्रिंक है, बियर है लोग पीते हैं, तो इन सब से और ओवर ईटिंग से भी होता है। तेल मसाला जिसको, और उसमें क्या कहते हैं कि घी ऑयल का बहुत एक्सेसिव यूज़ करना, इन सब वजह से ब्लड में पहले फैट बढ़ता है, वो जा करके लीवर में डिपॉजिट होता है। लीवर क्या करता है, लीवर की सेल्स उसको एज ए कई बार गलत वे में लेती हैं और अपने रिएक्शंस की वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन सेल्स में स्टार्ट हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन होने के बाद बाद क्या होता है कि ज़्यादा लंबे समय तक अगर ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती हैं तो फिर फाइब्रोसिस हो सकती है और लीवर सुखड़ सकता है, अंतिम स्टेज में सिरोसिस तक की नौबत आ सकती है।
2: हम लोग सामान्य बीमारियों की बात कर रहे थे कि हाँ ये दिक्कत फैटी लीवर हो सकता है या हेपेटाइटिस, खैर गंभीर बीमारी, लेकिन एक और भी उससे गंभीर बीमारी है, शायद हम उस पर चर्चा नहीं करते या उसके लक्षणों को जानने का प्रयास नहीं करते, कि कर्क रोग या उससे संबंधित दिक्कतें हमारे श्रोताओं को होती हैं। क्या लीवर में जो कर्क रोग होता है वो हमारे खाने पीने से, हमारे दिनचर्या से या जो हमारे क्रियाकलाप हैं उससे होता है?
0: तो जैसे कि आप कैंसर की बात कर रहे हैं, तो कैंसर हाँ बिल्कुल दिनचर्या की वजह से हो सकता है
2: जी।
0: क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि फैटी लीवर आजकल अधिकतर एशियन कंट्री में, इंडिया में भी देखा जाता है, 20-30% लोगों में मिल जाता है किसी न किसी स्टेज में, और स्टेज बढ़ती है तो फिर सिरोसिस हो जाता है। सिरोसिस के कुछ परसेंटेज केसेस में हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होने तक की नौबत आ सकती है, जो लीवर का कैंसर।
2: हाँ,
0: तो बिल्कुल खाने पीने से इसका इफेक्ट होता है। दूसरा इसका कारण जो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या लीवर कैंसर का, वो है वायरल हिपेटाइटिस, जैसे हिपेटाइटिस बी एंड और सी
2: जी।
0: इनका भी यही है कि एक बार इन्फेक्शन हुआ, सेल्स में इन्फ्लेमेशन हुआ, वो इन्फ्लेमेशन क्रोनिक होता रहा, सालों तक रहा, और वो इन्फेक्शन होते होते सिरोसिस पहले डेवलप होगा, उसके बाद फिर वो कैंसर में तब्दील हो जाएगा। एक तो ये इस तरह का कैंसर, एक तो वायरल हेपेटाइटिस की वजह से, दूसरा फैटी लीवर की वजह से भी कैंसर हो सकता है, ये लोगों को जानना जरूरी है। और तीसरा है कि कैंसर, लीवर का कैंसर, कैंसर कहीं और पैदा हुआ, इंटेस्टाइन में या कहीं बड़ी आंत में या स्टमक में या किसी और छोटी आंत में, और उसका कुछ पार्ट या जिसको मेटास्टेसिस हम लोग कहते हैं, वो दूर जा करके कैंसर लीवर में डेवलप होगी, इसको हम लोग लीवर मेटास्टेसिस, इस तरह के कैंसर छोटे बच्चों में हिपेटोब्लास्टोमा, इस तरह के कैंसर होते हैं।
2: प्रायः लोग जैसे ही शब्द ये सुनते हैं घबरा जाते हैं और कई बार इसे समझ लेते हैं कि शायद अब आगे कुछ नहीं, चूंकि मेडिकल ने बहुत प्रगति कर ली है, फिर भी लोगों में ये भ्रम है और लोग इलाज के लिए नहीं आते, क्या ये ठीक हो सकता है?
0: कैंसर
2: जी,
0: कैंसर जैसे कि फैटी लीवर से रिलेटेड जो कैंसर है, तो सिरोसिस से रिलेटेड जो कैंसर है
2: जी,
0: उनको थोड़ा ट्रीट करना मुश्किल है। अधिकतर तो ऐसी स्टेज में पेशेंट हमारे पास पहुंच पाते हैं जबकि उनको इलाज करना कई बार मुश्किल हो जाता है। फिर साथ में उसको लीवर भी क्योंकि खराब है
2: जी, जी,
0: और लीवर के साथ साथ पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है। पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब है कि जो नसें हैं, नॉर्मल जो नसें जो लीवर में ब्लड को पहुंचाती हैं, उसमें बहुत सारी एबनॉर्मल वेसल्स भी डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से अपने आप में कई सारी समस्याएं डेवलप हो जाती हैं, ब्लीडिंग होने लगता है पेशेंट को, और सर्जरी तो अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है, और लीवर तो आपका पहले ही से ही खराब है, तो इस वाली सिनेरियो में
2: जी,
0: इस कंडीशन में कैंसर का ऑपरेशन मुश्किल
2: हो जाता है। जी
1: डॉक्टर साहब, एक और श्रोता हमारे साथ लाइन पर है, जी अपना सवाल पूछें।
3: सर नमस्ते, मैं सुनील बोल रहा हूँ। सर क्या कोई रूटीन टेस्ट भी है जिससे करा के जान लिया जाए कि हमारा लीवर ठीक है?
0: बेस्ट तरीका है कि आप LFT, जिसको हम लोग कहते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट,

0: तो सबसे आसान है, एक ब्लड टेस्ट होता है, कम पैसे में हो भी जाता है, तो आप इसको करा लें। उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, SGPT SGOT आजकल लोग पहचानने भी लग गए हैं, पूछते रहते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, GGT, बिलिरुबिन, एल्बुमिन, ये सब लीवर के फंक्शन को बताते हैं कि भाई लीवर आपका कैसा चल रहा है। तो एक तो ये LFT करा लें
1: जी,
0: और अल्ट्रासाउंड भी बीच में अगर आपको लगता है कि भारीपन राइट साइड पे हो रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपको थकान लग रही है, आपको नाउजिया, उपकाई, ये सब चीजें हो रही हैं, तो फिर एक अल्ट्रासाउंड भी कराया जा सकता है। उसमें देख लें कि आपका किस ग्रेड का फैटी लीवर है और प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर लें। खुद से भी इसको इनिशियल स्टेज पे मैनेज किया जा सकता है, और ज्यादा जरूरी हो तो डॉक्टर को भी दिखाएं।
1: चूंकि ढेरों बातें हम कर सकते हैं, पर चूंकि एक समय की सीमा है, अगर हम अपने श्रोताओं को सामान्य शब्दों में, कुछ दो चार लाइनों में, अपने श्रोताओं को लीवर को स्वस्थ रहने के उपाय के बारे में और घरेलू उपाय विशेषकर आप बताना चाहें, क्या कहना चाहेंगे?
0: करें यही कि जैसे मैंने बताया, माइंडफुल ईटिंग। तो आप खाइए, खाना खाइए, लेकिन एकदम पेट भर के नहीं, उसमें कुछ जगह खाली रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये
1: जी।
0: दूसरा ये कि जो फिक्स्ड आपने डाइट बनाई हुई है, जो समय बनाया वो फिक्स रखिए, बीच में कुछ जबरदस्ती की चीजें या समोसे और डीप फ्राई जो चीजें हैं उनको अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करें, और बहुत ज्यादा घी तेल, कई बार लोग कहने लगे नहीं घी खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, गाय का घी खाइए तो कोलेस्ट्रॉल, ये सब गलत चीजें हैं, गलत भ्रांति है, उसी को लोग करके अपने आप को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो और दूसरा ये कि 40-50% जो आपका खाना अगर बिना तला हुआ हो तो बहुत अच्छा है, जितना भी आप खाना खाते हैं उसका 40-50% आप उबला हुआ, भुना हुआ, इस तरह का लें, हरी सब्जियां लें, उबली हुई सब्जियां ले सकते हैं, फ्रूट्स लीजिए, ये सब आप कार करें तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी सी एक्सरसाइज, वॉकिंग सबसे बेस्ट तरीका है वेट को सही रखने का, वॉक करिए, थोड़ा साइकिलिंग, इंडोर साइकिलिंग करिए, और योगा वगैरह अगर आप के आसपास इस तरह के कोई ग्रुप हैं तो उनको ज्वाइन कर लीजिए, उनको बहुत अच्छी बात है।
1: मतलब अगर सारांश के तौर पर हम समझना चाहें तो हम खाना नियंत्रित करके या उसकी मात्रा नियंत्रित करके, कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करके या तला भुना रोक कर, साथ ही आप अपने जीवन दिनचर्या में व्यायाम को, एक्सरसाइज को शामिल करें, खुश रहें, साथ ही साथ जो डॉक्टर साहब ने बताया भी कि आप प्राय एक परीक्षण करा लिया करें कि जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका लीवर कितना अच्छा है या किस स्टेज पर है, और हम इन चीज़ों को अपना कर अपने लीवर को सुरक्षित रख सकते हैं, उनमें होने वाली बीमारियों को बचा सकते हैं, विशेषकर जो गंभीर बीमारियां हो जाती हैं और शायद बड़ी दिक्कत आती है उनके इलाज में। तो डॉक्टर साहब, आपने इतना बहुमूल्य समय निकालकर हमें इतने सही जानकारी हमारे लीवर के संदर्भ में दी, खासकर उससे संबंधित बीमारियों से बचने के उपाय के संदर्भ में आपने इतनी विशेष जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, हमें यूं ही सुनते रहें, अपने सवाल भेजते रहें, फोन कॉल करते रहें, हम आपके संदेश, आपके फोन कॉल अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा जो अगला विषय है वो है विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय जांचें जरूरी क्यों हैं। आप हमें सवाल पूछ सकते हैं, हमारे सवाल पूछने का समय है बुधवार को अपराह्न 2:30 बजे से 3:30 बजे तक। हम आपके सवालों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमें यूं ही सुनते रहें, फोन करते रहें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया सुभाष खन्ना ने। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम संकल्प।
1: दिव्यांग भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम संकल्प में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, संकल्प कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं, हमारा प्रयास रहता है कि उनको दिव्यांगता से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। और आज हम बात करेंगे जो हमारे दृष्टिबाधित दिव्यांग भाई बहन हैं कि जो शिक्षा है उनके लिए क्या अवसर हैं। ब्रेल लिपि बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी लिपि है जो कि हमारे दृष्टिबाधित दिव्यांग भाई बहनों के लिए उपयोगी है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे इसके माध्यम से हमारे जो दृष्टिबाधित दिव्यांग भाई बहन हैं पढ़ सकते हैं, समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं और कहा जाए कि वो आत्मनिर्भर हो सकते हैं, तो ये गलत बात नहीं है और शिक्षा सबको प्राप्त करनी चाहिए। तो आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं लखनऊ के ब्रेल प्रेस प्रबंधक श्री ब्रिजेश चौधरी जी। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो ब्रेल है, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो बेसिकली हमारे जो दृष्टिबाधित भाई बहन उनके लिए है और उनके लिए जो एहसास होता है, क्योंकि वो दृष्टिबाधित होते हैं तो चीज़ों को देख नहीं सकते हैं तो वो महसूस कर सकते हैं, और ब्रेल लिपि ही इसका एक एग्जाम्पल है कि इसके माध्यम से वो पढ़ते हैं। थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताइए।
2: ब्रेल लिपि वह है जिसके द्वारा दृष्टिबाधित छात्र लिख और पढ़ सकते हैं। ब्रेल लिपि को किसी भी भाषा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका आविष्कार लुइस ब्रेल ने किया था जो फ्रांस के निवासी थे। ये 6 डॉट पे आधारित होती है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारा इंग्लिश अल्फाबेट में A to Z होते हैं, उसी प्रकार इसमें 6 डॉट होते हैं, उसी के आधार पे ये ब्रेल बच्चे जो हैं इन

0: चीज़ों को सीखते हैं और समझते हैं।
1: तो इसकी उम्र क्या होती है, जैसे कि हम सामान्य बच्चों की बात करें तो वो प्री प्राइमरी से ही चीज़ों को देखने लगते हैं, सीखने लगते हैं, उनको हिंदी की जो वर्णमाला है उसके अक्षर सिखाए जाते हैं हमारे देवनागरी लिपि में, तो उसको समझते हैं कि कैसे क्या होता है, छोटा आ से बड़ा आ से क्या होता है, तो चीज़ों को समझते हैं और देखते भी हैं। तो ब्रेल लिपि में जो हमारे बच्चे होते हैं उनको कैसे समझाया जाता है, क्योंकि इनके लिए ये जीवन का पहला अनूठा एहसास होता है, क्योंकि उनको उससे पहले कुछ पता नहीं होता है कि कैसे मुझे पढ़ना है, तो शिक्षा की दिशा में जो ब्रेल लिपि ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसको कैसे बच्चे समझते हैं?
0: इसमें हमारे यहाँ सर बचपन डे केयर सेंटर चलता है, वहाँ पे 3 से 7 साल के बच्चे होते हैं, और जो हमारे कक्षा 1 से 12 तक के स्पर्श विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पे जो हमारे 6 से 18 साल के बच्चे होते हैं, वहाँ पे ब्रेल किट के माध्यम से, इसमें ब्रेल किट में कई टूल्स होते हैं ब्रेल से संबंधित, उन्हीं के द्वारा ये बच्चे लिखना और पढ़ना सीखते हैं, कैसे आ बनता है कैसे बा बनता है उसी के द्वारा ही ये लोग सीख करके आगे बढ़ते हैं।
1: तो आप ब्रेल प्रेस के प्रबंधक हैं, तो थोड़ा सा हमें कुछ इसके बारे में बताइए, जहां आपके यहाँ किताबें प्रिंट होती हैं तो कैसा आपका अनुभव रहता है, क्योंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे दृष्टि बाधित दिव्यांग भाई बहन है वहां पर उनके पास किताबें पहुंचती हैं, थोड़ा सा हमें कुछ ब्रेल प्रेस के इतिहास के बारे में बताइए।
0: ब्रेल प्रेस की स्थापना जो है 9 अगस्त 2012 को हुई थी, क्योंकि हमारा विभाग दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि में दी जाने वाली शिक्षा की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए ब्रेल पुस्तकों के मुद्रण हेतु इसकी स्थापना की गई थी। इसी के आधार पे हमारे यहाँ 10 स्पर्श विद्यालय हैं, जो कि हमारे 2 लखनऊ में हैं, बालक और बालिकाओं दोनों को कक्षा 1 से 12 तक संचालित हैं। बांदा में हमारा 1 बालक का विद्यालय है जो कक्षा 1 से 12 तक संचालित है। गोरखपुर में हमारे 2 विद्यालय हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, जो कक्षा 1 से 12 तक संचालित है। बरेली में भी बॉयज़ कॉलेज है जो कक्षा 1 से 12 तक संचालित है। मिर्जापुर, लखीमपुर और सहारनपुर में हमारे 3 और गर्ल्स कॉलेज हैं जो कि कक्षा 1 से 12 तक। इसके अलावा हमारे यहाँ ये समेकित विद्यालय भी, समेकित में सर आपको ये बताना चाहूँगा कि समेकित में 50% छात्र सामान्य होते हैं और 50% हमारे दिव्यांग होते हैं। दिव्यांग में हमारे BI वाले भी बच्चे आते हैं, स्पर्श वाले भी आते हैं, HI भी, जो बच्चे बोल और सुन नहीं पाते उस तरह के, और फिजिकली हैंडीकैप जिनके हाथ या पैर से दिव्यांग बच्चे होते हैं वो भी शामिल होते हैं। तो मतलब एक ही छत के नीचे उनको सामान्य शिक्षा का देने का प्रयास किया जाता है।
1: बात की जाए अगर ग्रामीण क्षेत्रों की, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे होते हैं बहुत से ऐसे कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर माता पिता होते हैं, जिनके घर में अगर कोई दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चा पैदा होता है तो उसको शायद वो शिक्षा नहीं प्राप्त करा पाते हैं, तो अगर वो लोग शिक्षा प्राप्त करना चाहे या अगर वहाँ तक किताबें पहुँचना चाहें ब्रेल लिपि की, तो कैसे उनको प्राप्त होती होंगी?
0: सर हमारे यहाँ स्वर शिक्षा अभियान बेसिक शिक्षा विभाग है, इनका ऑर्डर हमारे यहाँ आता है, इनके यहाँ 75 जिलों में हम लोग पूरी किताबें हम लोग पहुंचाते हैं, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल इनके ग्रामीण इलाकों में संचालित हैं। प्रत्येक मतलब जब भी इनका ऑर्डर हम लोग के यहाँ आता है हम लोग उनके यहाँ किताबें पहुंचाते हैं, और इस क्रम में हम लोग ने अभी 2025-26 में करीब सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 50,384 किताबों ब्रेल में 75 जनपदों में उपलब्ध कराई हैं। इससे पहले हम लोग के पास 2016 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल में अध्ययनरत दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेल लिपि में पाठ पुस्तक उपलब्ध कराई जा रही है, और 2021-22 में 40,000 ब्रेल लिपि में पाठ पुस्तक उपलब्ध कराई गई थी, और 2022-23 में 43,414 और 2024-25 में 4,575 किताबें उपलब्ध कराई गई थी, और 25-26 में 50,384 किताबें उपलब्ध कराई गई।
1: तो बात की जाए अगर ब्रेल लिपि की, तो मुझे लगता है कि जो भी इसको सीखता होगा वो एक तरीके का एहसास है, क्योंकि बिना इसको टच किए तो आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे कि ब्रेल होता क्या है, क्योंकि स्पर्श ही इसकी मुख्य चीज है जिसको आप समझ सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, हालांकि जैसे कि आपने प्रेस की बात की कि वहां पर चीजें प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से किताबें प्रिंट होती हैं, पर आधुनिक युग में ब्रेल लिपि कहाँ तक हमारा एडवांस हो गई है कि जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि पुराने समय में तो चलिए मान सकते हैं लोगों को दिक्कतें होती थी, सुविधाएं कम प्राप्त होती होंगी तो लोग शिक्षा से वंचित रह जाते होंगे, लेकिन आधुनिक युग में तो आजकल इंटरनेट के माध्यम से बहुत कुछ उपलब्ध है जहां पर हमारे शारीरिक रूप से सक्षम और अक्षम दोनों लोग सीख सकते हैं। मतलब अगर कहा जाए कि जो अक्षमता है वो आधुनिक युग में काफी कुछ कम हो गई है, तो ये गलत बात नहीं, क्योंकि बहुत कुछ सीखने के लिए आजकल उपलब्ध हो चुका है। तो टेक्नोलॉजी का कहाँ तक आप लोग इस्तेमाल करते हैं प्रिंटिंग प्रेस में या बच्चों को शिक्षा देने में?
0: हमारे यहाँ प्रिंटिंग जो हमारा ब्रेल प्रेस है निषादगंज में स्थापित है, यहाँ पे हम लोग ने 3 मशीनें हैं हमारे पास इस समय वर्तमान में, जो कि एक मशीन जो हम लोग की जो है इंटर पॉइंट मशीन है, जो 55 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेल इम्बोजर मशीन है, जो कि बेल्जियम से मंगाई गई है, और ये बहुत पुरानी मशीन हमारी 2012 में आई थी, और इसकी मुद्रण की गति जो है 25 स्ट्रोक प्रति सेकंड है, जिसके परिणाम स्वरूप 6 डॉट ब्रेल में हम लोग 800 प्रति सेकंड तक हो सकती है।

और इसमें जो है ब्रेल पेपर जो है हम लोग का 140 ESM का होता है, काफ़ी मोटा पेपर होता है, और इसमें जो है मैगजीन स्टाइल में सीट निकलती हैं, 4 पेजेस की निकलती हैं, जिसमें रजिस्टर बाइंडिंग अर्थात एक ही खंड के कई हिस्सों में निकालकर हम लोग बाइंडिंग भी कर सकते हैं। और इसमें ग्राफिक चित्र बनाने की भी सुविधा होती है, जिसमें हम लोग सर्किल भी बना सकते हैं, ट्रायंगल भी बना सकते हैं, और आपका कोण ओण भी बना सकते हैं, मतलब कई तरीकों का इसमें बना सकते हैं। ये तो हमारी इंटर पॉइंट मशीन थी, और इसके साथ ही हमारी जो है दो ब्रेलो मशीन है हमारे पास, जो कि ब्रेलो 650 SW2 एवं SW2.1 जो कि नॉर्वे से मंगाई गई थी। ये सब मशीनें बहुत ही कॉस्टली होती हैं, और ये 2021 और 2023 में अभी नई एडवांस मशीन है, जो कि टच स्क्रीन आवाज़ के साथ ही ये हमारी चालू होती है। इसमें प्रत्येक किताब खंड को एक एक करके निकालते हैं, एवं किताब को हम लोग अलग भी कर सकते हैं, जो कि हम लोग की पुरानी मशीनों में अलग नहीं कर सकते थे। इसमें ये एडवांस चीज़ें ज़्यादा हैं। मशीन द्वारा मुद्रित पुस्तकों को विषयवार विवरण प्राप्त हम लोग किया जा सकता है, और इसको हम लोग कहीं से भी दूर से भी वाईफाई के माध्यम से भी हम लोग इसको चालू कर सकते हैं। तो एडवांस के क्षेत्र में भी हम लोग काफ़ी कुछ आगे बढ़ रहे हैं, और जो हमारे दृष्टिबाधित बालक हैं उनको हम लोग डेजी प्लेयर देते हैं। डेजी प्लेयर में क्या होता है?

0: का इसमें बना सकते हैं। ये तो हमारी इंटर पॉइंट मशीन थी, और इसके साथ ही हमारी जो है दो बोरेलो मशीन है हमारे पास, जो कि बोरेलो 650 SW2 एवं SW2.1 जो कि नॉर्वे से मंगाई गई थी। ये सब मशीनें बहुत ही कॉस्टली होती हैं, और ये 2021 और 2023 में अभी नई एडवांस मशीन है जो कि टच स्क्रीन आवाज के साथ ही ये हमारी चालू होती है। इसमें प्रत्येक किताब खंड को एक एक करके निकालते हैं एवं किताब को हम लोग अलग भी कर सकते हैं, जो कि हम लोग की पुरानी मशीनों में अलग नहीं कर सकते थे। इसमें ये एडवांस चीज़ें ज़्यादा हैं। मशीन द्वारा मुद्रित पुस्तकों को विषयवार विवरण प्राप्त हम लोग किया जा सकता है, और इसको हम लोग कहीं से भी दूर से भी वाईफाई के माध्यम से भी हम लोग इसको चालू कर सकते हैं। तो एडवांस के क्षेत्र में भी हम लोग काफ़ी कुछ आगे बढ़ रहे हैं, और जो हमारे दृष्टिबाधित बालक हैं उनको हम लोग डेजी प्लेयर देते हैं। डेजी प्लेयर में क्या होता है कि बच्चे की आवाज़ को उसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके माध्यम से भी वो बच्चे सुन लेते हैं, और अब फोन की भी सुविधा उनको दी जा रही है। बच्चे अब लिखित से ज़्यादा हम लोग के सुनने पर ध्यान दे करके उसमें पढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम लोग की तरफ से दिव्यांग विभाग काफी काम कर रहा है डेजी प्लेयर पे और ये मोबाइल फोन पे।
1: जैसा कि आपका विभाग जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं दृष्टिबाधित उनके लिए बहुत ही कार्य कर रहा है, तो अगर इसकी बात की जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में, तो इसके लिए कुछ स्पेशल एजुकेशन होते होंगे, कुछ एजुकेटर होते होंगे कि जो इसको पढ़ाते होंगे, क्योंकि ये जो ब्रेल लिपि इसको समझना भी अपने आप में कला है, क्योंकि आप जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि सामान्य लोग तो ऐसे तो नहीं समझ पाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि केवल 6 डॉट पे ही आधारित होती है, तो 6 डॉट पे अगर आप किसी चीज को, किसी लिपि को समझना चाहते हैं, तो मतलब आपको मुझे लगता है कोई स्पेशल कोर्स भी करना पड़ता होगा, तभी शायद आप इस चीज को समझ सकते हैं।
0: हमारे यहाँ सर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय है मुहान रोड पे ही, यहाँ पर भी डीएड स्पेशल कोर्स जो कि हमारे विभाग का ही विद्यालय है, यहाँ पे डीएड बीएड और आपके एमबीए बीटेक से लेकर कई कोर्स चला जाते हैं। यहाँ पर भी सामान के साथ साथ हमारे इस तरह के बच्चे भी वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ पे भी डीएड कर सकते हैं। एनआईवीएच है हमारा देहरादून में, वहाँ से भी आप डीएड कर सकते हैं, और प्राइवेट कई संस्थाएं हैं जहाँ से हम डीएड करके इस स्पेशल फील्ड में आने का प्रयास कर सकते हैं। और अभी हमारे विभाग द्वारा काफी अधीन सेवा चयन आयोग से और लोक सेवा चयन आयोग से भर्तियां निकाली गई हैं डीएड के माध्यम से, तो आप बीआई के बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसके द्वारा जो है इस तरह के विद्यालय में आकर के अपनी भूमिका को प्रदर्शित कर सकते हैं और बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं।
1: तो जैसा कि आप ये बहुत ही विशेष कार्य कर रहे हैं, क्योंकि दिव्यांग बच्चों के लिए ब्रेल प्रेस का प्रबंधन करना ये बहुत ही कठिन कार्य है, तो कुछ और बताइए कि इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं।
0: अभी जो हम लोग का दिव्यांग कल्याण विभाग है इसमें राज्य स्तरीय पुरस्कार भी हम लोग को दिया जाता है, तो अभी विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ राजकीय ब्रेल पुरस्कार राज्य स्तरीय पुरस्कार 2025 को हम लोग को दिया गया है। और इसमें मैं खास ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग ने कक्षा 1 से 12 तक की जो किताबें छापते हैं उसके अतिरिक्त हम लोग ने रामचरितमानस पर भी काफी काम किया है, उस पर हम लोग ने 18 खंडों में वो छाप दी है। और क्योंकि हमारे यहाँ के जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, और प्रत्येक स्कूल में आप यकीन नहीं मानिएगा वहां पर ये बच्चे रामायण और ये रामचरितमानस पाठ करते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छा रहता है, आप कभी अनुभव करेंगे तो अच्छा लगेगा। 2025 में भी और 2017 में भी हम लोग को राज्य स्तरीय पुरस्कार मिल चुका है। इसके अतिरिक्त विश्व दिमाग दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार भी हम लोग को 2018 में प्राप्त हो चुका है, ये हम लोग की उपलब्धि रही है।
1: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनको जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं वो आसानी से पढ़ सकते हैं और उसका अनुसरण भी कर सकते हैं। तो अंत में आप हमारे जो भी दृष्टिबाधित दिव्यांग भाई बहन हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे मन लगा के और पढ़ते रहें, क्योंकि हमारे यहाँ आपने बताया कि कक्षा 1 से 12 तक के बच्चे, उसके बाद हमारा डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय है, वहाँ से हायर एजुकेशन में एमबीए भी कर सकते हैं, बीटेक भी कर सकते हैं, जो सामान्य बच्चा कर सकता है वो हमारे दिव्यांग बच्चे भी, ब्लाइंड बच्चे भी करके। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि अभी कई लोग आईएएस बने हैं दिव्यांग बच्चों में, और कई लोग पीसीएस में भी बन करके अपनी योगदान को बढ़ा रहे हैं, तो आगे आ करके इस तरह से अपना मोटिवेट करते हुए अपना योगदान दें और आगे बढ़ने का प्रयास करें, यही मेरी आशा है।
1: तो जैसा कि आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं ब्रेल प्रेस प्रबंधक श्री ब्रजेश चौधरी जी, जो कि हमारे लखनऊ से हैं, और इन्होंने कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जितने भी दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि किस प्रकार से वो प्री प्राइमरी एजुकेशन जो हमारा बचपन डे केयर है वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे स्पर्श राजकीय विद्यालय है लखनऊ में या अन्य जिलों में भी है वहाँ पर भी जाकर के आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप हमारे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय है लखनऊ में वहाँ पर भी जा सकते हैं, जहाँ पर आप प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, बीटेक या अन्य डिप्लोमा कोर्सेस या कह सकते हैं कि डिग्री कोर्सेस, जो भी कुछ है आपको सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। तो जो अब हमारे बच्चे हैं दृष्टि दिव्यांग उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि वो जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे तरक्की करेंगे, क्योंकि आधुनिक

0: युग में जो दिव्यांगता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही सिमट कर रह गई है, क्योंकि बहुत से अवसर हैं जिससे हमारे किसी भी प्रकार की दिव्यांगता हो, या अगर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति हो, दृष्टिबाधित हो, श्रवण बाधित हो, तो वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और दिव्यांगता अब उनके लिए एक शब्द रह गया है। कहीं ना कहीं आधुनिक युग में बहुत सी सुविधाएं हैं जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। तो सर, आज हमारे आप कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संकल्प, इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया देवाशीष ने। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं मन्ना डे की गाई फिल्म वरदान के इस गीत के साथ, जिसे लिखा है योगेश ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।
1: अरे मुरली बजाई कृष्ण कन्हाई राधा के मन भाई, मधुर मधुर धुन सुन मोहित भई सब सुध बुध बिसराई। उड़ता गिरता आंचल लेकर काली काली लट पे, और कुंज गली से दौड़ी राधा पहुंची जमुना तट पे, राधा पहुंची जमुना तट पे, राधा पहुंची जमुना तट पे।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप इस समय आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से सुन रहे हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं मन्नाडी का गाया फिल्म मेरे हुजूर का ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का है।

दिल ही तो है। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत, स्वर मन्ना डे का, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की और संगीत रोशन का है।

ಕಾಂಧ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಂಧ ಡಾಕ್ಟರ್.

अभी आपने सुना मन्ना डे के स्वर में फिल्म दिल ही तो है इस फिल्म का गीत। इसके साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 kHz पर। शाम के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक झनकार। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं सतीश चंद्र श्रीवास्तव और साथी। आज आप सुनेंगे इनके गाए कुछ भोजपुरी लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं आपकी गाई इस कजरी के साथ।

लोक झनकार कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। कलाकार हैं सतीश चंद्र श्रीवास्तव और साथी। अब लीजिए सुनिए कहरवा।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम लोक झनकार में श्रोता आनंद ले रहे हैं सतीश चंद्र श्रीवास्तव वसाथी के गाय भोजपुरी लोकगीतों का। और कार्यक्रम में अगला पेशकश आप सुन रहे हैं ये दादरा इन्हीं के स्वर में।
1: चांद का

0: लोक संगीत के कार्यक्रम लोक झनकार में अभी आप सुन रहे थे सतीश चंद श्रीवास्तव वसाथी के गाय भोजपुरी लोकगीत, और इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
1: 870-001-4242।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रैमी सिटी कैंप्स का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है।

0: इसके अंतर्गत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार द्वारा विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर ETF को 25% से घटाकर 7% करने के निर्णय की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में इस कदम की प्रशंसा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि ऐसे समय में जब विमानन क्षेत्र वैश्विक परिचालन और लागत संबंधी दबावों का सामना कर रहा है, राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए ऐसे सक्रिय कदम एयरलाइनों और किफायती हवाई यात्रा के लिए मददगार हैं। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये जलडमरू मध्य विश्व ऊर्जा व्यापार के लिए एक प्रमुख समुद्री मार्ग है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की 3 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिका और चीन ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने और होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन खुला रखने पर सहमति व्यक्त की। संयुक्त अरब अमीरात में आज आबू धाबी स्थित बरकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। आबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। IPL क्रिकेट में धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। अब सुनिए आज के शेष वकल के विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले एक नजर आज के शेष कार्यक्रमों पर। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण समय होगा आज रात 10 बजे से। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। युवा तरंग कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से थोड़ी ही देर में यानी शाम 5:10 पर। वहीं कार्यक्रम नई उड़ान लेकर हम हाजिर होंगे शाम 5:45 पर। लोक भाषा कवि गोष्ठी का आनंद श्रोता ले सकेंगे आज के लोकायतन कार्यक्रम में, जिसका समय होगा शाम 6:30। शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुशल पाल तिवारी से सफलता की कहानी के अंतर्गत गन्ना उत्पादन विषय के बारे में, और इनसे भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम होगा आज शाम 7:31 पर। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी सुमोना एस पांडे और नीना सोनकर। हिंदी कार्यक्रम में आज रात 8 बजे आप सुनेंगे वार्ता अवध के लोकगीत। वार्ताकार होंगे डॉक्टर राम बहादुर मिश्र। सुगम संगीत लेकर हम हाजिर होंगे आज रात 8:10 पर। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब सुनिए कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। कृषि चर्चा कार्यक्रम में कल सवेरे 6:05 पर डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी से जानिएगा धान की नर्सरी प्रबंधन विषय के बारे में। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम आप सुनते हैं सवेरे 7 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 7:31 पर आप सुनेंगे पाठ प्रतिम राय का सितार वादन, और रात 10:30 पर आप सुनेंगे उस्ताद अली अकबर खान का सरोद वादन।

जिले की हलचल का प्रसारण समय होगा प्रातः 9:15। उर्दू प्रोग्राम हम पेश करेंगे सवेरे 9:30 पर। कल दिन में 1:15 पर घर आंगन कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी डॉक्टर निशा गहलोत की कहानी, जिसका विषय है रिश्ते की रजामंदी। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में कल दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे डॉक्टर शरद कुमार सिंह से भेंटवार्ता, विषय है समन्वित मत्स्य पालन की योजना और तैयारी। भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। युवा तरंग कार्यक्रम आप सुनते हैं शाम 5:10 पर, वहीं कार्यक्रम नई उड़ान होता है शाम 5:45 पर। लोकायतन कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर आप सुनेंगे अधकपारी कारण और निवारण, विषय के बारे में डॉक्टर अतुल अग्रवाल से, और इनसे भेंट करेंगी नीना सोनकर। खेती किसानी कार्यक्रम में कल शाम 6:50 पर आप सुनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भेंटवार्ता, विषय होगा पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव और टीकाकरण। भेंट करता होंगे डॉक्टर।

और अवसरों के बारे में जानने का, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण संपर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए कई जिलों में नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे गांवों को बाजार, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं से बेहतर जोड़ने में मदद मिलेगी। लोक निर्माण विभाग के अनुसार कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन विपणन और स्वरोजगार से जुड़े प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। कृषि विभाग ने किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी योजना को आगे बढ़ाया है। ड्रोन तकनीक, सोलर पंप और स्मार्ट सिंचाई उपकरणों पर विशेष सहायता दी जा रही है। विभाग ने किसानों से समय पर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेली मेडिसिन सुविधा शुरू की गई है। अब ग्रामीण मरीज विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई पर्यटन स्थलों पर सौंदर्यीकरण और सुविधाओं के विस्तार का कार्य जारी है। इससे स्थानीय रोजगार और छोटे व्यवसायों को भी नई ऊर्जा मिलने की संभावना है। प्रदेश में विभिन्न जिलों में कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग और डिजिटल सेवाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये थे आज के विकास समाचार और कुछ अवसर। अब कार्यक्रम में समय है आपको एक गीत सुनवाने का। गीत के उस पार फिर चर्चा होगी।

ओटीपी या पिन किसी को भी फोन पर ना बताएं। दूसरी बात कि मोबाइल पर आए किसी भी संदिग्ध लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें, चाहे वो किसी भी प्रकार का इनाम जीतने की कोई योजना हो, केवाईसी अपडेट की कोई योजना हो, ये सारी चीज़ें, ये सारे लिंक आपको अवॉइड करने हैं। तीसरी बात, अपने मोबाइल और बैंकिंग ऐप्स में मजबूत पासवर्ड रखें और उनको समय समय पर बदलते रहें। और अगर आपके साथ कोई साइबर ठगी हो जाए तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 1930 पर शिकायत करें। दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी हमें बड़ी परेशानी से बचा सकती है। डिजिटल दुनिया का फायदा उठाइए, लेकिन समझदारी और सतर्कता के साथ। तो बस आज का कार्यक्रम हमें यहीं समाप्त करना होगा। और हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये अपना फीडबैक आप हमें ज़रूर दीजिए। और हमारा पता है, नई उड़ान द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी लखनऊ, 18 विधानसभा मार्ग, पिन कोड है हमारा 226001। तो आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी शोभित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

दोस्तों, इस गीत की समाप्ति के साथ कार्यक्रम का समय भी अब समाप्ति की ओर है, लेकिन कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे। वो ये कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोबाइल और इंटरनेट हमारी ज़रूरत बन चुके हैं, ये हम सभी जानते हैं। चाहे बिजली का बिल भरना हो, बैंक का कोई काम करना हो, टिकट बुक करनी हो या बच्चों की पढ़ाई फीस, हर काम अब ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन सुविधा के साथ एक बड़ा खतरा भी तेज़ी से बढ़ रहा है और वो है साइबर ठगी का। आजकल ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। कभी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर के वो फ़ोन करते हैं, तो कभी किसी लिंक को क्लिक करवाकर मोबाइल का पूरा डेटा चुरा लेते हैं, और कई लोगों के बैंक खाते से तो कुछ मिनटों में ही पैसे ही गायब हो जाते हैं। तो आखिर अब बचना कैसे है? देखिए, सबसे पहली चीज़ है अपनी बैंक डिटेल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान मीडियम वेव के मीटर पर या आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
4: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
1: 8700014242।
4: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान। विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

श्रोताओं, आपको एक बार फिर बता दें, आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का आनंद आप ले सकेंगे आज रात 10 बजे से। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर, जिसे प्रस्तुत करेंगी सुमोना एसपांडे और नीना सोनकर। मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 6:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन देशस्य द्विदिवसीय यात्रायां गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्तवान्। सह स्वीडन देशस्य
0: प्रधानमन्त्रिणा उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन सह व्यापार हरित परिवर्तन एआई तथा रक्षा क्षेत्रेषु सहकारस्य समीक्षायै वार्तालापं करिष्यति। भारत नीदरलैंड्स देशौ द्वैपाक्षिक संबंधान सामरिक सहभागित्वेन वर्धितवन्तौ। प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहयोगं सुदृढं कर्तुं 17 संधिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। होर्मुज जलसंधौ वाणिज्यिक नौकायानस्य उपरि आक्रमणानि अस्वीकार्यानि इति भारतेन निन्दितम्। कांगो युगांडा देशयोः इबोला प्रकोपः अंतर्राष्ट्रीय चिंतायाः सार्वजनिक स्वास्थ्यापत्कालेति विश्व स्वास्थ्य संघटनेन घोषितम्। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य श्रेयांसी वाल्लिसेट्टी इत्येषा बावोजी चाइना मास्टर्स स्पर्धायां महिला एकल क्रीडायां रजत पदकं विजितवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्तवान्। नीदरलैंड्स देशस्य स्वीयां यात्रां समाप्य असौ अद्य सायंकाले स्वस्य पञ्च देशानां यात्रायाः तृतीये चरणे स्वीडन देशं सम्प्राप्तवान्। स्वीडन देशस्य स्वीयायां द्विदिवसीय यात्रायां श्रीमोदी अद्य स्वीडिश प्रधानमन्त्रिणा उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा द्विपक्षीय संबंधानां सर्वेषां पक्षाणां समीक्षापि विधास्यति। उभयोः पक्षयोः व्यापारः हरित परिवर्तनं कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप्स सुदृढ आपूर्ति श्रृंखलाः रक्षा अंतरिक्षं जलवायु परिवर्तनं जनसंबंधाश्च इत्यादिषु सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् अन्वेष्टुम् अपेक्षास्ति। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ उर्सुला फॉन डेर लेयन इत्यनया यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षया सह मिलित्वा यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलनम् अपि सम्बोधयिष्यतः यत् प्रमुखम् अखिल यूरोपीय व्यापार मञ्चम् अस्ति। स्वस्य द्विदिवसीयायाः नीदरलैंड्स देशस्य यात्रायां प्रधानमन्त्री श्रीमोदी स्वस्य डच समकक्षीयेण सह द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। उभौ देशौ रक्षा महत्वपूर्ण खनिज तथा अन्येषु प्रमुख क्षेत्रेषु सहयोगं सुदृढीकर्तुं 17 संधिपत्राणि हस्ताक्षरितवन्तौ। उभौ नेतारौ पश्चिम एशिया देशस्य स्थितेः तथा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति व्यापारस्य उपरि तस्य प्रभावस्य विषये गभीरां चिन्तां प्रकटितवन्तौ। सामाजिकान्तर्जालीये पटले लिखिते सन्देशे श्रीमोदी उक्तवान् यत् नीदरलैंड्स देशस्य तस्य यात्रा द्विपक्षीय संबंधान नूतने स्तरे नेष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई मासस्य 31 दिनांके आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे देश विदेशस्थ जनैः सह विचार विनिमयं करिष्यति। इदं हि मासिकस्य रेडियो कार्यक्रमस्य 34th संस्करणं भविष्यति। जनाः नमो ऐप इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे माई जी ओ वी ओपन फोरम इत्यत्र अथ च

0: भी उक्तम यत अयम प्रकोपः इबोला विषाणुः दुर्लभेन बंडिवुग्यो प्रभेदेन संबद्धः अस्ति यस्य कृते अधुना किमपि स्वीकृतम् उपचारः उपवा उपलब्धः नास्ति। इबोला रोगः शरीर द्रव संस्पर्शेन प्रसारं करोति तथा च गभीरां प्रायः प्राणघातिनीं च व्याधिं जनयितुं शक्नोति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य श्रेयांसी वाल्लिसेट्टी इत्येषा बाबोजी चाइना मास्टर्स स्पर्धायां महिला एकल क्रीडायां रजत पदकं विजितवती। अद्य नेपाल देशीया पर्वतारोही कामी रीता शेरपा इत्येषा द्वात्रिंशत् वारं माउंट एवरेस्ट शिखरम आरुह्य ऐतिहासं विरचितवती। 58 वर्षीया एषा पर्वतारोही विश्वस्य उच्चतम शिखरं सर्वाधिक वारं आरोहणस्य स्वकीयमेव कीर्तिमानं पुनः आरेखितवती। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। शाम के 6:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी।

0: पंचो जय हिंद।
1: अभिषेक भैया,
0: हाँ सुनील भैया,
1: देखो घाम बहुत तेज से हो रहा है और जब तेज घाम होते और बयार चला थे तो बिल्कुल गरम गरम लागत है
0: भैया। सुनील, यू जो जेठ महीना है ना, यो तपायो वाला महीना देखो शुरू हो चुका है।
1: बिल्कुल,
0: काहे से ने इतना घाम हो रहा है और घर से जो निकल लो दोपहरिया में यहाँ तो जल भुन के आई हो।
1: बिल्कुल, जैसे लगा था कोई चेहरे के ऊपर अंगार मार रहा है।
0: बिल्कुल भैया,
1: तो ऐसे में यहाँ जब घर से बाहर निकलो तो अपने चेहरे के ढक के यहाँ निकलो और खूब सारा पानी पी के निकलो, साथ में पानी लेके भी निकलो। काहे से स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ भी नहीं है।
0: बिल्कुल सुनील भैया, देखो तमाम तन की चीजें अगर हम छोटी छोटी चीजें ध्यान रखब तो जो ये लू है या गर्मी है इतने बच सके थे। जैसे आप कहो पानी पिए के बाद अगर कबो कबो तो प्यास ना ही लागत है तबू हमका इस समय जो इस समय चल रहा है हमका थोड़ा थोड़ा पानी पियत रहक चाहे, या और भी कोई समय जैसे छाछ है, मट्ठा है, या कोनो भैया शरबत नींबू वाला अपना एक पील है,
1: नारियल का पानी, बेल का शरबत, साथ में जो है सेवा भी बहुत अच्छा विकल्प है जो अपने शरीर की तासीर का बिल्कुल ठंडा राखत।
0: और भैया घर से निकलो तो छतरी ले लो और आंखिन में चश्मा लगा लो जिसे भाई आप बच सकत हो। और संगे जैसे हरा गोरु अगर बांधे हैं तो उनका छाही वाली जगह पे बांध दो जिससे उनका गर्मी ना लगे। तो ये सब चीजें हम कही के हम अपन बचा सके तो ना हरा गोरु के यहाँ गर्मी तेने बचा सके।
1: बिल्कुल, और ये सब चीजन में बिल्कुल चूक ना हो चाहिए, और काहे से अगर चूक हो गए तो फिर दवा इलाज करे पड़ी।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: है ना।
0: और देखो भैया, दवा इलाज इतना महंग हो चुका है।
1: हाँ
0: भाई, जैसे जैसे जौन अपन तरक्की हुई रही है वैसे वैसे उनकी सबकी तरक्की है, ऐसी ऐसी बीमारी आ जाती हैं तो वहाँ बीमारी हजार रुपया पैसा और दवा की भाई जरूरत पड़ता है।
1: बिल्कुल भैया, तो जैसे देखो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना हवे तो तमाम जगह पर जो है जो दवाएं की दुकानें हैं वे खुली हुई हैं, और इका मुख्य रूप से उद्देश्य यह हवे कि जो पंच भाई हैं,
0: हाँ,
1: जो आम जन मानस है,
0: हाँ,
1: ऊपर जो उनके पास सरलता से सुलभता से दवा उपलब्ध हो सके।
0: बिल्कुल सुनील भैया, देखो
1: बिल्कुल, और भैया जो दवाएं जो प्राप्त हुई थी
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: वो जो है WHO की जो हेल्थ स्वास्थ्य संगठन है
0: हाँ।
1: प्रमाणित हुई थी हैं,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: इस पर जो है विशेष तरह का छूट और लाभ भी मिला थी।
0: बिल्कुल, और याद रखो सुनील भैया योजना बनाए है एक बद गए है कि गरीब से गरीब पंच तक दवा की सुविधा या कोनो ऑपरेशन है तो जो सर्जिकल सामान हुए उनका सस्ते दर पर मिल सके। कि काहे से इतनी महंगाई है वैसे में है सरकार अपन ये सोचिस है कि हर कोनो गरीब पंच भाई को कोई दिक्कत इलाज ना हो चाहे, तो वहाँ भैया 50% ने 90% तक का सस्ती दवा और अच्छी दवा अपने पंचन के यहाँ मिलत है और सब पंच भैया इसका लाभो ले रहे हैं। और अगर कोनो नहीं ले रहे हैं तो हम भैया बता रहे हैं कि आप जगह जगह पर 1-2 किलोमीटर के अंदर पर हर जगह जगह पर भाई ई प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत स्टोर खुले हैं।
1: बिल्कुल,
0: वहाँ जाए के आप सस्ती और अच्छी दवा ले सकते हो, अपन इलाज करा सकते हो।
1: बिल्कुल भैया, और ई योजना का लाभ उठा सकते हो
0: भैया।
1: और इसके अलावा भैया आज जो है विश्व

0: दूर संचार और सूचना समाज दिवस भी है। तो क्या कहा था ना कि संचार के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से नहीं, हम पंच सब कोई जुड़ित है, जिसका कहा
1: हाँ
0: थे कनेक्ट हुई थे, तो
1: बिल्कुल
0: उका भी लाभ मिला थे। और इसके अलावा जो है तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो तकनीकी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, तो इका जो प्रयोग करे तो सकारात्मक रूप से करे, ताकि इका लाभ पूर्ण रूप से मिल सके।
1: बिल्कुल। और देखो सुनील भैया, ये जो विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस है, इका मनावे का जो है मकसद यह है कि जो आम जनमानस है इनका अंतरजाल मतलब इंटरनेट और नई नई तकनीक जैसे AI भैया आ रही है, आर्टिफिशियल
0: बिल्कुल
1: इंटेलिजेंस, इनते सबका भैया जोड़े का उनका समझे और अमीर गरीब के बीच में जो एक
0: फासला
1: जिसका
0: है, बिल्कुल
1: फासला है जो इंटरनेट वाला, इसे उनका जोड़ के उनके बारे में जागरूक करे कि यहाँ है, तो यूं मकसद यह है ये दिवस मनावे का दिन।
0: बिल्कुल। और दूर संचार के माध्यम से जो है तमाम तरीके के विकास हो रहे हैं, नई नई तकनीकी निकल के यहाँ सामने आ रहे हैं,
1: हाँ
0: तो उसे अपन देश जो है बहुत निरंतर प्रयास जो है विकास की तरफ बढ़ रहा है, और एक दूसरे के माध्यम से भी संपर्क बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल सुनील भैया, देखो आज के जो जमाना चल रहा है ऐसे में यहाँ हम मोबाइल से इंटरनेट से और ये सबसे दूर ही बनाए नहीं सकित हैं, और
0: बिल्कुल नहीं,
1: अगर कहूँ बनावे कोशिश आप करबो करियो तो पीछे रह जी हो।
0: बिल्कुल कहूँ ना कहूँ विकास से नहीं जो है पीछे हुई जी हो।
1: हाँ बिल्कुल, तो
0: बिल्कुल
1: अगर
0: भैया।
1: हमका सबसे कंधा मिलाक चलक है तो नई नई तकनीक और टेक्नोलॉजी केरे साथ में हमका चलक परी,
0: और उके बारे में जानकारी राखे परी।
1: बिल्कुल जानकारी जरूर रखे परी
0: बिल्कुल
1: भैया।
0: भैया। और साथ में जानकारी यह है कि आज है दिन इतवार।
1: हाँ
0: हाँ, तो इतवार के दिन जो है चूंकि खास दिन है, और जो है ये दिन हम पंच यह कोशिश करिए थे कि अपने श्रोता पंचन के लिए खास चीज़ भी लेके आई जाए।
1: भैया सुनील सब पंच भैया इंतजार करते हैं कि भाई इतवार वाले दिन कुछ न कुछ बढ़िया अवधि कविता पाठ या कहानी पाठ भैया लोग सुनी
0: तो
1: है।
0: बिल्कुल ही इंतजार पर ही उम्मीद पर हम पंच खरे उतरित भी है, और
1: हाँ
0: पूरी मेहनत के साथ जो है बैठकी में आवाज आते
1: तो
0: हैं। तो
1: आज का
0: आज
1: है
0: बिल्कुल आज लोक भाषा कवि गोष्ठी है, और इमा जो प्रतिभागी कवि हैं वो हैं समरजीत सिंह काग भैया, साथ में यहाँ हैं देवकी नंदन यादव नंदन भैया, और साथ में यहाँ हैं राघवेंद्र नाथ त्रिपाठी भैया जो कि का संचालन कर रहे हैं। तो तमाम तरीके की रूपनमा या रंगी है या कवि गोष्ठी, और इमा जाना जाए कि का चीज़ें जो है बहुत सहजता के साथ इका बतावा गवा है, सुनावा गवा है। तो चलो सुना जाए और आनंद लीन जाए।
1: सुना जाए भैया या लोक भाषा कवि गोष्ठी।
2: आज के जौन लोक भाषा कवि गोष्ठी आयोजित कीन गए है, यहाँ माटी के रचनाकार देवकी नंदन यादव नंदन दादा बैसनखेड़ा मौरावा जिला उन्नाव से, और समरजीत सिंह काग दादा हलियापुर सुल्तानपुर से, और हम राघवेंद्र नाथ त्रिपाठी तिवारीपुरवा महसी बहराइच से उपस्थित हन। गोष्ठी के शुरुआत बैसनखेड़ा मौरावा जिला उन्नाव से आए हुए दादा देवकी नंदन यादव जी से हम निवेदन करी थे कि आप अपन कविता सुनावा जाए।
3: हम पहल रचना सुनाए जा रहे हैं।
4: स्वागत है भैया।
3: कहूँ कहूँ ख्यातन हरियाली अब कस कहे हवे, मेथा ऊख मकई चरी खूब सुहात है,
2: वाह
3: बैठ के निरावे घास हरहन का खवावे खूब, दूध बेच दूधहा हाथ रकम भी कमात है,
2: वाह
3: फसलन का देख दुख भरता देखियन का, ऐसन बागवानी देख जीव लहलहात है, प्यार दशहरी लखनऊआ पपीता केरी
2: हाँ।
3: जमुनी ब्याल कटहल देख मन ललचात है।
2: वाह वाह।
3: दूसरी रचना विधा बदल रही है
2: हाँ।
3: गाँव

0: काम करे मजदूरन की मजदूरी लगी है, चमके बिजुरी ना ध्यार कहूँ।
1: हाँ।
0: और पानी

0: है। पानी की टोटी मुहार लगी, बिजली चमके उजियार भयो है। अरे गलियां यरुमा रगनी की बने, हर हा सब द्वार न पास बंधे है।
1: वाह वाह।
0: घर हु कया गाड़ी पिछाड़ी लगे, बहु प्यार फरे छाया पसरी है। बंजर धरती खेतारो बनी, उपजे तनाज चढ़ा ऊपरी है। पानी लभा लब ख्यात भरो, नहीं लूक लगे पुरवैया खरी है। मजदूर चले यो किसान हुए, धिग दूध बिके सहरू डेरी है। भूखा न को सरकारी यो जमाना लागी, दुआ दवा अस्पताल फ्री हुमा मिलते है। गैसन पर छूट मिले खुशहाल ऐसन देश, चाहे जहाँ जाव साधन गावन तक मिलते हैं। कैसन जमाना मोबाइल क्या रे आवाम भैया, बुढ़वा जवान नारिन तक फुर्सत ना पावत है। पाछली पीढ़ियों का सबिया ज्ञान यही माँ भरा, घर बैठे देखो कतहू जाय ना परत है। जौन चाहो सब कहानी मिल जाए यही माँ, कैसन यो ख्वाज साजे जन जन को भावत है। तमाम नी की बातें छिन मैया मिल जाए, अब नकार नुक्यार तांता लाग जौन जौन चाहत है।
1: देवकी नंदन यादव नंदन दादा के कविता पाठ सुना जात रहा है। अब हम हलियापुर सुल्तानपुर से आए हुए दादा समरजीत सिंह काग जी से निवेदन करी थे कि आप अपन कविता सुनावा जाए।
2: पंच साहिबो राम राम। आपन कविता दोहा से शुरू करता हन।
3: स्वागत।
2: अवधि है, कृषि संबंधित है, नई नई रीत रिवाज चलती है, खोज होती है।
1: हाँ।
2: कृषकन भैयन से करो
1: हाँ।
2: कुशल छेम कई रीत
1: हाँ।
2: सुना करो बने रहो कृषि गुनियन से प्रीत।
1: वाह।
2: खेती माँ भैया कबो लाग न पाए ला
1: हाँ।
2: चला करो पकड़े रहो नई नबेली राह।
1: वाह।
2: लोकाय तन तोहरन बरे भाई चलावा जाए, खेती कई सब ज्ञान दई गीत गौनई गाए। अजे क्यों माटी खेत कह कर वाइस ना जांच
1: हाँ।
2: करत किसानी बा भले ऊ किसान ना सांच।
1: बहुत अच्छा।
2: माटी भल जचवाई के
1: हाँ।
2: असल चक्र अपनाए
1: हाँ।
2: बीजो बोवै सोध के झूठे ना अपनाए। कृषि वैज्ञानिक जस कहें वैसन पानी दे, खाद दवाई छीट के उपज दुगुनी लिए। कृषक तो होबे करो मूल कर्षक के आए
1: हाँ।
2: कुंडलिया पढ़बे अहन सुनो ध्यान से भाई। छाला घेटा हाथ मा छाला घेटा हाथ मा और बवाई पाओ, जाड़ा गर्मी सह सके सहाय घाम वो छाओ
1: हाँ।
2: सहाय घाम वो छाओ तीर्थ सब समझे खेती
1: हाँ।
2: माना करे बबूत खेत के गर्दे रेती।
1: बहुत खूब।
2: चंदन माने रेत लपेटे भोला भाला
1: हाँ।
2: कागे सफल किसान हाथ मा जकरे छाला।
1: क्या कहना, बहुत नीक है। का वाह वाह।
2: अब जो रचना पढ़े जात हन उ आवे वाला समय खरीफ का है, धाने की बुवाई करे का है, नई विध अपनावे का है।
1: वाह सुनावा जाए।
2: पानी बरसत भाई बा गए खरीब निक चाए, हुत बरकनी खियत का झूरे दियो जोताए
1: हाँ।
2: और धान लगाऊना छोड़ के दियो रसौती बुए, लागत आधे पै रहे उपज बराबर हुए
1: हाँ। वाह वाह।
2: DSR मशीन से कूड़न बोवा जाए
1: हाँ।
2: और तीसरे दिन खरकाए दवा
1: हाँ।
2: घोर दिए बिथराए।
1: वाह वाह वाह वाह।
2: कृषि गुनिया नवरीत का
1: हाँ।
2: कृषि गुनिया नवरीत का
1: हाँ।
2: खूब लिहिन अजमाए
1: हाँ।
2: लोकायतन सुनिशान के काग्यो रहे बताए।
1: बहुत सुंदर है।
2: तो जल जीवन बा सब प्राणी के
1: हाँ।
2: आरु पेड़न पौधन के जीव पानी
1: हाँ।
2: और नदी नारे तलाव संज

0: होए रहो
1: हाँ।
0: सिर जाओ अपनो सिर जाओ पानी
1: हाँ।
0: किस को जल कै छिड़काओ करो
1: हाँ।
0: और फसल न चाहे पौना रहो पानी
1: हाँ।
0: और प्रदूषण से जल का बचवो
1: हाँ।
0: और घट जाते या है सिर जाओ सब पानी।
1: बहुत सुंदर है वाह।
0: फसलों का चही पशुओं का चही
1: हाँ।
0: हमहू तुमहू कहाँ चाहत पानी।
1: हाँ।
0: अपना के बरे जल वायु चाहे फिर साफ वायु चाहत पानी। मूल गंध भरी जल वायु है हम ही तुम ही दुर्गंधित पानी। और अपने अपने मन ठान लियो नहीं काटो वो पेड़ न सोखो वो पानी।
1: हाँ।
0: और पंचो फिर कही हटे न पावे ध्यान
1: हाँ।
0: घोपा मा जे सोईगा ऊना आई किसान। खुरपा खुरपी हासिया दिखे हाथे लाग
1: हाँ।
0: फरुआ छाणी कुदार ले जुटा उजे ना भाग।
1: हाँ।
0: तो पानी पुपुहा के गिरे लाग न पावे बिंस लौ निहार संग लाग के जो गैलिए जे जिंस। और फसलन का सहराई के हसमुख होई बतलाए तनिका भय मिठू आए के चूमियु चाटी मयाए। प्यासी भूखियु बूझ के देवे पानी खाद और निर्वाही कही के करे फसल पौध आजाद। सनई ढैचा बोई के जे बोवे उदन माटी बलित होई रखे बहुत उपजे अम। खेती बगिया के सगे गोपालन कै रीत अपना वै जे प्रेम से कबौ न भस कै भ्रीत। और बिना बाहरी आवकी के ना हुए उदास खिर्ची मिर्ची बोई के आपन करे सुपास। और घर के जन जन के बिना डटे लगाए हाथ अकियल करे किसान ना के ऊंच न हुई मात।
1: अभी तक आप लोग समरजीत सिंह काक दादा के कविता सुना जात रहे। अब हमरो मन है कि हम आप लोगन कहाँ अपन कुछ रचना सुनाई। इस समय हिंदी महीना जेठ के चलत है और किसान भाइन का करे का चाहिए एक छंद सुना जाए।
2: स्वागत है भी।
1: कि बैसाख जेठ के दुपहरी तपे तो बंधु बैसाख जेठ के दुपहरी तपे तो बंधु माटी के पलट हल से करो जोताई। बैसाख जेठ के दुपहरी तपे तो बंधु माटी के पलट हल से करो जोताई। और कौन मेल का बनाए और धान बीज लाए कौन मेल का बनाए और धान बीज लाए समयानुसार करो ब्याल की बुआई। तो दूब घास का गोड़ाए खाद पास पहुँचाए पाए मानसून करो धान की रोपाई। दूब घास का गोड़ाए खाद पास पहुँचाए पाए मानसून करो धान की रोपाई। ओ कीटन दवाई डारी तक नीक नीक धारी खूब अन्न उपजावो हो किसान भाई। खूब अन्न उपजावो हो किसान भाई। तो अन्न उपजाओ साथ साथ माँ कृषक भाई परती जमीन में यहाँ बीरवा लगाओ। ओ बारी व बरुली कहीं ज्योति गोड़ी रूधी बांधी किचन प्रयोग हेतु सब्जियां उगावो। तो भारतीय स्वच्छता मिशन धरी ध्यान बंधु आस पास के समूल गंदगी भगावो। और राघवेंद्र एकमात्र कविता के सार अंश पर्यावरण बदी जागवो जगावो। तो पर्यावरण गर साफ सुथरा रही तो पर्यावरण गर साफ सुथरा रही तो तन मन सती रोग दोख भाग जई हैं। और बिरवा लगाए सती फल फूल मिली और बढ़ई विभिन्न फर्नीचर बनई हैं। तो गाय भैंस आदि के दुधारू जातियां रही तो गाय भैंस आदि के दुधारू जातियां रही तो गांव गांव गली गली गोकुल देखई हैं। गाय भैंस आदि के दुधारू जातियां रही तो गांव

गली गली गोकुल देखी हैं, तन मन धन से समृद्ध लोग रही हैं, तो विश्व महाभारत ये मान का बढ़ी हैं। और आजकल हम देखी थे कि व्यस्तता के युग में अगर स्नेह के मात्रा कहूँ देखे का मिलत है तो वह गाँव में है। हमारे एक सवैया इपर देखा जाए गावन के प्रगति भय है कि घूमत है हर और ट्रैक्टर, खेतन माकम पान खड़े हैं, और मिलन मिलन खाद बिके अरु बीजन के भंडार बड़े हैं। तो नाशक कीट मिले गलियारन, नाशक कीट मिले गलियारन, मारक घास हजार पड़े हैं,

0: उप जय अन मानो सितार जड़े हैं। आजकल के आप लोग दृश्य देखा जाए गावन में कैसा है कि महामई छवि जात बखानी न बालन मातवर ही अटकी है, कि महामई छवि जात बखानी न बालन मातवर ही अटकी है। और तन मातर भूज परे अरुपातन मा ककरी भटकी है। तो चाल करैलन मस्त बड़ी, चाल करैलन मस्त बड़ी, खरभूजन ने मिश्री गटकी है। चाल करैलन मस्त बड़ी, खरभूजन ने मिश्री गटकी है। ओ नीबन फूल सफेद लदे अरु आंबन मा अंबिया लटकी है। आज के लोक भाषा कवि गोष्ठी मा बैसनखेड़ा मोरावा जिला उन्नाव से देवकी नंदन यादव नंदन दादा और हलियापुर सुल्तानपुर से समरजीत सिंह काग दादा और तिवारीपुरवा महसी बहरेज से हम राघवेंद्र नाथ त्रिपाठी कविता पाठ कीन है। आज के कवि गोष्ठी आप सबका कस लाग है। आप सब चिट्ठी चपाती के माध्यम से सूचित जरूर किया जाए।
1: सुनील भैया,
2: हाँ अभिषेक भैया,
1: इतनी बढ़िया लोक भाषा कवि गोष्ठी,
2: जिमा
1: गांव घर खेत खलिहान पर्यावरण का जोड़त भय, इतनी नीक कवि गोष्ठी रही। एक एक खातिन समरजीत सिंह काग भैया का, देवकी नंदन यादव नंदन भैया का और संचालन करे राघवेंद्र नाथ त्रिपाठी भैया का बहुत, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद बिल्कुल भैया। और देखो अभिषेक भैया, जेठ का महीना चल रहा है, खूब तेज से तप भी रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: ऐसे में यहाँ जो है अपनी खेती पाती पर जो है विशेष रूप से ध्यान देके जरूरत
1: ध्यान देख जरूरत है सुनील भैया। और इस समय सबसे बढ़िया काम यू है कि जेठे महीना में यहाँ खेत जो खाली पड़े हैं उनका जुतवाए के पलटवाए दे।
2: बिल्कुल भैया, इससे यू लाभ हुई कि हम जैसे हम पंच अपन अगली फसल जब मैं बोईबे तो खर पतवार जो है कम होने की संभावना रही। अच्छा एक बात और है भैया, अपन कुछ किसान भाई जो है धान के बेढ़ के भी तैयारी करे लागे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे समय यू बहुत उपयुक्त है कि धान की बेढ़ की तैयारी मतलब धान की नर्सरी अपन तैयार कर लें जाए, जिससे समय हो मानसून आवे पानी बरसे उसे पहले तैयार हो औते अपन लगाए दें जाए।
2: बिल्कुल भैया, और साथ ही साथ में देखो अपन जो सरकार है तमाम दिन की योजनाएं लेके आवत है, उससे जो है अपन किसान भाई लाभान्वित होते हैं। और एक चीज जरूर है कि किस जो है अपनी सरकार मोटे अनाजन की तरफ भी खूब बढ़ावा दे रही है, ध्यान दे रही है, और यू जो है किसान पंचन का भी प्रेरित कर रही है कि मोटे अनाज की खेती पाती करके आप उससे ज्यादा लाभ भी कमा सकत हो।
1: बिल्कुल सुनील भैया, और यह कहते देखो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन।
2: बिल्कुल,
1: यू मिशन चलाया जा रहा है जिमा चावल है, गेहूं है, दाल है और मोटे अनाज और जिमा ज्यादा पोषक वाले अनाज है उनका उगावे खातिन इका जो है एक मिशन चलावा जा रहा है कि ज्यादा ज्यादा ये पैदा हुए और कोनो भैयापन भूख न रहे और कम लागत में यहाँ ज्यादा ज्यादा मुनाफा ले सके, ज्यादा ज्यादा आमदनी उनकी बढ़ सके।
2: और साथ साथ में यहाँ ये जो मोटे अनाज है तो पूर्ण रूप से नहीं जो है पोषण तत्वन से भरपूर होते हैं। हाँ, इमा लागत कम लागत है लेकिन इका लाभ कई गुना ज्यादा मिलत है।
1: बिल्कुल,
2: अपने शरीर का भी और साथ में आर्थिक रूप से भी संपन्न और मजबूत बनावत है।
1: हाँ, सुनील भैया, तो, और देखो इमा इमा फायदा यू होते किसान पंचन का सब्सिडी मिल जाए, चाहे वो बीज हो चाहे कोनो अपन कैसे यंत्र लेना चाहते हो इमो तमाम तन की छूटे मिलती है।
2: बिल्कुल भैया, खाद पास जो है छूट मिलती है, जैसे बोरिंग कराना है तो तमाम ऐसी जो कृषि

0: अंधी जरूरतें होती हैं,
1: हाँ।
0: तो उमा तमाम इनकी सब्सिडी भी मिलत है।
2: और सुनील भैया, एक इस समय बहुत जरूरी अपन किसान पंचन की है कि वो अपन जो है किसान रजिस्ट्री या फार्मर आईडी जरूर बनवा लें।
0: बिल्कुल भैया, जो लोग ई का प्रयोग करी है वह पंच भाई किसान भाई ई का लाभ उठा पाई।
2: हाँ, तो देखो भैया, एक किसान एक आईडी और योजना सबई, वह एक आईडी तेने सब योजना के जितने किसान पंचन के जोनी जोनी योजना मिलती हैं वो एक ही आईडी से सब मिल सके थे, चाहे उनका वो केसीसी कहा थे ना,
0: बिल्कुल किसान क्रेडिट कार्ड, हाँ।,
2: हाँ या फिर कोनो भैया कुछ चीज देखक हुए कि हमार कैसे पैसा आ रहा है, जो किसानी वाला भैया आवत है साल में 6,000,
0: बिल्कुल
2: वही से आराम से मिल जाते हैं।
0: और साथ में यहाँ भैया, जैसे मान लो अपनी फसल में यहाँ कोई प्रकार का जो है दैवीय आपदा हुई गई है या कोई इनका नुकसान हुई गया है, तो जो या योजना है या जो किसान पंच भाई के लिए सरकार लेके ही है बहुत कारगर साबित हो रही है, और या जो हान होते इसकी भरपाई करे कोशिश भी इसके माध्यम से।
2: तो भैया यू एकदम फ्री है, यू कार्ड पंच भैया जरूर बनवाओ में अपन कृषि विभाग तेने आसपास या कोनो जो उन सेंटर होते हैं वहां जाके अपन फार्म वार्म भर के या योजना का लाभ जरूर बनवाए या आईडी किसान पंच भैया जरूर बनवा ले, जिससे बहुत लाभ मिले हैं।
0: बिल्कुल, एक साधारण सा काम करे है कि अपन जो है आईडी लग जाए और जो अपने खेती पाती के जो है खसरा होते हैं खतौनी होते हैं इसके माध्यम से जाए कहीं अपना जो है आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किसान भाई का लाभ उठा सकते हैं
2: और भविष्य में कोनो योजना जो नहीं अगर आवे वाली है उनको लाभ डायरेक्ट सीधे मिल जाए, कहूँ भागे दौड़क नहीं पड़ी।
0: बिल्कुल।
2: और भैया देखो, आज इतवार जैसे रहे तो आज के दिन आवत है अपने कार्यक्रम में सफलता की कहानी।
0: बिल्कुल,
2: तो का है सफलता की कहानी आज बताए।
0: बिल्कुल भैया, आज जो सफल किसान के रूप में हम ढूंढ कर लेके आए हैं वही जो है अपने बीच है कुशल पाल तिवारी भैया, जो गन्ना की खेती कर रहे हैं, उमा नवाचार का प्रयोग करी है और साथ में आपन आर्थिक जो इस तरह का कैसे मजबूत करनी है तमाम दिन की जानकारी देनी है और इनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो चलो सुना जाए सफलता की कहानी गन्ना उत्पादन।
2: बिल्कुल भैया।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, सफलता की कहानी क्रम में आज हमारे साथ हैं गोंडा जनपद के रुपईडी ब्लॉक के उसरैना गाँव के प्रगतिशील किसान कुशल पाल तिवारी भैया। स्वागत है कार्यक्रम में कुशल पाल तिवारी भैया, आप गन्ना उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
4: नमस्कार डॉक्टर साहब और सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरी पढ़ाई अपने वहीं पास के एक इंटर कॉलेज गंगा प्रसाद मिश्रीलाल इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट तक हुई। उसके बाद में जैसे गाँव के बहुत से लोग होते हैं बेरोजगारी की तरफ शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो हमारे भी मन में आया, लेकिन अपने पास कुछ ज़मीन थी और मैं आकाशवाणी से जुड़ा रहा हूँ, इसके कार्यक्रम को सुनता रहा हूँ, तो आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुन करके मुझे ये लगा कि कहीं इधर उधर भागने के बजाय अगर अपने घर पे रह के अपनी धरती माँ की सेवा करके खेती करके भी जीवन यापन किया जा सकता है, तो सर मैंने 1990 से खेती करना प्रारम्भ किया।
3: यानी लगभग 35-36 साल हो गया खेती से जुड़े। कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
4: डॉक्टर साहब, मेरे पास 7 एकड़ जमीन है।
3: 7 एकड़?
4: जी।
3: तो 7 एकड़ में पूरे साल का फसल चक्र क्या अपनाए हैं?
4: डॉक्टर साहब, इन 7 एकड़ में मैंने 5 एकड़ गन्ना लगा रखा है।
3: यानी मिठास की फसल उगाती
4: है। जी जी, क्योंकि गन्ना ऐसी चीज है डॉक्टर साहब कि ये किसानों की गरीबी को दूर करने वाली फसल है।
3: जी।
4: नगदी फसलों में वैसे तो बहुत हैं, सब्जियां हैं, सुगंधीय फसलें हैं, लेकिन फिर भी गन्ना जो है ये मेरे हिसाब से मेरे लिए नगदी फसल है।
3: एक मुश्त पैसा मिल जाता है।
4: जी जी।
3: 5 एकड़ मिठास की फसल हो गई, 2 एकड़ जमीन जो बची उसमें क्या क्या करते हैं?
4: डॉक्टर साहब, उस 2 एकड़ जमीन में हम खाद्यान्न, गेहूं, धान हुआ, सरसों हुआ, आलू हुआ, और अपने घर के प्रयोग के लिए जो अन्य सब्जियां और मसाले जैसे लहसुन हुआ, प्याज हुआ, ये सब करते हैं।
3: तो मुख्य रूप से आप गन्ना उत्पादन से जुड़े हैं, आपके बगल में चीनी मिल भी है।
4: जी।
3: तो गन्ना पैदा करना और उसको मिल तक पहुंचाना आसान भी है आपके लिए?
4: जी सर, आसान है। अब जैसे समय समय पर पर्चियाँ मिल जाती हैं, पर्चियाँ के हिसाब से उनको मिल को सप्लाई कर दिया जाता है, और हमारे वहाँ की चीनी मिलें बेहतर ढंग से भुगतान भी करती हैं।
3: तो ये खुशी की बात है। ये बताएं कि कौन कौन सी प्रजाति का गन्ना आप अपने खेत

0: पर 5 एकड़ में लगाएं?
1: डॉक्टर साहब, हम जो ये गन्ना लगाए हैं उसमें कोलक 14201
0: जी,
1: ये 2 एकड़ में है, और सीओ 15023
0: हाँ,
1: ये हमारा 1 एकड़ में है, और उसके बाद में CO0118 जो है
0: हाँ,
1: वो हमारा सर 1.5 एकड़ में है, और अभी सर ये जो CO238 था ये गन्ना रोग ग्रस्त हो गया है, लेकिन इस उम्मीद में कि आगे चलकर हो सकता है कोई दवा बने या किसी तरीके से इस रोग को कंट्रोल किया जाए तो इसका बीज रहे, तो हमने 0.5 एकड़ में उसको भी लगा रखा है, और भगवान की कृपा से गन्ना ठीक ठाक रहा सर, रोग कोई नहीं लगा।
0: यानी 0.5 एकड़ CO238 इसलिए छांट बरा के लगाए हैं कि आपकी फसल स्वस्थ है
1: जी।
0: तो जो भी गन्ना लगाते हैं शरदकालीन या बसंतकालीन?
1: डॉक्टर साहब, शरदकालीन भी गन्ना लगाया जाता है। शरदकालीन जो गन्ना लगाते हैं उसमें गन्ने के साथ में कोई ना कोई एक फसल की सह फसल कर लेते हैं,
0: जैसे
1: जैसे पीली वाली सरसों हुई
0: हाँ,
1: और चना, आलू भी थोड़ा उसमें लगा लेते हैं
0: जी, अपनी जरूरत के हिसाब
1: से, वही जरूरत के हिसाब से।
0: और बसंतकालीन?
1: बसंतकालीन गन्ने में उसमें भी सरसा फसल की जाती है, उसमें उड़द कर लेते हैं, और उड़द के साथ साथ में अपने जरूरत के हिसाब से भिंडी कर लेते हैं
0: सब्जी में
1: जी।
0: तो रकबा कितना कितना रहता है शरद काल का और बसंत काल का?
1: डॉक्टर साहब, शरद काल का जो रकबा है उसको मानकर चलिए कि 3 एकड़ के आसपास में शरद काल में लगाया गया है,
0: और 2 एकड़ बसंत काल
1: जी।
0: पेड़ी भी लेते होंगे?
1: हाँ, पेड़ी भी इसमें रहती है। अब जब ये 238 तोड़ी गई
0: जी
1: तो अब पेड़ी बहुत कम है, क्योंकि सब ये नई बीज लगाए गए। हमारे यहाँ 238 ज्यादा प्रचलन में था, लेकिन रोग ग्रस्त होने के कारण चीनी मिल वालों ने और खुद किसानों ने समझा कि इससे हानि हो रही है तो इसके हटा ही देना चाहिए।
0: तो जो नई नई प्रजाति आप लगा रहे हैं मिठास की, उसकी खासियत क्या महसूस कर रहे हैं?
1: डॉक्टर साहब, खासियत ये महसूस करी जा रही है कि जो नई प्रजातियां हैं उन नई प्रजातियों से पिछले प्रजातियों के अपेक्षा ज्यादा पैदावार मिल रही है
0: हाँ, और रोग मुक्त भी हैं। तो मिठास की फसल की बुआई और उसके पहले खेत की तैयारी से लेकर के और फसल की कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं गन्ने की फसल में?
1: डॉक्टर साहब, जब गन्ने की बुआई करनी होती है तो सबसे पहले उस खेत में प्रयास ये किया जाता है कि गोबर की खाद
0: भरपूर
1: जी, तो गोबर की खाद अगर पर्याप्त मात्रा में है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ चाहे थोड़ी बहुत ही पहले तो गोबर की खाद डाली जाती है,
0: सड़ी हुई
1: जी जी। अगर सड़ी गोबर की खाद नहीं डाली जाएगी, कच्चा गोबर डाला जाएगा, तो जैसे वैज्ञानिकों ने बताया और खुद मैं भी ये दिमाग लगा रहा हूँ कि कच्चा गोबर डालने से जो यूरिया फसल में डाली जाती है वो तो सब गोबर को सड़ाने में ही खर्च हो जाती है, तो इसलिए सड़ी हुई गोबर की खाद को उसमें डाला जाता है। खाद डालने के बाद में उसकी 2-3 गहरी जुताई की जाती है
0: जी।
1: गहरी जुताई करने के बाद में भूमि का शोधन करना बहुत जरूरी होता है
0: हाँ।
1: तो भूमि के शोधन के लिए हम ट्राइकोडर्मा को थोड़ी सी गोबर की खाद में मिला करके 1 एकड़ में 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा सरकारी जो दुकानें हैं
0: वहाँ से
1: वहाँ पे उपलब्ध हैं 1-1 किलो की पैकेट में, उसको मिला करके और खेत में बिखेर करके आखिरी जुताई कर देते हैं
0: जी।
1: तो इस तरीके से हमारा भूमि शोधन हो गया। अब उसमें हम करते क्या है, जैसे गन्ने की खेत की परेशानी सर दो है, एक कीट और दूसरा फंगस है
0: हाँ।
1: तो उसमें हम करते क्या है, ट्राइकोडर्मा डाल करके एक होता है बवेरिया बैसियाना
0: जी,
1: उसको भी मिला देते हैं आखिरी जुताई के समय में,
0: भूमिगत कीट और दीमक का प्रकोप न हो
1: जी। उसके बाद में हम बीज का शोधन करते हैं, बीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके थायोफिनेट मिथाइल कोई एक कीटनाशक जैसे इमिडाक्लोर हुआ या पायरीफास हुआ उसमें बीज का शोधन करते हैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: बीज का शोधन करने के बाद में फिर जैसे बुआई 2-3 तरीके से की जाती है, अगर सह फसल लेनी है उस खेत में, ये मैं तो ऐसा ही करता हूँ, पहले रिंग पिट से करता था, लेकिन जब से सह फसल मुझे लेना हुआ, पहले जो सह फसल होती है उसको छिटकवा विधि से बो देते हैं, बोने के बाद में ट्रेंच से खींच दिया गया, अब फसल वो सह फसल वाली जमी और गन्ना जमा। अब बीच में जहाँ ट्रेंच की नालियों में फसल उग आती है उसको उखाड़ लिया जाता है, तो सह फसल उसके मेढ़ों पे रहती है, और जो गन्ना हमारी मूल फसल है वो नालियों में होता है, जो सह फसल हमारी तैयार हो जाती है उसकी

0: कटाई हो जाती है, फिर उसकी निराई गुड़ाई कर ली जाती है और मूल फसल भी सर चलती है।
1: और मिट्टी भी चढ़ा लेते होंगे?
0: जी, मिट्टी तो ये चढ़ाई जाती है जून के महीने में,
1: लास्ट में, बरसात के पहले,
0: जब लगभग एक कल्ले से सर 10-12 कल्ले हो जाते हैं तभी उसमें मिट्टी चढ़ाई जाती है। अगर पहले मिट्टी चढ़ा दी जाए तो फिर कल्ले
1: कम बनेंगे,
0: बंद हो जाते हैं।
1: तो इस समय फसल आपकी गन्ने की कैसी चल रही है खेत में?
0: अब इस समय सह फसल काटी जा चुकी है, उसकी गुड़ाई की जा चुकी है, अब उसमें खाद पानी दिया जाएगा, देने के बाद में अब लगभग 15-20 दिन के बाद में उसमें मिट्टी चढ़ाई जाएगी।
1: तो जो पोषक तत्वों की शेष मात्रा है उसका प्रयोग कर चुके हैं?
0: नहीं, अभी नहीं कर चुके हैं, अभी एक टॉप ड्रेसिंग की गई है।
1: अच्छा।
0: अब एक ट्रॉप ड्रेसिंग लगभग लगभग मई के लास्ट में करी जाएगी।
1: और एक बरसात के पहले?
0: हाँ, बरसात के पहले लगभग वही मानकर चलिए 20-22 जून को कर दी जाएगी, उसके बाद में बरसात आ जाएगी।
1: तो कुछ रोग दोख और कीड़े मकोड़े जो लगते हैं उनका प्रबंधन कैसे करते हैं?
0: जैसे जो कीड़े लगते हैं, इस समय का जो कीड़ा है पायरिला है
1: जी,
0: वो उड़ता भी है और जब अंडे दे देता है तो तने में छेद कर देता है,
1: रस चूसता है
0: जी। तो इसके लिए एक तो दवा आती है, पहले कोराजन के नाम से आती थी, तो उसका भी छिड़काव किया जाता है जड़ों के पास में, उसकी ट्रेंचिंग की जाती है। लेकिन मैंने जब पहले से उसको डाल रखा है, बेबिया बर्सियाना जो है,
1: ब्यूबेरिया बर्सियाना,
0: उसको डाल रखा है जब, तो शायद कभी कभार ही जरूरत पड़े अगर प्रकोप ज्यादा हो जाए, नहीं तो वो इसीलिए होती है। अभी डाला नहीं गया है क्योंकि अभी गन्ने में कोई मुझे कीट नजर नहीं आया है।
1: तो खेत की नियमित रूप से निगरानी करते होंगे?
0: सुबह मैं करीब 5 बजे जग जाता हूँ, जगने के बाद में सबसे पहले अपने पशुओं का इंतजाम करता हूँ, ये सब करते हुए मुझे 1 घंटा लग जाता है। खेतों को लगभग 6:15 बजे तक हम खेत में पहुँच जाते हैं, और चूंकि गर्मियों का सीजन है इसलिए खेत में 10:30 बजे तक काम करते हैं, 10:30 बजे के बाद में घर को चले आते हैं।
1: तो जो 7 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ गन्ने की फसल है, और कुछ अलग से बाग बगीचा भी लगाए?
0: हाँ डॉक्टर साहब, बाग बगीचा लगाया है हमने, लगभग 1/2 एकड़ में जो हमारे घर के पास में था उसमें हमने ये प्रयास किया है कि लगभग जो हमारे यहाँ हो सकते हैं फलदार वृक्ष, जैसे उसमें आम है, कटहल है, जामुन का भी पेड़ है, अमरूद है, केला है, नींबू है सर,
1: यानी जरूरत की सारी चीजें, एक तरह की पोषण वाटिका हो गई।
0: हाँ डॉक्टर साहब, तो ये घर के सामने था तो मैंने प्रयास किया है कि अब आगे क्या सफलता मिलती है, लेकिन अभी हमारे पेड़ ठीक ठाक चल रहे हैं।
1: चूंकि सबसे ज्यादा रकबा गन्ने का है, तो गन्ने की प्रति एकड़ लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं एकड़ में, और आपका मुनाफा होता कितना है?
0: मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब, हमारी जैसे प्रति एकड़ लागत बहुत ज्यादा नहीं लगती है। लागत इसलिए नहीं लगती है कि हम अपना काम मजदूरों से ना करा करके स्वयं करते हैं, तो जो हमारी मजदूरी होती है वो बच जाती है। बुआई से लेकर के सर गन्ने की छिलाई और उसको चीनी मिल तक बेचने में भी हम खुद अपना काम करते हैं, लेकिन फिर भी मैं मान कर ये चलता हूँ कि 1 एकड़ में लगभग लगभग 30,000-35,000 मेरी लागत लग जाती है।
1: और उत्पादन
0: मुनाफा, अब उसमें ये मानकर चलिए जैसे गन्ने का समान उत्पादन नहीं ले पाते हैं
1: जी,
0: कोई जैसे पेड़ी हुआ तो पेड़ी में पैदावार लगभग 300 या 350 कुंटल एकड़ होती है, और जो बोआस पौधा गन्ना है उसमें ये भी होती है कि 450 कुंटल हो जाती है। एक बार ऐसा भी हुआ है कि हम 500 कुंटल से भी आगे निकले हैं
1: जी।
0: तो अब उस हिसाब से 1 एकड़ में हमें 80 से लेकर 1,00,000 रुपए तक की बचत भी हो सकती है।
1: तो बड़ी खुशी की बात है। पूरे साल में जो 7 एकड़ की खेती है, पशुपालन है, उससे कितनी आमदनी हो जाती है आपकी?
0: अब उसमें आमदनी मेरी इतनी हो जाती है कि जिससे हमारा खर्चा आराम से चल जाए। अब किसान आदमी है तो इतना तो सर हम जोड़ नहीं पाए कि कितनी आमदनी हुई, लेकिन ये मैं अपने गन्ने की पैदावार का आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। और सर घर में तमामों खर्चे होते हैं, उसी में शादी विवाह, न्योता, हकार, दवाई पानी,
1: सब कुछ उसी से चल रहा है।
0: बिल्कुल।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए।

0: आपसे बात करने के लिए तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: डॉक्टर साहब मेरा मोबाइल नंबर है 98 89 43 49 40, 9889434940, 98 89 43 49 40।
0: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफलता की कहानी के बारे में?
1: डॉक्टर साहब मैं अपने किसान भाई बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि जैसे धरती माता हमारी धरती माँ है, इन पे जम करके खेती करिए, किसी बात से धैर्य मत छोड़िए।
0: कुशल पाल तिवारी भैया आज आप कार्यक्रम में आए और जो आपकी सफलता की कहानी थी कि इंटर की पढ़ाई के बाद आप खेती में जुट गए 35-36 साल पहले और आज एक मुकाम पर हैं, आप 5 एकड़ मिठास की फसल उगा रहे हैं और उससे आपको ठोस आमदनी मिल रही है पूरे साल के लिए, कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं, कृषि में विविधीकरण कर रहे हैं, आज कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी सफलता की कहानी सुनाने के लिए

0: खेती में जुट गए 35-36 साल पहले और आज एक मुकाम पर हैं। आप 5 एकड़ मिठास की फसल उगा रहे हैं और उससे आपको ठोस आमदनी मिल रही है पूरे साल के लिए। कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं, कृषि में विविधीकरण कर रहे हैं। आज कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी सफलता की कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सुनील भैया,
2: हाँ अभिषेक भैया,
1: इतनी बढ़िया अपन सफलता कहानी सुनाओ।
2: बिल्कुल,
1: गन्ना उत्पादन एक खातिन कुशल पाल तिवारी भैया का और बात कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया का, बहुत बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद।
2: बिल्कुल भैया, तमाम तिनकी जानकारी हुई गई, तमाम तिनकी जो है नई नई चीजन की जानकारी हुई। अब इके बाद जो है अपने सब श्रोता पंचन के यहाँ जो है वही राह दिया थे, इंतजार है गौ नई क्यार। तो आज एक कहरवा लेके आए हैं गोरी नैना तोहार, और दीपक भैया बहुत अच्छे से जो है ये गीत के यहाँ गईन है, चरित्र चित्रण बहुत अच्छे से करीन है। तो सुना जाए या गौ नई गोरी नैना तोहार,
1: सुना जाए लोकगीत भैया।

0: और सुनील भैया,
1: हाँ अभिषेक भैया,
0: गजरवा नीक तब लागी जब
1: बिल्कुल
0: अपन खेती पाती के काम और इससे जुड़े सब काम नीक हुई हैं।
1: बिल्कुल
0: और
1: भैया।
0: काम जब जुड़े हुए पानी तेने बरखा तेने तो जरूर हो जाते कि मौसम का हाल पता चले, तो
1: बिल्कुल
0: मौसम
1: भैया,
0: का हाल बता दो।
1: बिल्कुल भैया। और जो मौसम क्या जो हाल हमका मिला हवे वो हमेशा करीब हाथ मिला है भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम केंद्र लखनऊ से। भैया जो 17 तारीख जैसे कि आज हैये है,
0: हाँ
1: 17
0: हाँ
1: से एक जो है 21 तारीख तक संभाग में यहाँ मौसम शुष्क रहे के संभावना है। बिल्कुल यू हाल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और अगर जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए
0: हाँ भैया,
1: और उमा जो है 19 तारीख से लेकर 21 तारीख की बात अगर की जाए तो फिर जो है संभाग में यहाँ जो है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में यहाँ कहीं कहीं पर यहाँ जो है गरज चमक के साथ बौछारें पड़े की भी संभावना है।
0: हाँ
1: और
0: भैया
1: भैया चेतावनी भी मिली है,
0: बहुत जरूरी।
1: चेतावनी यह मिली है कि मेन पर सचेत हो जरूरत है कि 17 तारीख से लेके यानी कि आज से 21 तारीख तक जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ भयंकर लू चले की भी चेतावनी दी गई है ऐसा बतावा जा रहा है। तो यूँ तो रहा है मौसम का हाल, अपन ध्यान रखें, अपनी खेती पाती ध्यान रखें।
0: बिल्कुल भैया। और पंच भैया कल का सुने बता दे तो लोकायतन में सुने डॉक्टर अतुल कुमार अग्रवाल तेने भेंटवार्ता अध कपारी कारण और निवारण और इनसे बात करे हैं नीना सोनकर बहनी। और
1: बिल्कुल
0: खेती किसानी में सुने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तेने भेंटवार्ता पशुअन में संक्रामक रोग से ने बचाव और टीकाकरण एक ही दिन ते बात करें हैं अपन डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। और
1: बिल्कुल
0: भैया देखो जरूरी हो दे कि पंच भैया जब कार्यक्रम सुनते हैं तो चिट्ठी पाती जरूर लिखें के
1: बिल्कुल
0: खातिन पता नोट कर लें। तो पता है भैया लोकायतन खेती किसानी कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन कोड
1: बिल्कुल
0: भैया 22601।
1: बिल्कुल।
0: और
1: तो
0: एक के साथ साथ भैया देखो अब चिट्ठी पाती का ना धीरे धीरे जा रहा है तो ईमेल जरूर नोट कर लें। तो हमारा ईमेल है farmandhomeAIRLakhnau@gmail.com। और
1: बिल्कुल, तो
0: भैया
1: ई ईमेल आईडी
0: अपन
1: पर यहाँ जो है अपन भी
0: हाँ
1: संदेश दे सकते
0: और
1: हैं।
0: भैया
1: और यही
0: अपन
1: साथ
0: ध्यान
1: साथ में
0: रखें और अपने हरा गुरु के ध्यान रखें और लीन जाए विदा।
1: जय
0: जय
1: हिंद।
0: हिंद।

0: खेती किसानी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 7:20 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
6: नया किडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
6: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैक।
5: RBI कहता है,
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
7: बड़ी बहू ये तुम्हारी ना।
8: इतनी भी क्या जल्दी थी?
7: अरे और छोटी ये तुम्हारी ना।
8: और ये
9: मेरी गुड़िया की ना।
10: पर दादी
7: हाँ?
10: आपके नाम?
11: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
7: शुभ शुभ बोलो।
10: क्या?
5: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय

0: को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
1: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में अनदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में बेसिक शिक्षा का हुआ कायाकल्प। मुख्यमंत्री गोरखपुर के सहजनवा में आयोजित भाजपा जिला प्रशिक्षण में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए किया प्रेरित। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। फतेहपुर में नदी में डूबने से 4 युवकों ने गंवाई जान। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 30 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो मजबूत इमारत नहीं बन सकती। इसीलिए सरकार का मानना है कि अनुदेशक, शिक्षा मित्रों और बेसिक शिक्षकों के मानदेय से जुड़े मामलों को सम्मानजनक तरीके से हल किया जाना चाहिए। श्री योगी ने यह बात आज लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 अंशकालीन अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानदेय बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार अनुदेशकों को 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने जा रही है। श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों और सकारात्मक कदम से बेसिक शिक्षा में कायाकल्प हुआ है। सरकार की मंशा है जब हर बच्चा शिक्षा हासिल करे ताकि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके।
5: जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो, तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था, और आज हम इसको घटाते घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना चाहिए। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाए।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश का ऐसा राजनीतिक दल है जो देश को सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम कर रही है। वो आज गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण 2026 के क्रम में भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। भाजपा का इतिहास और विकास विषय पर केंद्रित इस सत्र में श्री योगी ने कहा कि स्थापना के 50 वर्ष से भी कम समय में भाजपा ने दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में केंद्र और देश के 22 राज्यों में राष्ट्रवाद की विचारधारा को लागू करने के अभियान को आगे बढ़ाया है। श्री योगी ने केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने राष्ट्र प्रथम की भावना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को तैयार किया है, जिससे देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
6: भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को भी साकार किया है जिन्होंने अंत्योदय की बात, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास मिल जाना, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल जाना, 10 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि के शिखर तक पहुँचाने के अभियान का क्रम है।
4: श्री योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, सांसद रविकिशन शुक्ल, पार्टी पदाधिकारी और प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद थे। प्रदेश में जारी डिजिटल जनगणना के पहले चरण के तहत स्वगणना प्रक्रिया 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वगणना का डिजिटल प्रपत्र भरा। इस अवसर पर श्री योगी ने प्रदेशवासियों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने का आह्वान किया।

0: है। उधर मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में शुरू हो गया है, जहां मकानों की सूची तैयार की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधा और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने आज पीलीभीत में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया है। श्री गंगवार ने कहा कि जनपद में 1,985 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और मुख्य सेविकाओं को मोबाइल दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
2: मोदी योगी सरकार बड़े बड़े भाषण घोषणाओं में यकीन नहीं करती और जो घोषणा करती भी है वो धरातल पे, जमीन पे, गांव पे लोगों तक पहुंचाने का काम करती है और उन योजनाओं को, खास तौर से स्वास्थ्य की सेवाओं को धरातल पे पहुंचाने में आप लोगों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती।
0: गाजियाबाद स्थित NTH की उत्तरी क्षेत्र इकाई में अत्याधुनिक जूता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रयोगशाला से MSME, निर्माता, निर्यातक, उपभोक्ता और नियामक संस्थाओं को भरोसेमंद और अच्छी क्वालिटी वाले फुटवेयर परीक्षण सेवाएं मिल सकेंगी। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में एक माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गोवर्धन और वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मथुरा समेत समूचे ब्रज मंडल में आज से एक माह तक चलने वाला अधिक मास मेला शुरू हो गया है। चहुं और 84 कोस परिक्रमा का उत्साह और राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। आस्था और भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन में 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। SP ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए परिक्रमा मार्ग गोवर्धन, द्वारकाधीश और श्रीकृष्ण जन्मस्थली समेत प्रमुख मंदिरों को सुपर जोन और सेक्टर में बांट कर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र की CCTV कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
0: प्रदेश में आज हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत और 5 अन्य घायल हो गए हैं। फतेहपुर जिले में रिंद नदी में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि अन्य 2 को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हमीरपुर के मौधा क्षेत्र के छिरका गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक और कार की टक्कर में दुर्घटना होने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी बागेश्वर से दर्शन कर घर वापस जा रहे थे। उधर शाहजहांपुर जिले के कांट इलाके में सुबह डंपर और ऑटो की टक्कर में दंपति सहित 3 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी जारी रहने और कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगरा, अमेठी, औरैया, आजमगढ़, बलिया, बांदा, चंदौली, चित्रकूट, उन्नाव और वाराणसी में कल भी लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में मानसून के 18 जून को दस्तक देने की संभावना जताई गई है। इस साल मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा होने का भी पूरा अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अनुदेशकों को 5,00,000 तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में बेसिक शिक्षा का हुआ कायाकल्प। मुख्यमंत्री

0: गोरखपुर के सहजनवा में आयोजित भाजपा जिला प्रशिक्षण में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए किया प्रेरित। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। फतेहपुर में नदी में डूबने से 4 युवकों ने गंवाई जान। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
5: सुगंध, क्या हो रहा है?
6: बिल हो रहा है।
4: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
3: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
8: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
9: बन गया बजट?
8: हाँ,
9: 5,000 बच गए।
8: तो नई साड़ी ले ले?
9: ना,
8: पिछले महीने तो ली थी।
9: एक और
8: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
9: बढ़ी है।
8: जाओ भाई।
10: RBI कहता है
11: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
12: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सुमोना एस पांडे और नीना सोनकर।

0: पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी नीना सोनकर का प्यार भरा नमस्कार
1: और मेरा यानी सुमोना पांडे का भी नमस्कार सभी श्रोताओं।
0: जी सुमोना जी, बहुत सारे मेल हमारे श्रोताओं के आए हुए हैं और ये पहला मेल मैं पढ़ने जा रही हूँ किसान रेडियो क्लब के श्रोताओं का। ग्राम व पोस्ट ललहुआ, जिला लखीमपुर खीरी के हैं सभी श्रोता। विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा, ऋचा, गुड़िया, सुरभि, राजेश कुमार और विजय पांडे जी, इनके जी। मेल हैं। लिखते हैं कि दीदी जी को प्रणाम, चरण स्पर्श।
1: प्रणाम आपको भी।
0: आगे इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र के कार्यक्रमों से इतना लगाव हो गया है कि रेडियो को एक पल के लिए भी छोड़ना बहुत कष्टकारी लगता है। और ये लिखते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम में थैलेसीमिया, कारण, लक्षण और कब होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत, यानी कि रक्त बदलने की जरूरत कब होती है, इस विषय पर डॉक्टर कौशिक मंडल जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और इन्होंने लिखा है कि बहुत ही उपयोगी वार्ता थी उनकी, बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा इन्होंने इसी दिन गर्भावस्था में सही पोषण का महत्व, इस विषय पर भी जानकारी इनको जो प्राप्त हुई वो इन्हें बहुत अच्छी लगी। गीत भी बहुत अच्छे लगे। आगे इन्होंने इसी दिन के कुछ और कार्यक्रमों का भी जिक्र किया है कि हेलो किसान कार्यक्रम में जायद की फसलों में सामयिक प्रबंधन, धान की उन्नत प्रजातियां और नर्सरी प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी डॉक्टर धीरज कुमार तिवारी जी ने दी और इस पर बातचीत की डॉक्टर सुशील कुमार राय जी ने। बातचीत बहुत ही अच्छी लगी। डॉक्टर सुशील कुमार राय जी का हम सभी किसान भाई आभार व्यक्त करते हैं जो समय के अनुसार हम सभी को जानकारी दिलवाते हैं। 10 मई के कार्यक्रम का इन्होंने जिक्र किया है, हेल्थ एंड फिटनेस कार्यक्रम, जिसमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन पर जानकारी डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान से प्राप्त हुई, अच्छी लगी। इसी दिन का बाल मंच कार्यक्रम और आज इतवार है, ये दोनों ही कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। ममता उपाध्याय दीदी जी को तथा अतिश कुमार श्रीवास्तव भैया को इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। इसी दिन का रात्रि 9:30 बजे कार्यक्रम जो प्राइमरी चैनल पर प्रसारित किया गया, गीतों का कर

0: कार्यक्रम, आपकी पसंद के गाने वो भी अच्छे लगे, और कुल मिलाकर इन्हें आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं।
1: देखिए नीना जी, इन्होंने इतने ध्यान से हमारे सभी कार्यक्रमों को सुना और इन्होंने उसके बारे में लिखा, ये हमें जान के बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता इतने प्यार से हमें सुनते भी हैं और उनसे लाभान्वित होते हैं। और इसी तरह से आप हमारे साथ प्यार बनाए रखिए और हमें मैसेज भेजते रहिए अपने मेल के द्वारा, और हम भी चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी हो और आपको आनंद आए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, और विजयपाल यादव जी, मेल थोड़ा छोटा करके लिखा करिए तो पढ़ने में आसानी होती है। वैसे मेल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे एक हमारे जो श्रोता हैं जिनका अब मैं मेल पढ़ने जा रही हूँ, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु रामशंकर पत्रकार बहाई वाले रक्षा मौर्य मिर्जा तुराब बेग, और इनके साथ हैं राम सागर साहू रसूलपुर वाले। इन्होंने लिखा है कि 10 अप्रैल को सुबह स्वास्थ्य चर्चा में मदर्स डे पर जानकारी प्राप्त हुई, बहुत अच्छी लगी। शहतूत के विषय में जो जानकारी नीना सोनकर जी ने दी वो भी अच्छी लगी और कार्यक्रम अच्छा लगता है।
1: तो रामराज जी, आपने हमारे कार्यक्रम को सुना और आपको पसंद आया, इसके लिए हमारा आभार है कि आपने हमें अपने मेल के द्वारा हमको ये जानकारी दी, और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहें और उन्हें पसंद भी करते रहें और अपनी सलाह भी हमें आप भेज सकते हैं।
0: जी, ये मेल सुमना जी आया है शेषराम मिश्र, ग्राम पूरे पंडा, पोस्ट दादरा, तहसील मुसाफिरखाना, जिला अमेठी के श्रोताओं का। इनके साथ और भी नाम है, मानवती मिश्रा, प्राची मिश्रा, आनंद मिश्र, वेदिका मिश्रा और सभी साथी। लिखते हैं कि रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम रोचक और लाभदायक हैं, विशेषकर खेती किसानी कार्यक्रम में जो जानकारी दी जाती है वो बहुत ही लाभदायक लगती है।
1: शेषराम जी, आपको हमारे कार्यक्रम उपयोगी लगते हैं, यही हमारा उद्देश्य भी होता है कि हम जानकारी और सूचनाएं आप तक पहुंचाएं जिससे आपको लाभ मिले। आपने हमें मेल द्वारा इस बात से अवगत कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: ये मेल आया है सुमुना जी, पुरुषोत्तम कुमार, गांव डंडी, तहसील भद्रवा, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं पुरुषोत्तम चरक जी। इन्होंने लिखा है कि 11 तारीख को नीना सोनकर और सुमुना पांडे जी ने कार्यक्रम की महफिल सजाई। आकाशवाणी लखनऊ के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। 30 तारीख का लोकायतन कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में लोक भाषा अवधि में कहानी पाठ जिसका शीर्षक था भौजी अम्मा बहुत अच्छी लगी। और इन्होंने ये भी लिखा है कि 4 तारीख को नई उड़ान कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और इस कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सरोकार तपती धरती यानी पारिस्थितिकी की अग्नि परीक्षा, इस विषय पर जानकारी बहुत अच्छी लगी।
1: पुरुषोत्तम जी, आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और ये जानकर हमें भी बहुत खुशी होती है, और आप अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं अपने मेल के द्वारा, इसके लिए आपका आभार है। इसी तरह से हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए और लाभ उठाते रहिए, हमारी सभी श्रोताओं से यही विनती है।
0: 2 मेल हैं सुमोना जी, वारिस अली खान साहब और उनके परिवार के सदस्यों के। इन्होंने लिखा है कि 9 मई का सुगंध माटी का कार्यक्रम अच्छा लगा, और आगे इन्होंने कुछ बातें भी लिखी हैं कि 8 मई को एक श्रोता ने विविध भारती लखनऊ से जो कार्यक्रम प्रसारित होता है संदेश आपके गीत आपके, उसमें बहुत समय ले लिया, तो ऐसे श्रोताओं को जल्दी आप शामिल ना करें क्योंकि अन्य श्रोता भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं।
1: वारिस अली जी, आपके हमें मेल लगातार मिलते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और आप हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं, अपनी सलाह भी हम तक भेजते हैं, और ये भी बिल्कुल सही बात है कि कुछ श्रोताओं को समय देना पड़ता है, कभी कभी बात लंबी हो जाती है, लेकिन बात सही है और हम इस पर ध्यान देंगे और इस पर कोशिश करेंगे कि इस तरह की बात आगे ना हो।
0: सुमना जी, एक मेल और है वारिस अली खान साहब का, वो लिखते हैं कि 10 मई का गुड मॉर्निंग लखनऊ कार्यक्रम अच्छा लगा, और आगे ये लिखते हैं कि गायकों में तलत महमूद की मखमली आवाज है तो हमारे राजेश्वरी भाई की भी मखमली आवाज है। 10 मई का मोरपंख कार्यक्रम जिसमें मोहन राकेश की कहानी अपरिचित को राजेश्वरी भाई ने अपनी मखमली आवाज दी, कहानी भी सुंदर थी तो गीत भी मेलोडियस थे। आगे इन्होंने लिखा है कि 10 मई का आज इतवार है, मैं झलकी सफाई के कमाल बहुत अच्छी लगी। 10 मई का ही रात्रि 9:30 बजे का कार्यक्रम जो था वो इन्हें अच्छा लगा, मदर्स डे स्पेशल कार्यक्रम था। सुमना जी, 9 मई का सुगंध माटी का कार्यक्रम इन्हें अच्छा लगा, ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया श्रोताओं के समक्ष राजा भैया और अंजू ने। इन्होंने लिखा है बेहतरीन शो था, इस शो में मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी था और रोचकता भी थी।
1: जी, तो आपने हमारे कार्यक्रमों को पसंद किया, इसके लिए आपका बहुत आभार, और इसी तरह से हमारे कार्यक्रम आप जरूर सुनिए और लोगों को भी सुनवाइए, क्योंकि जितने हमारे श्रोता बढ़ेंगे उनके मैसेज हमें मिलेंगे, उनके मेल हमें मिलेंगे, हमारा उत्साह वर्धन इसी तरह होता रहेगा।
0: सुमोना जी, ऐसा लगता है कि बुंदेलखंड से ये हमारा पहला मेल आया है, ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के श्रोता।

0: माताओं का मेल है। इनके नाम है राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। लिखते हैं, आकाशवाणी लखनऊ बचपन का दोस्त है, जब से आज तक निस्वार्थ रूप से चल रहा है। और नीना सोनकर जी की प्रतिदिन स्वास्थ्य चर्चा में अलग अलग विषय पर वार्ता जो प्रसारित की जाती है बहु उपयोगी लगती है। 12 मई को बेल की वार्ता सुनी, अच्छी लगी, और विविधा विज्ञान और किसान कार्यक्रम अच्छे लगते हैं।
1: रामशरण जी, आपने हमें मेल किया और आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं, तो हम अपने उद्देश्य में इसका मतलब सफल हो रहे हैं, क्योंकि जब आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं उससे आप लाभान्वित होते हैं, तो हमारा उद्देश्य पूरा होता है कि हम आप तक उस तरह के कार्यक्रम पहुंचाएं जिससे आपको फायदा हो। तो आपके मेल के लिए बहुत बहुत आभार।
0: सुमना जी, जो अगला मेल है, राम खेलावन जी हैं, कुरसठ से इन्होंने मेल भेजा है। किसान रेडियो क्लब हरदोई के हैं ये, और इन्होंने कुछ और लोगों के भी नाम लिखे हैं, अविनाश द्विवेदी, विजय पांडे, मणिराम, देवेंद्र दीक्षित, राम जी, रमेश और धीरज कुमार। लिखते हैं, कृषि चर्चा और स्वास्थ्य चर्चा दोनों एक कैप्सूल की भांति है प्रोग्राम, जो बहुत अच्छे लगते हैं। बायो फर्टिलाइजर पर कृषि चर्चा में जानकारी दी गई, बहुत अच्छी लगी। और इन्होंने आगे लिखा है कि विज्ञान और किसान में में भिंडी उत्पादन विषय पर जानकारी दी गई, सुनकर अच्छा लगा। डॉक्टर सुशील कुमार राय जी ने विशेषज्ञ से बातचीत की। सुबह शाम के प्रोग्राम सुनना अच्छा लगता है, आप अपने प्रोग्राम में नौटंकी को भी शामिल करें।
1: जी, और आपका मेल हमने पढ़ लिया है और आपने हमारे कार्यक्रम सुने, उनको पसंद किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आपको उससे लाभ हो रहा है ये जानकर हमें भी खुशी होती है, और आपने जो अपने सलाह भेजे हम उस पर कोशिश करेंगे कि आगे हम इस पर अमल कर सकें। इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए और हमें मेल करते रहिए।
0: जी सुमना जी, ये ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश के श्रोताओं का मेल है। दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी। इसी मेल पर और भी अन्य श्रोताओं के नाम हैं। ग्राम खैगांव, तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा। इसी मेल पर रिंग रोड नर्मदा नगर के श्रोताओं के भी नाम लिखे हैं, सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा। लिखते हैं कि आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हमें दिनांक 10 मई 2026 के दिन रविवार का संकल्प कार्यक्रम अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में जाने क्या है अदृश्य दिव्यांगता, हीमोफीलिया, इस विषय पर डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा जी से मनीष कुमार की बातचीत बहुत लाभदायक लगी। आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित युववाणी कार्यक्रम में पहले श्रोताओं के ईमेल शामिल किए जाते थे, लेकिन अब ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है, तो अपने इस सेगमेंट को आप जरूर शामिल करें।
1: तो हमारे जितने भी श्रोता इसमें हैं, दुर्गेश नागनपुरे, भारती नागनपुरे व उनके जितने भी साथी हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें मेल लिखा, इतना अपना समय निकालकर हमारे कार्यक्रम वो सुनते हैं, इसके लिए उनका आभार। और आपने जो भी हमें सलाह दी है, हम कोशिश करेंगे उसको अपने कार्यक्रम में आगे शामिल करने के लिए। इसी तरह हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए और लाभान्वित होते रहिए।
0: ग्राम करेली, पुरानी मस्जिद बरेली के श्रोताओं का नाम है इस मेल में, लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी और सभी मित्रगण। लिखते हैं कि कार्यक्रम पेश करने वालों को नमस्कार, आदाब, और लखनऊ केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। लोक रंग और लोक माधुरी में लोक गीत बहुत अच्छे लगते हैं। हम जानना चाहते हैं कि फरमाइशी लोकगीत आपने बंद क्यों किया, सुबह में आप शास्त्रीय संगीत सुनवाते हैं जो इन्हें अच्छा नहीं लगता है।
1: लाल मोहम्मद जी, बहुत सारे श्रोता हमारे हैं, हर वर्ग के हैं, जो अपने अपने पसंद के कार्यक्रम सुनना चाहते हैं। आपको लोकगीत पसंद आते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और हमें मेल करते हैं। इसी तरह से और भी लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है, तो हमें सबके पसंद का ध्यान रखना है ना नीना जी?
0: बिल्कुल।
1: तो हम सभी के पसंद के अनुसार कार्यक्रम करने की कोशिश करते हैं और जो ऐसे प्रोग्राम करते हैं जिससे आपको कुछ सूचना भी मिले, कुछ मनोरंजन भी हो और आप उससे लाभान्वित भी हो। और इसी तरह हमारे साथ आप बने रहिए हमेशा और हमारे कार्यक्रम सुनकर अपने सलाह जरूर हम तक भेजते रहिए।
0: ये अरविंद मिश्रा जी ने मेल भेजा है, दूर से है मेल, मध्य प्रदेश के धार से, और लिखते हैं कि आकाशवाणी के सम्मानित जन सुमना जी, नीना जी को प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार आपको भी।
0: जी बिल्कुल। और इन्होंने लिखा है कि गंगा दशहरा पर कुछ रोचक प्रोग्राम तैयार करवाएं, लोक रंग और विविधा में, इन प्रोग्राम्स का इन्होंने जिक्र किया है, भौजी अम्मा का पुनः प्रसारण करवाने की कृपा करें।
1: अरविंद मिश्रा जी, आपने अपने मेल पे हमें बहुत सारी बातें लिखकर भेजी हैं और आपको हमारे कुछ कार्यक्रम पसंद आते हैं, इसके लिए आपका आभार, आपने लिख के भेजा है। लेकिन कुछ कार्यक्रम हम अपने दूसरे श्रोताओं के लिए भी करते हैं, हो सकता है आपको न पसंद आते, लेकिन कुछ लोगों को पसंद आते हैं, तो हमको सबके

0: का ध्यान रखना है नीना जी।
1: बिल्कुल, और सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए ये अगला मेल जो आया है मनीष कुमार जी का मेल है, ग्राम पोस्ट पैतेपुर जिला सीतापुर से। लिखते हैं कि 8 अप्रैल को VBS पर सुरों का सफर कार्यक्रम अच्छा लगा। इन्होंने एक सुझाव दिया है दरअसल सुमोना जी कि FM रेनबो पर 90s@9 कार्यक्रम शुरू करने की कृपा करें।
0: तो देखिए नीना जी, आपने उनके सुझाव को हम तक पहुंचाया, तो हम आगे भी कोशिश करेंगे कुछ अपने कार्यक्रमों में कुछ बदलाव ला सकें, उसको आपके अनुरूप बना सकें। और कई कार्यक्रम हम नियम के अनुसार करते हैं, उसके लिए हमको कुछ निर्देश मिलते हैं, हम उनके अनुरूप कार्यक्रम करते हैं। तो ऐसा है कि कुछ कार्यक्रम हम कर सकते हैं, कुछ कार्यक्रम नहीं कर सकते, लेकिन आपके सुझाव हमने नोट कर लिया है और आपने मेल भेजा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार मनीष कुमार जी।
1: जी सुमोना जी, ये मेल आया है ग्राम अमृता महोली सीतापुर से इंद्रपाल मिश्रा जी का। लिखते हैं कि 12 मई को अपराजिता में पर्यावरण पुकारे सुंदर हो नजारे, घर आंगन में ग्रे वाटिका लगाएं, हरियाली से दोस्ती बढ़ाएं, आंगनबाड़ी में गर्मियों में होने वाले आंखों के विभिन्न रोग के बारे में जानकारी बहुत उपयोगी लगी। हेलो किसान में दी गई जानकारी बहुत ही उपयोगी एवं लाभदायक लगती है। समस्त किसान भाइयों की ओर से सुशील भैया को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो आपका धन्यवाद हम उन तक जरूर पहुंचा देंगे, और आप हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं, उससे लाभ लेते हैं और हमें मेल करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए।
1: सुमना जी, ये मेल है प्रहलाद कुमार कुशवाहा जी का, राजा राम कुशवाहा, सुरेश कुशवाहा, सुरेंद्र कुशवाहा, अशोक चिंतापुरवा, जाजमऊ, फतेहपुर 84 उन्नाव से। ये मेल इन्होंने लिखा है और लिखते हैं कि आकाशवाणी लखनऊ उत्तर प्रदेश की आन बान शान, सभी तरह का बांटे अपने श्रोताओं को 17 घंटे तक ज्ञान।
0: क्या बात है
1: जी।
0: जी
1: आगे इन्होंने कुछ बातें भी लिखी हैं कि 6 मई 2026 के दिन बुधवार का दिन था, डॉक्टर सुशील कुमार राय और डॉक्टर धीरज कुमार तिवारी द्वारा प्रस्तुत हेलो किसान कार्यक्रम अच्छा लगा। 11 मई के प्रोग्राम का इन्होंने जिक्र किया है, दिन में 2:30 बजे विज्ञान और किसान कार्यक्रम में मेंथा फसल में सामयिक प्रबंधन और आसवान विषय पर डॉक्टर सुशील कुमार राय जी ने बातचीत की थी। डॉक्टर संजय कुमार जो CMAP लखनऊ के थे, बातचीत उपयोगी लगी। 13 मई को बुधवार के दिन भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अच्छा लगा, और इसी दिन नीना सोनकर द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य चर्चा में शहतूत के विषय में जानकारी अच्छी लगी। और इन्होंने लिखा है कि कुल मिलाकर हमें कार्यक्रम अच्छे लगते हैं।
0: तो कुशवाहा जी और आपके सभी जितने भी साथी हैं उनको हम नमस्कार कहते हैं, और आपने हमें मेल किया और आप हमारे कार्यक्रम से लाभ उठाते हैं, आप हमारे कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और नीना जी, अब तो हम लोग समय के ऊपर भी ध्यान दे दें क्योंकि कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो चला है।
1: बिल्कुल, तो समय नष्ट नहीं करेंगे, समय बताएंगे और पता जरूर बता दें। हमारा पता है यानी कि मेल करने के लिए pkldlko@gmail.com। अगर आप लिखना चाहते हैं हमें पत्र, तो हमारा पता है पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन संख्या है 226001।
0: जी, और हमें उम्मीद है कि हमारे जितने भी श्रोता पुराने हैं वो तो ये पता रट लिए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: और जो नए श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्होंने भी ये नोट कर लिया होगा और हमें जरूर पत्र या अपने मेल हमें भेजेंगे। और नीना जी, इसी के साथ हम अपने श्रोताओं से भी विदा लेना चाहेंगे।
1: तो बिल्कुल,
0: मैं सुमना पांडे
1: और मैं नीना सुनकर सभी श्रोताओं को कहते हैं नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थीं सुमोना एस पांडे और नीना सोनकर।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम शाम अवधर। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट मीनू आपके साथ। दोस्तों, मई की इस खुशनुमा शाम में हम लेकर आए हैं ढेर

शाम अवध कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो होस्ट और दोस्त मीनू के साथ। साथियों, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज रिश्तों में मिठास, जो कि शाम की तरह होते हैं। रिश्ते भी शाम की तरह होते हैं, अगर प्यार और भरोसे की ठंडी हवा इन्हें मिलती रहे ना, तो हर रिश्ता सुकून देने लगता है। साथियों, आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अक्सर लोग अपनों के लिए, अपने लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं, लेकिन याद रखिए, एक छोटी सी मुस्कान, एक प्यारी सी बात किसी के पूरे दिन को खूबसूरत बना सकती है।

जी बिल्कुल, ज़िंदगी एक सफ़र सुहाना ज़रूर है, लेकिन यहाँ कब क्या हो किसी ने नहीं जाना, इसलिए भाई अपने दिल की आवाज़ हमें ज़रूर सुननी चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं कि दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते रखते खुद को ही भूल जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी का असली सुकून तभी मिलता है जब हम अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं। कभी अपने पसंद के गाने सुनिए, कभी बिना वजह मुस्कुराइए, और कभी खुद को ये ज़रूर कहिए कि मैं भी खास हूँ।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम।
1: हिंदी कार्यक्रम के आज के अंक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओ, आज आपको सुनवाते हैं एक वार्ता जिसका विषय है अवध का लोक संगीत। वार्ताकार हैं डॉक्टर राम बहादुर मिश्र।
2: बाराबंकी जनपद मध्य अवधि का केंद्रीय क्षेत्र है, जिसकी सीमा केंद्रीय अवधि भाषी जनपदों अमेठी, फैजाबाद, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर और बहराइच जनपदों से मिलती है। सांप्रदायिक सौहार्द, भावात्मक एकता और सर्वधर्म सद्भाव की प्रेरणा भूमि बाराबंकी जनपद अपनी सामाजिक समरसता एवं सांस्कृतिक विशेषता के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। समाज को सत्यनिष्ठा का बोध कराने वाले समर्थ गुरु जगजीवन साहेब का साधना केंद्र, हिंदू मुस्लिम एकता के ध्वजवाहक सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के सुकृत्यों की यह धरती विभिन्न जातियों, धर्मों एवं संप्रदायों को एकता के सूत्र में पिरोए है। 6वीं शताब्दी पूर्व से भी पहले महाजनपद काल में यह क्षेत्र सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौशल राज्य का अंग था। रामायण काल में इस भूखंड का सतरिक नामक क्षेत्र शताधिक ऋषियों के पवित्र आश्रम के कारण प्रसिद्ध रहा है। बाराबंकी का पौराणिक संबंध द्वापर युग के महाभारत काल से भी है। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ पर बिताया था। यहीं की धरती पर अर्जुन ने पारिजात वृक्ष का रोपण किया था, जो आज भी विद्यमान है। बाराबंकी जनपद के पूर्व में फैजाबाद अमेठी पूर्वी अवधि के क्षेत्र हैं, रायबरेली बैसवारी अवधि का क्षेत्र, बहराइच तराई अवधि का क्षेत्र है तथा सीतापुर पश्चिमी अवधि का क्षेत्र। प्रकारांतर से इस क्षेत्र की अवधि को मानक अवधि का रूप देने पर यह समस्त अवधि भाषी क्षेत्रों में ग्राह्य हो जाएगी। सामाजिक संरचना की दृष्टि बाराबंकी में विभिन्न जातियों एवं धर्मों का समन्वय है। मुसलमानों, सिखों एवं जैनियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। हिंदुओं में अनेकानेक जातियाँ यहाँ निवास करती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यादव, पाल, लोध, पासी, कहार, कुम्हार, तेली, कुर्मी, धोबी आदि जातियों का गढ़ है यह जनपद। इन विभिन्न जातियों की जातीय संस्कृत आज भी विद्यमान है, जो विविध अवसरों पर लोकगीतों, लोक कथाओं, लोक गाथाओं तथा लोक नाट्यों आदि के माध्यम से अभिव्यक्ति होती रहती है। यहाँ पर हमारा अभिष्ट लोकगीतों, विशेष रूप से जातीय लोकगीतों का उल्लेख करना है। यद्यपि कुछ जातियों के अपने विशेष जातिगत गीत हैं, जो विविध सांस्कृतिक अवसरों पर तथा जातीय व्यवसाय के आख्यान को प्रस्तुत करते हैं, ये जातीय लोकगीत जाति विशेष की विशिष्ट परंपराओं, सामाजिक संबंधों, जातीय सहिष्णुता, मानवीय चेतना तथा प्राचीन गौरव के गायक हैं। एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के गीत वर्ण भेद पर आधारित नहीं हैं, परंतु पिछड़ी एवं अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजातियों में जाति भेद के आधार पर भिन्न भिन्न जातियों के गीत प्राप्त होते हैं। इन विशिष्ट जातियों के गीतों में उनके मनोभाव और आकांक्षाएं देखने को मिलती हैं। एक बात यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अपनी श्रम सुविधा के लिए लोक समाज ने जिस बुनियादी तकनीक की तलाश की थी, उसी तकनीक को परिष्कृत कर पूंजीवाद ने उसी उन्नत तकनीक को अपना हथियार बना लिया। ऐसे में जातीय संस्कृति की अस्मिता खतरे में आ गई। जातीय गीतों के अतिरिक्त अन्य लोकगीत भी गाए जाते हैं यहाँ पर, और इनमें जातीय तत्व महत्वपूर्ण है। सवर्ण जातियों में प्रायः

0: संस्कार गीतों का गायन बहुलता के साथ किया जाता है। कुछ ऋतुगीत भी गाए जाते हैं, किंतु पिछड़ी और अन्य जातियों में समस्त लोकगीत गाए जाते हैं। ये विविध प्रकार के हैं, यथाश्रम गीतों के अंतर्गत जतसार, कोल्हू, निर्वही, रोपनी, कटनी, सीला बिनाई। ऋतुगीतों के अंतर्गत सावन, कजरी, चैता, फाग, होरी, डेढ़ताल, घाटो, लेज, चहली। इसके अतिरिक्त विविध संस्कार गीत सोहर, सरिया, नकटा, विवाह, ज्यौनार, मुंडन, जनेऊ आदि गीत भी सभी जातियों द्वारा गाए जाते हैं। अब यह अलग बात है कि विविध जातियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों में आंशिक भिन्नता होती है। आज राजनीतिक कारणों से जातीय विद्वेष के कारण सामाजिक तानाबाना नष्ट हो रहा है, लेकिन लोकगीतों में आपसी सद्भाव बड़ी गहराई से देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ प्रस्तुत है एक मंडप गीत जिसमें सभी जातियों का योगदान और समान रूप से सम्मान किया जाता है। भारतीय संस्कृत में प्रायः मांगलिक कार्यों को संबोधित करने के लिए मंडप छाजन और पूजन की व्यवस्था है। लोक में उसे माड़ो कहते हैं। माड़ो छाजन में बरई, कुमार, बढ़ई, लोहार, धोबी, मनिहार, अहीर, ग्वाल आदि के योगदान को एक मंडप गीत के माध्यम से गाया गया है। माड़ो तो भल सुंदर, ना जानो कौने गुना हो, रामा न ही जानो बरे के छोबे कि ना जानो बांसा गुन हो। कलसा तो भल सुंदर, ना जानो कौने गुना हो, रामा न ही जानो कुम्हरा के गढ़वे कि ना जानो माटी गुना हो। पिढ़ई तो भल सुंदर, ना जानो कौने गुना हो, न ही जानो बढ़ई के गढ़वे कि ना जानो काठा गुना हो। इसी प्रकार अन्य जातियों का भी गुणगान किया गया है। तो यह गीत स्वयं सिद्ध है कि सभी जातियों में आपसी समन्वय और तालमेल था। बाराबंकी जनपद के लोकगीतों के अध्ययन और संकलन के उद्देश्य से हैदरगढ़ तहसील के नरौली गांव का चयन किया गया। यहां पर पासी, अहीर, गड़रिया, धोबी, कहार, कुरील तथा ब्राह्मण गायकों की प्रस्तुतियां हुई। डेढ़ ताल की एक प्रस्तुति, मोहन धरे रूप जनाना, चले बेचन चुरिया सहाना, सहर बरसाना, सहर बरसाना। सतरंग सारी सबुज रंग चोली, चोले के भीतर धरे जोला घोड़ी, हो श्याम खूबे सयाना। और उलारा गीत, जेरा तो लगे तमोलिन छोकरिया, बरिन चलाए रही हो जादुआ, लागे मसवा अषाढ़, भरगे नदिया उनार, कहगे रात्यु दिन गाढ़ हुई ननंद के बिरना। ननदी सयान बर ढूंढो मोरे राजा, ननदी सयान बर ढूंढो मोरे राजा। ताल गए कुइयाँ पताल गए पनिया, ताल गए कुइयाँ पताल गए पनिया, डोरिया छोट हो गए ना, छोटे दुल्हा के करनवा डोरिया छोट हो गए ना। सतगुर ज्ञान बदरिया बरसे, सतगुर ज्ञान बदरिया बरसे, गंगम बरसे जमुना बरसे, ताल तलैया तरसे, सतगुर ज्ञान बदरिया बरसे। सूर सती माई तुमका राही मा गोराई, तुम तो जाय बसी कौने दिसवा माँ, तुम तो नंदलाल सदा के मन कपटी, तुम तो नंदलाल सदा के मन कपटी, तब तो कहो ना गैया चरोबे, अब कहे बन का दौरो झपटी, तुम तो नंदलाल सदा के मन कपटी।
1: अवध का लोक संगीत, ये वार्ता अभी आप सुन रहे थे। वार्ताकार थे डॉक्टर राम बहादुर मिश्र। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यही संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।

0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8:10 हुए और प्रस्तुत है सुगम संगीत। साथियों, गुरुओं की अमृतमयी वाणी हमें प्रेम, सेवा और इंसानियत का संदेश देती है।

8700142424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700142424 पर।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8:10 हुए और प्रस्तुत है सुगम संगीत। साथियों, गुरुओं की अमृतमयी वाणी हमें प्रेम, सेवा और इंसानियत का संदेश देती है। तो आइए इस पावन पल में सुनते हैं गुरवाणी। आवाज़ है जसपाल सिंह की।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं मधुर और आध्यात्मिक शांति से भरपूर गुरवाणी अवतार सिंह की

सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गुरवाणी। मीडियम वेव के मीटर पर आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

कामरान अहमद का गाया गीत आपको सुनवा रहे हैं जन्नत फिल्म में। गीत के बोल लिखे हैं सैयद कादरी ने और संगीत निर्देशन है प्रीतम का।

गुड बॉय बैड बॉय फिल्म के इसी गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपेन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पासर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में दो तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर

0: 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
1: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
2: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
1: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज

अबुधाबी स्थित बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबुधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत 4 अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी विलशेट्टी ने बाउजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने दो रोज़ा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दीगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। दोनों रहनुमाओं ने मग़रबी एशिया की सूरत हाल और आलमी सतह पर तवानाई की सप्लाई, नेस तजारती नेटवर्क पर इसके असरात पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुस्तकबिल में अपने ताल्लुकात को फ़रोग देने और आबी वसाइल, सेमी कंडक्टर्स, इख्तिरा, दिफा, पायदारी और नकलो हमल के शोबों में तआवुन को वसी करने के बारे में एक खाका तैयार किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में आज स्वीडन के शहर गोदनबर्ग पहुँच गए हैं, जहां उनका खैर मकदम गोदनबर्ग लैंडवेटर हवाई अड्डे पर स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म वुल्फ क्रिस्टर्सन ने किया। जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा स्वीडन की फजाई हदूद में दाखिल हुआ, मेहमान खसूसी के तौर पर उनके हवाई जहाज की मुहाफजत स्वीडन के ग्रिपन लड़ाई जेट तैयारों ने शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को हवाई अड्डे पर बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उनका इस्तकबाल भारतीय बिरादरी के अरकान ने बड़ी गर्मजोशी से किया। इस दौरे की खासियत दो वज़ीर-ए-आज़म की एक मुश्तरका खिताब है जो वो सनद से मुतालिक यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस से करेंगे। सीओज की इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जनाब मोदी के साथ यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वोन देर लेयन शामिल रहेंगी। गोदनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत कर रहे हैं। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तिजारत, एआई, स्टार्टअप समेत मुख्तलिफ शोबों में तबादले ख्याल करेंगे। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन की क्यादत में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में हलफ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वी डी सतीशन को केरलम का अगला वजीर आला नामजद किया था, जिसके साथ ही 10 दिन से जारी सियासी ड्रामा और गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो गई। कांग्रेस की क़यादत वाले मुत्तहदा जमहूरी महाज यूडीएफ ने केरलम असेंबली इंतखाबात में 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत हासिल की। तहम मुख्तलिफ ग्रुपों की लॉबिंग और कारकुनों के एहतजाज के बायस मस्कूरा इत्तेहाद वज़ीर आला के नाम पर फैसला नहीं कर पा रहा था। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: कांग्रेस के सीनियर लीडर वी डी सतीशन कल केरलम के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनके हमरा 20 दिगर वदरा भी हलफ लेंगे। नामजद वजीर आला वी डी सतीशन ने आज शाम गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें वदरा की फेहरिस्त पेश की। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 अफराद के बैठने के इंतजाम समेत वसी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज गुजरात के शहर गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID के इख्तिरा और इब्तदाई कारोबार के मरकज का इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने इस मौके पर इस इदारे की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा इदारा है जो तख्लीकी सलाहियत को कारोबार से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे इदारे नौजवानों को इख्तिरा और पेशेवराना तरक्की के मौजू प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं।
3: NID एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब NID की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: मरकजी वजीर पीयूष गोयल भी इस मौके पर मौजूद थे। जनाब शाह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने आज गांधीनगर में मदर डेयरी के 5 लाख लीटर की गुंजाइश वाले 9 तामीर शुदा प्लांट का भी इफ्तिताह किया। अहमदाबाद में उन्होंने मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटी मरकज कैंपस का भी इफ्तिताह किया।

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ स्टर्सन से वफ्द की सतह की बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दोतरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को कल केरलम के नए वज़ीर-ए-आला

ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा है कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतअल्लिक तकरीब के दौरान पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड्स अता करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। रेलवे की वजारत ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के दो डिब्बों में आग लगने के वाक़े की आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दिया है। आज सुबह तकरीबन 5:15 बजे कोटा डिवीज़न के नागदा जंक्शन के करीब त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के दो डिब्बों में आग लग गई। इन डिब्बों में एक गार्ड कोच और एक AC 3 टियर कोच शामिल था। वजारत के मुताबिक कोच में नस्ब हिफाजती निज़ाम फौरी तौर पर मुतहर्रिक हो गया और ट्रेन खुद बखुद रुक गई। ट्रेन के अमले ने फौरन आग से मुतासिर दोनों डिब्बों को अलग किया, जिसकी वजह से किसी भी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने आज बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान एक नई एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल वसीले से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन से कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान रेल कनेक्टिविटी में इजाफा हुआ है। जनाब वैष्णव ने इस मौके पर कहा कि जनूबी और मशरकी कर्नाटक के लोगों का एक देरीना मुतालबा पूरा किया जा रहा है। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि उम्मीद है कि बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही शुरू हो जाएगी। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार की जानिब से हवाई जहाज़ों के ईंधन ATF पर वैल्यू एडेड टैक्स को 25% से कम करके 7% करने के फैसले की तारीफ की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब हवाबाजी का शोबा आलमी सतह पर ऑपरेशनल और माली दबाव का सामना कर रहा है, रियासती हुकूमतों के इस किस्म के सरगर्म इकदाम एयरलाइंस को ज़रूरी सहारा फराहम करते हैं और मुसाफिरों के लिए फ़जाई सफ़र को सस्ता रखने में मदद फराहम करते हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि महाराष्ट्र के विदर्भ ज़िले में किसानों की खुदकुशी की एक बड़ी वजह पानी की किल्लत है। उन्होंने ये भी कहा कि पानी की बचत इस बहरान का मुअस्सर तरीन हल है। नागपुर में कौमी कॉन्फ्रेंस नागपुर जल संवाद से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि पानी के तहफ़ से मुतअल्लिक कोशिशों की कामयाबी के लिए लोगों का इनमें हिस्सा लेना लाजमी है। उन्होंने ग्राम पंचायतों से कानून साज अरकान तक तालमेल के साथ उठाए गए इकदाम पर जोर दिया ताकि गांवों और किसानों की खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। नशीली अशिया पर काबू पाने वाले ब्यूरो NCB ने मुल्कों के माबैन नशीली अशिया की नाजायज तिजारत के उन नेटवर्क्स के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है जो भारत म्यांमार सरहद पर अपनी कार्रवाइयाँ अंजाम देते हैं। ब्यूरो ने म्यांमार में मुकीम सरगना थांगकिंग तुआंग को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। NCB ने एक बयान में कहा है कि यह गिरफ्तारी वसी तौर पर निगरानी, खुफिया मालूमात में इजाफे, तालमेल के साथ किए जाने वाले बैन रियासती तालमेल और लगातार पीछा करने की कार्रवाइयों की बदौलत की गई है। थांगकिंग तुआंग कई तरह की मनशियात और नशीले मादों के कानून के तहत मतलूब था। ये केस NCB और मनशियात से मुतअल्लिक कानून नाफिज करने वाली कई एजेंसियों ने दर्ज की थी, जिसमें से NCB ने दो केस दर्ज किए थे। नई और काबिले तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने एक ही दिन में 256.4 GW की बिजली की मांग को पूरा करने में, जो अब तक की सबसे बड़ी मांग है, कामयाबी हासिल की है। एक प्राइवेट अंग्रेजी रोजनामे के साथ बातचीत में जनाब जोशी ने कहा कि बिजली की 33% मांग काबिले तजदीद तवानाई के वसायल से पूरी की गई है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस बड़ी तब्दीली से तवानाई की सलाहियत में बड़ी तेजी से इजाफे, ग्रिड को मुस्तहकम बनाने और मुल्क की तरक्की के सफर को तकवीत देने में माहौल के लिए साजगार तवानाई के बढ़ते हुए हिस्से का अंदाजा होता है। रूस में मास्को और आसपास के इलाकों पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में 4 अफराद की मौत हो गई है, जिनमें एक भारतीय मजदूर भी शामिल है। मास्को के मेयर सरगेई सुबियानिन ने बताया कि रात भर हुए इन ड्रोन हमलों में कम से कम 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। रूस के हुक्काम के मुताबिक

0: मास्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को तबाह भी किया गया है। यूक्रेन के सदर विलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों की तस्दीक करते हुए इन्हें दुरुस्त कार्रवाई करार दिया। इस दौरान रूस में भारतीय सफारतखाने ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में बताया कि मास्को को मुख्तलिफ इलाकों में हुए ड्रोन हमलों में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। सिफारतखाने ने मजीद बताया कि सिफारतखाने के अहदेदारों ने हादसे की जगह का दौरा किया और अस्पताल में जेर इलाज जख्मी मजदूरों की कैफियत दरियाफ्त की। भारत के महकमे मौसमियात का कहना है कि जनूब मगरबी मानसून इस माह की 26 तारीख को केरलम में दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि मॉडल एरर की बुनियाद पर इसमें 4 रोज आगे या पीछे होने की भी गुंजाइश है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून के जनूब मशरकी बहिरे अरब के कुछ मजीद हिस्सों जनूब मगरबी और जनूब मशरकी खलीज बंगाल अंडमान जजायर और बहिरे अंडमान के बाकी हिस्सों और मशरकी वस्ती खलीज बंगाल के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 रोज के दौरान हालात मुआफिक रहेंगे। महकमे मौसमियात ने कल मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी की पेशगोई की है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ मध्य प्रदेश पंजाब राजस्थान तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह की सूरत हाल का इम्कान जाहिर किया गया है। बैडमिंटन में आज चीन में बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में भारत की श्रियांशी वाली शेट्टी ने चांदी का तमगा जीता है। उन्होंने बाओजी सिटी जिम्नेशियम में सुपर 100 के फाइनल में चीन की एन क्वी युआन को सीधे सेटों में 14-21 6-21 से शिकस्त खाई, लिहाजा उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जरिए दिए गए 223 रन के निशाने को हासिल करते हुए पंजाब किंग्स मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 199 रन ही बना सकी। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दिन के एक और मैच में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 194 रन का निशाना रखा है। इससे कबल दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से वफ्त की सतह की बातचीत कर रहे हैं जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने 2 रोजा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ 2 तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दिगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 माहदों पर दस्तखत किए। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से 2 तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वीडी सतेसन को कल केरलम के नए वजीर आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत 4 अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वाली शेट्टी ने बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा नाटक कूपे।
2: ये है मेरा कूपे। जूडिथ का प्रोग्राम अचानक बदल गया। मैं उसका टिकट वापस करने जा रहा था। आपको आपत्ति न हो तो?
3: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके साथ तो 10 दिन तक साधना केंद्र में रही हूँ। एक अजनबी आदमी के साथ सफर करना मुझे बुरा नहीं लगता।
2: कूपे में भी?
3: क्यों, कूपे में क्या है? 2 बर्थ है, उन पर कोई भी 2 यात्री सफर कर सकते हैं। 2 स्त्री 2 पुरुष या 1 स्त्री 1

0: जी हाँ, एक स्त्री और एक पुरुष दो ही होंगे इस कूपे में। अच्छा सफर कटेगा।
1: हाँ, नींद अच्छी आएगी या शायद बिल्कुल नहीं आएगी।
0: आप में जीवट है, लेकिन 10 दिनों तक तो आप
1: वहाँ सबको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था जैसा मैंने किया। साधना करने आए थे हम लोग।
2: अच्छा, मैम साहब आ गई। आप तो कह रहे थे।
0: सुनो कंडक्टर, 2 कप कॉफी मिलेगी। लेकिन रुको, सांत्वना जी, अब तो डाइनिंग कार में चलने का वक्त हो गया।
1: मैं नहीं जाऊंगी, रात को मैं नहीं खाती। कंडक्टर, मेरे लिए केवल एक कॉफी।
2: जी हाँ मैम साहब, कॉफी आ जाएगी।
0: मैं तो डाइनिंग कार में जाऊंगा। 10 दिन तक मन और तन दोनों ही भूखे रहे। ना ना, अब और मन को नहीं मार सकता।
1: तुमने मारा ही कहा है, मारने का ढोंग किया। अच्छा जाओ, मैं ध्यान करने के बाद कुछ देर काम करूंगी।
0: ओके, लौट कर बातें होंगी।
1: ओके।
2: मैम साहब, ये रही कॉफी, कुछ और चाहिए?
1: नहीं शुक्रिया। अब जरा एकांत मिला। सोने से पहले अपनी डायरी लिख लो। गुरुजी दूसरे महात्माओं से कितने भिन्न हैं। वो न प्रभाव डालने के हथकंडे जानते हैं, न दूसरों पर छा जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने एक सहज सत्य का आविष्कार कर लिया है, क्योंकि उनमें एक मोहिनी शक्ति पैदा हो गई है। वही शक्ति देश विदेश के नाना प्रकार से त्रस्त व्यक्तियों को अपने पास खींच लेती है। अज्ञात शांति की खोज में भटकते ये व्यक्ति कैसे सहज विश्वास से अपने जीवन की कहानी खोल कर रख देते हैं इनके सामने। वो जूडिथ जिसकी नीली आंखों में गहरे आकाश की झलक है, जिस सहज भाव से खिलखिलाती है, उसी सहज भाव से अपने मन की सारी परतें खोल कर रख देती है। उस दिन वो अपनी प्यारी प्यारी सी बच्ची के लिए मेरे पास से गुजरी तो मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो जूडी, कितनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची। कल बहुत देर तक मुझसे बातें करती रही।
3: ये जिसके पास जाती है उसी की हो जाती है, मेरी तरह। अब गुरुजी के पास सोने की जिद कर रही।
1: अच्छा,
3: मानती ही नहीं, इसीलिए इसके पिता के पास ले जा रही हूँ।
1: क्या तुम्हारे पति भी यहाँ आए हुए हैं?
3: मेरी शादी नहीं हुई है।
1: क्या?
3: लेकिन इसके पिता बहुत सुंदर हैं। ऊपर की मंजिल में ही तो ठहरे हैं। उनसे ही इस लंबी यात्रा में मैंने ये सुंदर बच्ची प्राप्त की है।
1: आप कितने दिन से घूम रही हैं?
3: कई वर्ष हो गए।
1: आपके बहुत मित्र हैं।
3: स्वाभाविक है, अनेक देशों के अनेक युवकों के संपर्क में आई हूँ। उनको समझा परखा है, प्यार दिया है, पाया है।
1: बुरा तो नहीं मानोगी, तुम ग्रास, डोप, चरस, LSD आदि का सेवन करती हो?
3: करती हूँ। उनसे मुझे आनंद मिलता है, उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती। वो अनुभव करने की वस्तु है, जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, प्रतिभा मुक्त हो जाती है।
1: तो फिर वो क्या है जो तुम्हें खाए जा रहा है? क्या है जो तुम्हारे जैसे युवक युवतियों को दर दर भटकने के लिए विवश करता है? साधुओं, महात्माओं, योगियों के पास तुम क्या पाना चाहते हो?
3: बहुत दिनों तक ये सब करते करते मैंने अनुभव किया है कि नशे में जो आनंद मिलता है वो जैसे मैकेनिकल, जैसे उथार का आनंद है। एक महात्मा है जो दैहिक सेक्स के द्वारा समाधि की ओर ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी की सहायता से अपने ही अंतर में से स्वर्ग जाने का मार्ग खोल लेना चाहती हूँ। सुना था भारत के योगी इस मार्ग को जानते हैं, इसलिए भटकती हूँ।
1: जितने लोगों से मैंने बात की है वो सभी इन अनुभवों से गुजर चुके थे। सेक्स, नशा, सब कुछ उनके लिए सहज है, फिर भी वो भटक रहे हैं। कितनी सच्ची है उनकी ये भटकन। कुछ हैं जो परिवार के शासन से परेशान हैं, कुछ को आज के शोषण की राजनीति त्रस्त करती है। वो उद्योगीकरण से प्राप्त ऐश्वर्य और विलास से ऊब चुके हैं। ये यांत्रिक और कृत्रिम जीवन उनको खोखला कर रहा है और वो उस आनंद की तलाश में हैं

0: शांति के स्वर्ग द्वार के भीतर पहुंच जाने की शक्ति दे। आती हूँ।
1: बाहर भी वर्षा हो कर चुकी है।
2: मौसम कितना सुहावना, कितना प्यारा है। अरे आप एक लिखे जा रही हैं? कैंप के अपने अनुभव लिख रही हैं शायद, देख सकता हूँ?
0: ये मेरी डायरी है।
2: तब नहीं देखूंगा। डायरी चोरी करके पढ़ने की चीज है।
0: बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं।
2: समझदारी की बातें तो अब आरंभ होंगी।
1: खिड़की खोल दूं। वर्षा से भीगी हवा आने दो।
2: मैं आपके पास बैठ सकता हूँ?
0: सब काम पूछ कर ही करते हैं आप।
2: थैंक यू। मेरे पास स्कॉच है, 10 दिन से इसे छुआ ही नहीं। आप पीते हैं?
0: पीती तो नहीं, पर प्रतिज्ञा भी नहीं की।
2: तो मेरा साथ दीजिए, थकान भी तो उतारनी है।
0: मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ।
2: प्लीज साथ देने के लिए एक पैक।
0: जी नहीं, आप ऊपर जाकर पीजिए।
2: और अगर मैं यहीं बैठकर पीऊं तो?
0: पीजिए।
2: बुरा मान गई। प्लीज, बात यह कि मैं साथी के बिना रह ही नहीं सकता। बहुत घूमा हूँ हिप्पियों के साथ, जिप्सियों के साथ। कितनी मुक्त और सहज है ये विदेशी युवतियां, बड़े मजे के साथ कह सकती हैं लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ सेक्स। मैं भी कह सकता हूँ लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ।
0: मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ।
2: नहीं है तो हो जाएंगी। मुझे किसी के साथ एकाकार होते देर नहीं होती। दुई का भाव मुझे सुहाता ही नहीं। एक ओंकार, एक सत्ता, एक चेतना।
0: काफी गहरे उतर चुके हैं आप।
2: गणित विज्ञान और आध्यात्म की तरह नशे, सेक्स और योग की मंजिल एक ही है, ब्रह्मानंद सरोवर में डुबकी लगाना। प्लीज, मैंने कहा ना अकेले पीते अच्छा नहीं लगता। छोटा पैक लीजिए मेरे लिए, इस सुहावने मौसम के लिए।
0: मिस्टर सिंह, आप ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं जाती हूँ।
2: आप ऊपर कैसे जाएंगे?
0: जी हाँ, वो अधिकार तो जैसे आपका ही है। आप पुरुष है ना? मैं कहती हूँ ऊपर जाइए।
2: नाराज ना होइए। अच्छा, मैं अब और नहीं पीऊंगा, आपके साथ बातें करूंगा। आप डाइनिंग कार में नहीं गई, वहां डिक था, वही जूडिथ के बच्चे का बाप। आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हम कूपे में हैं तो मुस्कुराकर लौट गया। अरे अब फिर नाराज हो रही है? प्लीज।
0: मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं, जरा थोड़ा पीछे हटिए ना, मैं लेटना चाहती हूँ, फिर अपना भाषण जारी रख सकते हैं आप। आप तो जूडिथ के साथ बहुत रहे हैं।
2: बहुत से देशों में साथ साथ घूमा हूँ। We have made love many times. लेकिन वहां गुरुजी का आदेश था 10 दिन तक कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण मौन। फिर दिव भी तो यही था, लेकिन उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। जूडिथ को पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ रहे।
0: इसलिए शायद वो तुम्हारे साथ आकर भी लौट गई।
2: उसके लौट जाने से मुझे दुख हुआ था, लेकिन तुम मिल गई तो मुझसे भी आकर्षक हो, सबसे आकर्षक। तुम्हारी मांसल देह, तुम्हारी चमकती आंखें, तुम्हारे लंबे सुनहरे बाल।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बज चुके हैं।
2: प्लीज अभी कुछ देर और बैठूंगा।
0: बैठे रहो।
2: तुम्हारी डायरी पढ़ सकता हूँ?
0: नहीं।
2: तुम्हें छू सकता हूँ?
0: नहीं।
2: मेरी प्रेम कहानी सुनोगी?
0: नहीं।
2: क्यों?
0: क्योंकि सब एक जैसी होती हैं, वैसे ही जैसे तुम सब पुरुषों का व्यक्तित्व एक जैसा होता है। सोने का समय हो गया, जाओ सो जाओ और स्वप्न देखो।
2: मेरा मन तो तुमसे बातें करने को करता है।
0: बातें मुंह से की जाती हैं, हाथों से नहीं।
2: सांत्वना, सांत्वना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ सांत्वना।
0: मुझसे प्रेम करने वालों में एक और का इजाफा हुआ। लेकिन सरजीत, तुम सचमुच

0: करते होते तो जतलाते नहीं, प्रेम निर्लज्ज नहीं होता।
1: यानी नैतिक होता है। शरीर को बचाने के मुंह में तुम अच्छे तर्क कर लेती हो।
0: शरीर को बचाने का मुंह मुझे कभी नहीं रहा, परंतु वो मन से जुड़ा हुआ है। प्रेम का अर्थ केवल तन का मिलन नहीं है। जिन जूडिथ, मार्था और लिजा के लिए तन का मिलन सहज रहा है, वो भी मन के मिलने के लिए भटकती फिर रही हैं। न जाने कितनी गांठें पड़ी हैं उनके मन में। माँ बाप से विद्रोह, समाज से विद्रोह, अपने से विद्रोह, व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो ड्रग का सेवन करती हैं। स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने
1: वही वही वही तो आनंद का मार्ग है। तुमने कभी अनुभव किया है उसे? उस आनंद को मेरे पास है, पियोगी?
0: सरजीत, तुम सीमा को लांघते जा रहे हो, अब चले जाओ।
1: और न जाऊं तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज सांत्वना, प्लीज।
0: नहीं नहीं, पीछे हटो, हटो पीछे।
1: मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। किसी स्त्री ने मुझे आज तक पीछे नहीं हटाया।
0: लेकिन मैं हटा दूंगी। मर्द है तो उसे औरत चाहिए।
1: प्लीज
0: मत तेज पूंछ है, औरत उसके तेज को छीनने वाली है।
1: देखो,
0: ये दलीलें अब्बासी होती
1: हैं। प्लीज,
0: तुम्हारे लिए नारी केवल एक वेश्या है। मैं कहती हूँ शिक्षा उठकर चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं।
1: सांत्वना,
0: कौन है, क्यों आए हैं इस समय?
2: क्षमा कीजिए, आप ठीक तो हैं?
0: बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही बीमार नजर आते हैं जो दूसरों के कंपार्टमेंट में झांकते फिरते हैं। कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो जाइए यहाँ से।
2: माफी चाहता हूँ, बराबर के कंपार्टमेंट में हूँ, लगा जैसे आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन यहाँ तो आपके पति का अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता।
0: तो फिर जाइए अपने कंपार्टमेंट में।
2: देखिए, मुझे नींद कम आती है, आप लोग शोर मचाएंगे तो बेवश होकर मुझे।
0: क्या मतलब है आपका?
2: आप सब समझती हैं, इस डिब्बे में केवल आप दोनों ही नहीं, आप जैसे जोड़े बहुत देखे हैं। इस उम्र में इतना आवेश नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ मुझे फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्टर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आराम से सो सके।
3: सचमुच मैम साहब, मैं तो डर गया था। कभी कभी फालतू आदमी भी चढ़ाते हैं।
0: मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। मैं माफी चाहती हूँ।
2: ठीक है, मैं जाता हूँ। गुड नाइट।
3: दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, कोई बात हो तो मैं पास ही में हूँ।
1: मुझे बहुत दुख है दरअसल।
0: ऊपर जाकर अपनी सीट पर बैठो।

0: सरजीत का इसमें कोई दोष नहीं है। उसका संबंध जूडेथ, मार्था और लिजा जैसी नारियों से रहा है, जिनके लिए देह ही सब कुछ है। लेकिन फिर विद्रोहियों का बाना पहने इधर उधर क्यों भटक रही हैं? अंतर में कहीं न कहीं खोज की वो चाह है जो इन्हें स्थूल आनंद से ऊपर उठाती है। मैंने मार्था से पूछा था, मार्था बुरा तो न मानोगी, एक बात पूछू?
1: खुशी से पूछो।
0: तुम माँ बनने वाली हो ना?
1: हाँ।
0: इसके पिता कौन है?
1: मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है, मैं भी पुरुष की तरह प्यासी हूँ, मुझे भी तृप्ति चाहिए। पुरुष कोई भी हो, वो सर्वजीत भी हो सकता है, शायद वही है। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो?
0: मैं जानना चाहती हूँ कि मुक्त साहचर्य और देह भोग के साथ सच्चे सुख की तलाश कैसे चल सकती है।
1: मुझे तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। शरीर के अस्वीकार की बात तुम लोगों नहीं है, हम लोगों में समर्पण की प्यास है। समर्पित होकर हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। तुम्हारे लिए प्रेम एक बना बनाया सांचा है, विवाह किया और वो सांचा ओढ़ लिया।
0: नहीं, मैंने भी प्रेम विवाह किया था, उसी का परिणाम है मेरे दो बच्चे, उन्हीं के लिए मैं दूसरी बार विवाह नहीं कर रही।
1: लेकिन इससे क्या तुम्हारी देह की प्यास बुझ गई? इतने सारे वर्ष तुमने इस छद्म को पालने में लगा दिए। मैंने गुरुजी से बहुत बहस की है इस बारे में।
0: क्या उत्तर दिया उन्होंने?
1: देह की प्यास से उन्हें इनकार नहीं है, वो तो चाहते हैं कि साधना के इन 10 दिनों में परहेज किया जाए, उसके बाद जैसा अनुभव हो।
0: इसका अर्थ समझी?
1: समझी। वो कहना चाहते हैं जैसे जैसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, देह भोग की प्यास वैसे वैसे शांत होती जाती है। सांत्वना, मैं नहीं जानती क्या होगा, मुझे चिंता नहीं कि वो प्यास शांत होती है या नहीं।

0: मुझे ऐसा अवश्य लगता है कि सच्चे सुख के प्राप्त हो जाने पर वो प्यास असंगत हो रहेगी।
1: फिर भी तुम कहती हो कि शरीर के अस्वीकार की बात हम ही लोगों में है। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने में अंतर है, क्या नहीं है?
0: कभी सोचा भी न था कि मुक्त देह मिलन के उपासक ये लोग इतनी गहराई में उतर सकते हैं। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने का अंतर ही हम भूल चुके हैं, इसलिए अत्यधिक निषेध से परेशान होकर देह मिलन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। मैंने भी जब चाहा है देह की प्यास बुझाई।
1: देह की इस प्यास को क्या तुमने अब भी बुझाना नहीं चाहा था?
0: कौन हो तुम?
1: मैं कौन हूं ये पूछने का साहस है तुमने? अपने अंतर में झांक कर देखो, वहीं से बोल रही हूं। बार बार दूसरों के अंतर में झांकती हो पर अपने को नहीं खोजती। विधवा हो, संतान के प्यार के आदर्श में बंधी तुम देह की प्यास को छिपाए फिरती हो, लेकिन क्या सर्वजीत के साथ तुम्हारा मुक्त व्यवहार तुम्हारी देह की प्यास के ऊपर ही आधारित नहीं था?
0: अगर ऐसा था तो मुझे रोकने वाला कौन था?
1: तुम्हारा अपना अहम, जबरदस्ती शहीद बनने की लालसा।
0: शब्दों के माया जाल में फंसने की चेष्टा मत करो। ये ठीक है, छोटी उम्र के अपने दोनों बच्चों को मैं किसी की दया पर छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर देह के मिलन को मैं अस्वीकार नहीं करती। शर्त केवल एक ही है कि दूसरों की वासना का शिकार होना मैं नहीं चाहती, वो देह का अपमान है।
1: लेकिन तब तुम साधना केंद्र में क्यों गई थी? क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम भी अशांत हो? तुम्हें देह को बचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचाने को विवश भी हो। इसी द्वंद से तुम पीड़ित हो। तीव्र निषेध मन की चाह में से ही पैदा होता है। तुम्हें स्पष्ट कह देना चाहिए था कि सर्वजीत तुम्हारा पति नहीं है, ये मेरा छद्म है, इस छद्म को उतार फेंको।
0: ये छद्म है, छद्म। सुनो, कहां गई तुम? बोलो। कहीं कोई नहीं, ये मैं अपनी ही आवाज सुन रही हूं। सचमुच मुझे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए था कि सर्वजीत मेरा पति नहीं है। मैं डर गई। कंडक्टर और सहयात्री मुझे व्यभिचारी नहीं समझते और शायद स्थिति से उतर जाने को विवश करते, या फिर कैसी है ये भूल भुलैया, कैसे मुक्ति मिलेगी इससे? क्या इसी मुक्ति की खोज में मैं साधना केंद्र में नहीं आई? इतने सहज होकर भी ये लोग भटक रहे हैं, तो अब मैं फंसी, मैं भी भटक रही हूं। क्या इस भटकन का अंत देह के मिलन नहीं है? कहां है सत्य? कौन सा छद्म इन तर्कों को ठगे हुए है? कैसे मिलेगी इस द्वंद से मुक्ति?
1: छद्म, ये छद्म है, इस छद्म से मुक्ति पाओ। सहज होने में ही मुक्ति है। मुक्ति, मुक्ति।
2: बहुत देर हो गई तुम्हें लिखते हुए, अब सो जाओ। जो कुछ हुआ उसके लिए लज्जित हो।
0: नहीं सरजीत, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
2: तुम बहुत अच्छी हो।
0: सच?
2: मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सच बोलूंगा, केवल सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ न बोलूंगा।
0: अच्छा, अब सो रही हूँ। गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
3: बहुत देर से आई हो। कॉलेज तो कभी का बंद हो चुका था।
0: हाँ, कमल अंकल के घर चली गई थी।
3: इतनी रात तक क्या वहाँ कोई उत्सव था? हमें क्यों नहीं ले गए?
0: कुछ ऐसी बात थी बेटे, गंभीर बातें करनी थी ना, हड़ताल होने वाली है,

0: देर हो गई थी, इसलिए मुझे डर भी लगा। भैया ने वहाँ फोन भी किया था लेकिन हर बार अंगेज मिला, शायद खराब था।
1: हाँ शायद, असल में हम बहुत जरूरी बातें कर रहे थे, शायद तुम्हारे अंकल ने रिसीवर उतार कर रख दिया था।
0: हाँ यही जवाब हमें भी मिला था, हमने कंप्लेंट की थी। खाना खाओगे मामा?
1: मैं तो खाई बेटा, लगता है तुम लोगों ने अभी तक नहीं खाया। बड़े दुष्ट हो तुम, मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बुलाओ अपने भैया को।
2: पढ़ने का नाटक कर रहा है लेकिन सुन रहा है हमारी बातें। इधर आओ बाबा।
1: माँ को जरा भी मुक्ति नहीं दोगे? मुक्ति तो मैं ही उन्हें नहीं दे पा रही, मैंने ही तो उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बड़े हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं। मुझे उनसे सब कुछ कह देना चाहिए, कहीं उनके किशोर मन में काट ना पड़ जाए। स्वयं मैं भी तो नहीं झेल पाती इस सर्वग्रासी एकांत को। क्या मैंने ही जानबूझकर इसे अपने ऊपर नहीं लाद लिया है? क्या इसे मुक्ति पालूं? क्या वो मुक्ति होगी?
3: सांत्वना? सांत्वना, तुम सो गई?
1: तुम्हारा स्पर्श पाकर मुझे नींद आ ही जाती है।
3: सांत्वना, हमें ये लुका छिपी का खेल बंद कर देना चाहिए।
1: हाँ कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो फिर कोई और मार्ग नहीं रह जाएगा।
3: तुम शादी कर लो।
1: शादी नहीं कर सकती विनोद, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती।
3: धोखा तुम आप दे रही हो।
1: मैं धोखा नहीं दे रही, अपनी इच्छा से जो चाहती हूँ करती हूँ।
3: इच्छा मेरी भी तो हो सकती है, जैसे तुम चाहती हो कि तुम किसी का शिकार न बनो, वैसे क्या मैं नहीं चाह सकता कि मैं तुम्हारा शिकार न बनूं?
1: शिकार? तुम क्या कह रहे हो विनोद? विनोद!
4: सांत्वना, क्या है सांत्वना, किसे पुकार रही हो?
1: कुछ नहीं, सपना देख रही थी।
4: या अपने प्रेमियों की याद कर रही थी? विनोद, कमल,
1: तुम्हें ईर्ष्या होती है?
4: स्वाभाविक है, सारी रात यहाँ ऊपर के बर्फ पर लेटा लेटा।
1: तुम सब पुरुष एक जैसे होते हो। उनके एक मित्र थे, एक बार उनके साथ भी इसी तरह कूपे में सफर किया था। सारा समय तुम्हारी तरह न जाने क्या क्या बकते रहे, अपनी प्रेम कहानियां सुनाते रहे। बेचारे परवर्टेड।
4: अगर मैं यूरोपियन होता तो इस समय तुमसे पूछता, क्या उस रात उसके साथ तुमने प्रेम किया था?
1: आप नहीं पूछोगे?
4: बेकार है, हिंदुस्तानी प्रेम करना ही नहीं जानता।
1: ताने मत दो, मैं न तब समर्पित हुई थी और न अब हो सकूंगी।
4: जी में आता है कि नीचे उतरकर तुम्हारे शरीर को झंझोर डालूं और
1: फिर रुक क्यों गए?
4: जागने की राह देखता रहा, अब नहीं मानूंगा।
1: तुमने और उस पुलिस इंस्पेक्टर में अंतर ही क्या है जिसने सवेरे सवेरे दूध लेने जाती हुई एक औरत के साथ बलात्कार किया?
4: तर्कों की ये ढाल तुम्हारी मदद नहीं कर सके।
1: जब दो शरीर सैकड़ों मीलों की मानसिक दूरी के साथ मिलते हैं तो उस अर्थहीन मिलन में न सौंदर्य होता है न सत्य, वो न तन को बांध पाता है न मन को। इसी को कहते हैं अपवित्र होना।
4: पवित्र अपवित्र की मुझे चिंता नहीं, चिंता तुम्हारी है। सारी रात तुम अपने से लड़ती रही हो, तुम्हारा यही छंद मैं उतार फेंकना चाहता हूँ। सांत्वना प्लीज।
1: इसे हटा, मैं कहती हूँ कदम भी आगे न बढ़। कौन आया अब? कौन हो तुम? क्या चाहते हो?
5: मैं सरजीत से मिलना चाहता हूँ। हेलो सरजीत। तुम्हारा नाम देखा तो आश्चर्य हुआ, विलायत से कब आए, कैसे हो? और माथा? ओह ये माथा तो नहीं है।
1: मेरा नाम सांत्वना है।
5: ओह देखता हूँ तुमने शादी कर ली है सरजीत भाई, बधाई।
4: निगम इनसे मिलो, ये है श्रीमती सांत्वना थापर। मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तुम कहो कहाँ कहाँ रहे, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो।
5: हाँ, वो तो है, तो तुम हो भाग्यशाली, अभी तक तो विदेशी नारियों की चर्चा ही तुम्हारे पत्रों में रहती थी, अब भारतीय नारी भी आ गई। बधाई दूंगा, चुनाव एक्सलेंट है, वाह। माफ कीजिएगा मिसेस थापर, हम बहुत गहरे दोस्त हैं। यहाँ बैठ सकता हूँ ना सर जी?
1: ये कूपे है मिस्टर निगम, और अभी रात बीती नहीं है।
5: ओह आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि कूपे में तीसरे के

0: ये स्थान नहीं होता।
1: मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, तब आप आ सकते हैं। अब आप
0: जा रहा हूं। खेद है मैंने आपके एकांत में खलल डाला। और सरजीत एक बात याद रखो, ये भारत है, यहां शोर नहीं मचाना चाहिए, वो बाहर वाले को भी खींच लेता है।
1: दरवाजा खुला रहने दो।
0: क्यों?
1: मेरी इच्छा।
0: कूपे में एक की इच्छा नहीं चलती।
1: तो आपने भी समझने की शक्ति है। स्टेशन आ रहा है, मैं यहीं उतरूंगी।
2: अभी तो अंधेरा है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है और ये स्टेशन भी बहुत छोटा सा है।
1: बड़ी सुंदर जगह है ये।
2: सुंदर तो तुम हो, जगह नहीं, ये तो क्रूर है, विछो का स्थान।
1: तुम्हारा ऐसा सोचना भी क्या एक छद्म ही नहीं है? जो तुम्हारी दृष्टि में विछो का स्थान है, वो किसी के लिए मिलन का भी हो सकता है। तुम्हारे साथ फिल्मी डायलॉग के आदान प्रदान से तो यहाँ उतरना हजार गुना अच्छा है। अच्छा, जा रही हूँ, बुरा ना मानना। प्यार का तुम्हारे लिए एक ही अर्थ है, औरत की देह का उपभोग। अच्छा, नमस्कार। क्या सोच रहे हो, जवाब भी नहीं दोगे?
2: नमस्कार। तुम भाग रही हो सांत्वना, कब तक भागती रहोगी?
1: कंडक्टर, मैं यही उतर रही हूँ, जरा बक्सा उतारने में मदद करो।
3: जी अभी आया। लाइए,
4: मैं उतारे देता हूँ, आप उतरिए।
1: ये लीजिए।
0: गई, अब तो मैं आ सकता हूँ। खूब बातें करेंगे दोनों, सामान ले।
2: क्या मेरी दशा उस मछुए जैसी नहीं है जो तूफानी समुद्र में अपना जाल भी खोकर खाली हाथ लौट आया था? लेकिन इसी लेकिन के कारण तो मैं भी साधना केंद्रों की खाक छानता फिर रहा हूं।

कूपे। अभी आपने श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा यह नाटक सुना। निर्देशक थे श्री दीनानाथ। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, मंजू मैनी, सरल लांगिया, शर्मिला मलखानी, हरि मेहता, अरुण माथुर, बीएल टंडन, दीपा पांडे और नरेश कुमार सूरी। यह कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के सभा में प्रस्तुत हैं सुविख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन। आप महाराष्ट्र के 40 गांव में जन्मे और पले बढ़े। आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे। आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे। आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण

0: ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं, बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी एक शानदार संगीत समारोह है, जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोह में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगोबाई कुर्दिकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के लिए आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ठाणे रत्न पुरस्कार, पंडित संगमेश्वर गुरव पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुर श्रृंगार संसद मुंबई से सुरमणि शीर्षक, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा आपको वृंदावन गुरुकुल छात्रवृत्ति इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में श्री विवेक सोनार राग चंद्र कंस प्रस्तुत करेंगे। आलाप जोड़ और मध्यलयगत रूपक ताल में निबद्ध हैं और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री ओजस अधिया।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ फ्लूट रिसाइटल बाय रेनाउंड फ्लूटिस्ट श्री विवेक सोनार। Born and raised in Chalisgaon, Maharashtra, and inspired by his late father, Shri Ramchandra Sonar, an eminent vocalist of the Warkari Sampradaya, Vivek started playing the flute at a tender age. After initial training from his father, Vivek moved to his first guru, Pandit Purushottam Antapurkar. In 1997, Vivek moved to Mumbai to be professionally trained under Pandit Hariprasad Chaurasia. Vivek thus began his new journey under the maestro who took him into deeper realms of exploration and expression. Flautist par excellence and torchbearer of the Hindustani tradition of classical music, himself a guru to countless disciples as also a composer, Vivek Sonar is one of the leading flautists of India, renowned for his strong command over Tantakari and Layakari styles. Blessed with powerful blowing skill, a multi-talented person, Vivek Sonar is widely regarded by music lovers and critics for having honed unparalleled skills of instrumentation in flute playing. He is also known for his initiatives like his Sui Generis, the Grand Bansuri Utsav, and the Flute Symphony, a magnificent concert that has 111 flutes playing together. Vivek has performed solo as well as jugalbandi concerts with leading exponents of the santoor, sitar, violin and also Carnatic instrumental music in many prestigious music festivals in India. Vivek has performed at many prestigious events like Savai Gandharva Bhimsen Mahotsav Pune, Mogubai Kurdikar Sangeet Samaroh Goa, Hampi Mahotsav in Hampi, Urja Music Festival, Delhi, Pandit Ram Marathe Festival, Thane, Pandit Jitendra Abhisheki Sangeet Mahotsav, Goa, Gunjan Sangeet Mahotsav, Indore, Goa Kala Academy Music Festival. Vivek has received many prestigious scholarships and awards. To name some, Akashwani A-Grade Artist for Indian Classical Flute, Thane Ratna Award by Hindustan Times, Pandit Sangameshwar Gurav,

पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुरमणि टाइटल फ्रॉम सुर श्रृंगार संसद मुंबई, नेशनल स्कॉलरशिप फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वृंदावन गुरुकुल स्कॉलरशिप. टुनाइट श्री विवेक सोनार प्रेजेंट्स राग चंद्र कंस आलाप जोड़ एंड मध्यलय गत सेट टू रूपक ताल एंड द्रुत गत सेट टू तीन ताल. ही विल बी अकंपनीड ऑन तबला बाय श्री ओजस अधिया.

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कौंस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यू आर लिस्निंग टू राग चंद्र कौंस बाय रिनाउंड फ्लॉटिस्ट श्री विवेक सोनार। He was accompanied on tabla by Shri Ojas Adhiya. With this tonight we conclude Ravi Vasariya Akhil Bhartiya Sangeet Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Mumbai and this broadcast came to you from Akashwani Delhi.
2: मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में

0: हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
1: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वी डी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल दो दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलीशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, is the utmost recognition and honor that can be conferred upon a head of government. This is the 31st global honor for Prime Minister Modi. Mr. Modi reached Gothenburg this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by the Swedish Prime Minister. During his two-day visit,